0: साहिब होय दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म नाए सी हुक्म मन्या होय प्रवान ता कसमे का महल पाए सी कसमे भावे सो करे मनो चिंदया सो फल पाए सी दरगह पैंधा जाए सी ता दरगह पैंधा जाए सी
1: कोई गावे रागे ना दिबे।

जूठा जूठा मुख वसे नित नित हुए कुआर सुचे एना आखिए बहन जपिंडा तुए सुचे से नानका सुचे से नानका जिन मन बसया

0: नानक फिके बोले है तन मन फिका गोए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका तिर सदिए मुँह तुका फिके पाए फिका मूर्ख आखी है लिखे सजाए मगला पहला
1: अंदर झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर्थ जे नावे उतरे ना ही मैल जिन पद अंदर बार गुदरते भले संसार तीन ने गुण लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रूबे चुप्पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे ना दरबार टुप खर्च मंगा जब देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल डरले लेखा पीड़ छुटे नान

ਅਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ।

اللہ

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधर 9870 किलोहर्ट्ज से तंहिं सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप एंड डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु निकिता आहिनि। थोरी देरि में तव्हां हमेशह भगत करम साहब जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ऐं पोइ कुझु फिल्मी गीत पेश कंदा। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। यानी असांजे प्रोग्राम जी विचूर तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर छो त भगत कराम साहब जन जी सदाबार आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

लाइ हिकिड़ो ज़रियो करे बचाउ ॾियण लाइ कॉल वधाए वचन ते रहत जो WTO करार तंहिंखे जून 2022 में जिनेवा में WTO वज़रात कॉन्फ्रेंस में 12 वज़रात कॉन्फ्रेंस में अख़्तियार कयो वियो कि पहिरियों ॿ तरफ़ी WTO करार आहे जंहिंमें माहौलियाती बरक़रार रहंदड़ मक़सद लिखियलु आहे इन में सरकार खे चयल आहे त बेक़ाइदे थींदड़ मछीमार कारवाइनि खे हिमायत न ॾे ख़ासि करे जिते समूरी ज़िंदगी खे बचाउ ॾियणो आहे उते ओवर एक्सप्लोटेशन न थियणु घुरिजे WTO मेंबरनि जे ॿ भाङे टे घणाई पारां करार खे क़बूल करण खां पोइ इहो 15 सेप्टेम्बर 2025 ते अमल में अची चुको आहे WTO जे हिन करार ते भारत 123 मेंबर आहे सही कंदड़ हिन करार जो मक़सदु आहे समूरी वाइल्ड कैप्चर फिशिंग ऐं हुन सां ॿियनि वासेदार मच्छनि सां वाबस्ता समुंड में ॿियनि कारवाइनि ते रायतुनि ते ध्यानु ॾियणु ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त एक्वाकल्चर ऐं इनलैंड फिशरीज़ खे इन करार खां ॿाहिरि रखियो वियो आहे इन करार में समूरी किनारे ते रहंदड़ या जेके मछीमार ते ज़िंदा रहंदड़ क़ौमूं आहिनि तंहिंजे जीआपे खे बचाउ ॾिनो वियो आहे इन करार तहत बेक़ाइदे बेख़बर ॾिनल मछियूं मारण ऐं मछियूं पकड़ण खे मना कयल आहे इन करार में अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस जी मना थियल आहे जंहिं सां सामूंडी ज़खीरनि खे नुक़सान थो रसे ऐं लंबे अरसे जे रवायती ऐं नंढी समझ जे मछीमार क़ौमुनि खे नुक़सान थो रसे इन सां हिकु वधीक बराबरी वारो आर्मी फिशरीज रिजाइम पैदा थींदो हिन तरह सां मछीमार खे जेके कंहिं मुल्कनि पारां तमामु घणी सब्सिडीज़ यानी कि रियायतूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि तिन ते ॿुचो ईंदो इन करार जो घणो फ़ाइदो भारत जहिड़नि मुल्कनि खे मिलंदो जिते घणो तोणो मछीमार नंढी समझ जूं क़ौमूं कंदियूं आहिनि ऐं भारत कंहिं बि इंडस्ट्रियल फिशिंग जी कार्रवाई में रुधल कोन आहे इहो करार भारत जे क्रेडिबिलिटी खे वधीक पुख़्तो थो करे ऐं खेसि हिकु ज़िमेवार सी फूड एक्सपोर्टर करे बर्पा थो करे जंहिं सबब संदसि सी फूड खे तमामु बहितरीन मार्केट जो लंघ मिलंदो साॻे वक़्तु भारत में एक्वाकल्चर ते आधारित ज़मीन जी जेका रवानगी आहे तंहिंखे पिणु हथे मिलंदी छो जो इहो नुक़्तो करार खां ॿाहिरि आहे भारत खे हिकु मज़बूत फिशरीज मैनेजमेंट ढांचो आहे जंहिंखे ख़ासि इकोनॉमिक ज़ोन ज़रिए वधीक पुख़्तो कयो वियो आहे इहे कार्यवाहियूं गॾिजी करे मौजूदा कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यवाहियुनि सां जंहिंखे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तहत हथी पई ॾिनी वञे इन खां अलावा ॿिया फिशरीज कानून पिणु आहिनि जंहिं सां इहो करार असराइते नमूने अमल में अची वेंदो इहे क़ाइदा कानून इदारा ऐं वाधारे वारो इकोसिस्टम भारत खे इहो करार सुठे नमूने अमल में आणण में मददगार साबित थींदो इन करार खे भारत पारां मञण सां भारत जी वचनबद्धता ॿीहर पुख़्ती थी थिए कि भारत हिकु ज़िमेवार मरीन रिसोर्सिस गवर्नेंस मुल्क आहे।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: फिल्म आगाज़ कर रही हूं फिल्म हुआ जमालो सां।

सिटी सिटी सिटी ओ काड़ है सिटी पास सही खान सही घूमे थी।

प्रोफेसर लगभग आकाशवाणी जी सिंधी सरसाई अर्पेशन खास खास खबरों सदर द्रौपदी मुर्मू भारत उत्तर मैसेडोनिया माली लागापन के वधायण जो सट डो आए पड़े मामलों के वजीर डॉ एस जयशंकर अड मनीला में आसियान ढांचे तहत पड़े वजर के गडजानी में शरीक थन्दो भारत अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के राहत इमदाद सौंपी है तो जी हिंदुस्तान में मुतासर थे बोर्ड से कौमन की हिमायत कई वे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चेता दिनों है वो ईरान के कें भी हंध से ताकतवर हमलो कद जैसे ईरान पैंजे न्यूक्लियर प्रोग्राम के वरी का अडींद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुल्क के फौजी कोशिशों के सगारो बढ़ने के लिए नए आर्मी कमांडर इन चीफ के मुकर्र किया है। हॉकी में वीह मेंबर की भारतीय टोली तैंजी सरप्राइज हरमन प्रिंस सिंह कंदी रांद जी का ऐसा इंदड़ महीने मेंस वर्ल्ड कप में शुरू थींदी।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा हिंसर असन के प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वरी तवा सा मुलाकात थन्दी सुबह सुबह जो भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे ते इजाजत सदाई कर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी

0: सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलदमरु मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका के अंतर्गत सपना काचरू द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर ऋतु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही साथ बता दें कि वक्त हो चुका है 7:30 और पूरे 25 सेकेंड्स। ये वक्त हो चुका है आपके और हमारे यानी हम सभी के पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। और स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में।

जी हाँ दोस्तों, आज सुबह खिड़की खोली तो ठंडी ठंडी हवा ने जैसे कानों में धीरे से कुछ कहा, जरा मुस्कुरा दो जनाब, आज का दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है। सच कहूं, मौसम का जादू ही कुछ ऐसा होता है, कभी बारिश की रिमझिम, कभी बादलों की शरारत, कभी सुनहरी धूप तो कभी ठंडी हवाओं का प्यार। मौसम सिर्फ बदलता नहीं, हमारे दिल का हाल भी बदल देता है। तो आज अगले कुछ मिनट तक हम बात करेंगे खुशनुमा मौसम की, उससे जुड़ी दिलचस्प बातों की, कुछ अनसुने किस्से, कुछ प्यारी प्यारी सी यादें।

7 6 5 4 3 2 1 Let's start the fun.

जी हाँ दोस्तों, मौसम का जो जादू होता है वो सबके दिल में ऐसा घर करता है कि बस आपका भी दिल मचल उठता है कि भी चलिए थोड़ा मौसम का लुत्फ उठाया जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों का जो है ना मानना है कि जब मौसम सुहावना होता है ना तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड हॉर्मोन्स जो है ना वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। यही वजह है कि हल्की ठंडी हवा या बारिश के बाद मन अपने आप खुश हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छा मौसम सिर्फ बाहर नहीं खिलाता, वो दिल के अंदर भी, मतलब कहने का मतलब है कि अच्छा मौसम सिर्फ बाहर नहीं खिलता यानी बाहर नहीं दिखता, वो आपके दिल के अंदर भी खिल उठता है। और इसी बात पे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। जी हाँ, एक ना बुजुर्ग दादाजी होते हैं जो रोज सुबह पार्क में टहलने जाते थे। किसी ने पूछा, दादाजी इतनी उम्र में भी रोज आप क्यों आते हैं टहलने के लिए, आपको तो आराम करना चाहिए। तो दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा मैं मौसम देखने नहीं आता, मैं मौसम को महसूस करने आता हूँ। पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियों की आवाज और सुबह की हवा मुझे याद दिलाती है कि जिंदगी अब भी बेहद खूबसूरत है उम्र के इस मोड़ पर। कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों, हम अक्सर मौसम को सिर्फ देखते हैं लेकिन उसे महसूस करना भूल जाते हैं। तो महसूस कीजिए इस खूबसूरत मौसम को हमारे साथ, इन खूबसूरत गीतों के साथ।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ आज हूँ इस खूबसूरत सुहावने खुशनुमा मौसम में आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे अर्चना गुप्ता. लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सत्ते पे सत्ता, जो मौसम को और भी खूबसूरत बनाता है.

चाहे मौसम की बात हो रही हो, बारिश की बात हो रही हो, और ये खूबसूरत गाना ना बजे, ये खूबसूरत गाना आपको ना सुनवाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। याद है वो दिन, बचपन के वो प्यारे से खूबसूरत से दिन, जब पहली बारिश होती थी और होते ही हम छत पर भाग जाते थे, कागज की नाव बनाते थे, पानी के छोटे छोटे गड्ढे जो होते थे उसमें कूद जाते थे, छपाक छपाक करते थे, उन गड्ढों में अपनी नाव चलाते थे। मम्मी डांटती रहती थी लेकिन चेहरे की मुस्कान कोई नहीं छीन पाता था, और उस शरारत से हमें कोई भी रोक नहीं पाता था। देखा दोस्तों, बचपन हमें सिखाता है ना खुश रहना। मौसम बदलता है, बचपन बदलता है, बचपन से हम बड़े हो जाते हैं, जवानी में आते हैं, और बस चीजें कहीं गुम हो जाती है। आज उस बचपन को, उस मौसम को, उस खुशनुमा पलों को दोबारा से जीते हैं।

दिया दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। वक्त हो चुका है 7:49 और पूरे 50 सेकंड्स, ऑलमोस्ट 7:50 होने को है और कार्यक्रम यहाँ चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग और इसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना।

दोस्तों, मौसम हमेशा बदलता रहता है, इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ कठिन समय चल भी रहा है ना, तो याद रखिए जैसे धूप के बाद बारिश आती है और ठंडक दे जाती है, चिलचिलाती गर्मी से आपको निजात दे जाती है, ठीक वैसे ही सफलता भी एक न एक दिन आपके कदम चूमती है। जो जिंदगी का अंधेरा है वो भी दूर हो जाता है, वैसे ही बारिश के बाद साफ आसमान भी आता है। जी हाँ, और किसी भी मौसम की तरह जिंदगी का भी दौर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो याद रखिए।

ऐसे मौसम बदलता है वैसे ही जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो इन उतार चढ़ावों को आपको फेस करना है और मजबूती से डट कर सामना करना है अपनी कठिन परिस्थितियों का।

यहाँ बात चल रही है मौसम की और जिंदगी में आने वाले कुछ उतार चढ़ावों की, बचपन की यादों की, कि किस तरह से हम अपने बचपन में मौसम को एंजॉय करते थे और किस तरह हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलता है। तो बस अपनी लाइफ को एक दिशा दीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ भी बने रहिए और इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है ना वो लेकर आते हैं आपके साथ करने के लिए। और सुबह सुबह इतने सुविचारों को सुनकर, इतने अच्छे विचारों को सुनकर, अच्छी बातों को सुनकर, होपफुली आपका जो दिन है ना वो डेफिनेटली बनने वाला है।

जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने घर से निकले ना आज, तो एक पल के लिए बस आसमान की तरफ जरूर देखिएगा, ठंडी हवा को महसूस कीजिएगा, उन मीठी मीठी बारिश की बूंदों को महसूस कीजिएगा, पेड़ों को देखिएगा और खुद से कहिएगा कि आज का मौसम ही नहीं, मेरा मूड भी खुशनुमा है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आपकी आज की आज दोस्त अर्चना आपसे चाहती है इजाजत। आई होप आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और ऐसे ही और खूबसूरत कार्यक्रम को लेकर आप के समक्ष जल्दी हाजिर होती रहूंगी। और इसी वादे के साथ आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मौसम की तरह अपनी जिंदगी में भी ताजगी बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: इसी गीत के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों

0: बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदारोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से

0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जनता मंत्र पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल यह है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुडा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting

0: इन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकतदारी कायम करने के लिए मदऊ किया, जिससे माली शमूलियत को फरोग देने में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाजा होता है।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नमा निगार की एक रिपोर्ट।
2: सदर मुर्मू ने कहा कि भारत की दवासाजी की सनद शिमाली मकदूनिया में सरमायाकारी के लिए तैयार है। यह सरमायाकारी वसीतर बलकान और यूरोपीय मार्केट्स के लिए दवाएं और तिब्बी आलात मिलकर तैयार करने के लिए की जाएगी। उन्होंने खुराक की डिब्बाबंदी, गोल्डन चेन, लॉजिस्टिक, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई, मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इको निजाम के शोबों में शराकतदारी की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने शिमाली मकदूनिया को दावत दी कि वो बैनुल अक्वामी समशी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताबिकत रखने वाले बुनियादी ढांचे और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद जैसे मुश्तरका इकदामात में शिरकत करें। उन्होंने आलमी ऑडियल विजल और तफरीही समिट वेव्स में शिरकत की भी दावत दी, जो भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। शिमाली मकदूनिया से सुबह श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निपटने की तैयारी और मयारी हिफ्जान सेहत तक मुसावियाना रसाई दस्तयाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मजबूती, इख्तिरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीर थीम के जरिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरका इकदाम को आगे बढ़ाने के तई भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तिरा, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बे निजाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज होगी। आज आला ओहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाजाब्ता प्रोग्राम का आगाज होगा, जिसके बाद कल सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनक्किद होगी। इस मीटिंग में वज़रा अवामी सेहत से मुतालिक अहम आलमी और इलाकाई तरजीहात पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारतीय बहिया आईएनएस मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है, जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनक्किद होगी। आईएनएस मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाजों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और खवातीन के तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के वाकयात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
4: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि ग्रेजुएट लड़कियों में से शुरू में सरकर्दा 5% तालिबात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके बाद इनमें से तालिबात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। इस सरकारी स्कीम के तहत तालिबात को न सिर्फ स्कूटी फराहम की जाएगी, बल्कि उन्हें बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, लाजमी मुतालिका सामान और 4 लीटर पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। माजूर तालिबात शहीद फौजियों और बेघर अफराद की बेटियों के लिए आमदनी की हद की शराइत में रियायत दी जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे

0: के लिए शमीम इरफान।
1: भारत ने उसूलों पर मबनी शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तजारती निजाम के तहत अपने अजम को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तजारती तंजीम WTO में तजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाजा होता है। तजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने आलमी तजारती निजाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तजारती माहदों का एक वजी तर नेटवर्क कायम करके तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नर्म रवि पर मबनी गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी के निजाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबेन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इनसार शराकतदार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने अवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट UG इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहां दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट मुआहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गद्दे नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल्स जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तिजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद अहम बैन अलावामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी राब्तों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तहत अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी वतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सत्येंद्रनाथ द्वारा शहनाई पर बजाया राग राग नट भैरव। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर राशिद नियाजी।

0: 10 मिनट से ये सुन मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन सकेंगे। दौरानी प्रोग्राम 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी पर एक मालूमती तकरीर। 1 बजे आलमी खबरें नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम सुबगाही।
1: हम पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। दिल में है तेरी अजमत, लब पर है नाम तेरा। दिल में है तेरी अजमत, लब पर है नाम तेरा। तुसा नहीं है कोई, यकता मकाम तेरा। इंसान जिन फरिश्ते, दरिया पहाड़ जंगल। इंसान जिन फरिश्ते, दरिया पहाड़ जंगल। सब अपनी अपनी लय में लेते हैं नाम तेरा। इंसान जिन फरिश्ते, दरिया पहाड़ जंगल। सब अपनी अपनी लय में लेते हैं नाम तेरा। हर बर्ग हर शजर में पोशीदा तेरी कुदरत। हर बर्ग हर शजर में पोशीदा तेरी कुदरत। सारे जहान में है जारी निजाम तेरा। हर बर्ग हर शजर में पोशीदा तेरी कुदरत। सारे जहान में है जारी निजाम तेरा। बढ़ जाए चाहे जितना, बौना ही वो रहेगा। बढ़ जाए चाहे जितना, बौना ही वो रहेगा। किस तरह देख पाए इंसान बाम तेरा। बढ़ जाए चाहे जितना, बौना ही वो रहेगा। किस तरह देख पाए इंसान बाम तेरा। मुमकिन नहीं है खामी कारीगरी में तेरी। मुमकिन नहीं है खामी कारीगरी में तेरी। कुदरत तेरी कामिल, हर काम ताम तेरा। मुमकिन नहीं है खामी कारीगरी में तेरी। कुदरत तेरी कामिल, हर काम ताम तेरा। तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। शेर मुलाहजा फरमाइए कि तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। जेरे मुतालिया है जब से कलाम तेरा। तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। जेरे मुतालिया है जब से कलाम तेरा। मुस्लिम हूँ या के हिंदू, ईसाई हों के सिख हों। मुस्लिम हो या के हिंदू, ईसाई हो के सिख हो। दिल में बशर बशर के है एहतराम तेरा। मुस्लिम हो या के हिंदू, ईसाई हो के सिख हो। दिल में बशर बशर के है एहतराम तेरा। फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में। अर्ज किया है कि फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में। जिसने भी पी लिया है एक बार जाम तेरा। फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में। जिसने भी पी लिया है एक बार जाम तेरा। आखिरी शेर हमद का कि हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही। हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही। पहुंचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही। पहुंचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। दिल में है तेरी अजमत, लब पर है नाम तेरा। तुझसा नहीं है कोई, यकता मकाम तेरा। अब नाते पाक के कुछ शेर पेश करता हूँ, मतलब मुलाहजा फरमाइए।
2: रोशन रोशन आपकी सीरत,

तीरथ उजला उजला आपका नाम रोशन रोशन आपकी सीरत उजला।

उसके जिसने पुकारा आपका नाम। संग जनों को राहत बख्शी, दुश्मन जा को दी है अमां। संग जनों को राहत बख्शी, दुश्मन

मुझको अजब तस्कीन मिली है, मुझ पे अजब फैजान हुआ। मुझको अजब तस्कीन मिली है, मुझ पे अजब

आपका नाम, आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए कि सारे ही असहाबे पयंबर रुश्दो हुदा के तारे हैं, सारे ही असहाबे पयंबर रुश्दो हुदा के तारे हैं, उनसे बढ़ी है दीन की अजमत, उनसे चमका आपका नाम, उनसे बढ़ी है दीन की अजमत, उनसे

0: और आयुष बताओ, अब आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड ब्रेन डे की बात करते हैं.
1: सो फनत, एक्चुअली वर्ल्ड ब्रेन डे इट्स अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन हाउ टू कीप आवर ब्रेन हेल्थी well of course and preventing neurological disorders. This year's theme, let's focus on that, it's brain health for all ages, no matter what, for all ages, and this is set by World Federation of Neurology.
0: Bilkul, aur mastishk ko swasth rakhne ke liye jo sabse badi galtiyan aajkal log kar rahe hain jiski wajah se bahut sari bimariyan utpann ho gayi hain, wo hai neend puri na lena, stress aur bahut zyada junk food ka istemal karna.
1: So I think to prevent neurological disorders, meditation, stuff like yoga and eating fresh fruits and vegetables every day, that will definitely help you all.
0: बिल्कुल, और बच्चों से मोबाइल तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि ये भी ब्रेन पर बहुत ही बुरा जो है असर डालता है.
1: Leading cause of brain fog actually.
0: क्योंकि हमें ब्रेन को भी आराम देना बेहद जरूरी है, 24 घंटे ये काम करता है, तो अगर आप सोएंगे, रेस्ट लेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, तो ब्रेन भी जो है आपका हेल्दी रहे.
1: सो लिसनर्स, थिंक अबाउट योर ब्रेन.
0: 24 आवर्स आज से शुरू जो है आप कर दीजिए मेडिटेशन.
1: जी,
0: और अब आगे बढ़ते हैं, 1981 की बात कर लेते हैं. आज ही के दिन भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया था.
1: इन 1933 एविएटर वाइली पोस्ट बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड.
0: 1999 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू हुई.
1: इन 1934 नोटोरियस अमेरिकन गैंगस्टर जॉन डिलिंगर वाज शॉट एंड किल्ड बाय फेडरल एजेंट्स आउटसाइड शिकागोस बायोग्राफ थिएटर.
0: और 2019 में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया. तो ये तो थी इतिहास की बात, और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम याद कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे की. वो देश के सबसे कम उम्र के रेमन मैक्सेसे पुरस्कार विजेता रहे. संदीप पांडे देश के उपेक्षित तथा हाशिए पर जी रहे लोगों की दशा देखकर इतना द्रवित हुए कि उन्होंने उस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करना निर्णय लिया. अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आशा परिवार नाम की एक संस्था खड़ी की, और इसके माध्यम से देश के दलितों और अल्पसंख्यक की पक्षधारता के लिए वो काम करने लगे. और आइए अब हम बात कर लेते हैं भारत में संगीत इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक, मुकेश चंद्र माथुर की.
1: हाउ ट्रू.
0: जी, पेशे से एक इंजीनियर के घर पर पैदा होने वाले मुकेश के अंदर वो सलाहियत थी कि वो एक अच्छे गायक बनकर उभरे, और यही हुआ.
1: So Mukesh's interest in the arts was seen very early. As a child, he used to listen in on his sister when the music teacher would come to teach his sister. And as he grew older, he became completely mesmerized by the songs of K.L. Sehgal. He used to spend a lot of time imitating him.
0: बिल्कुल शगुन, और निर्दोष फिल्म में मुकेश ने अदाकारी करने के साथ साथ गाने खुद गाए, और इसके अलावा माशूका, आह अनुराग और दुल्हन में बतौर अभिनेता भी काम किया. केएल सहगल से मुतासिर मुकेश ने अपने शुरुआती दिनों में उन्हीं के अंदाज में गाने गाए. मुकेश का सफर 1941 से शुरू हो गया, और एक गायक के रूप में 1945 में फिल्म पहली नजर में उन्होंने गाना गाया.
1: So well, you were telling that he has worked in other capacities as well, such as an actor, music director, and producer. Well, we know him as a playback singer, of course. And then after he finished his 10th standard, actually, he got a job working for the Delhi Department of Public Works. But even while working, his interest was in arts then also, and he used to experiment with recordings and worked hard to improve his singing while working as well.
0: तो शर्मा, हमने उन्हीं के गानों की एक मेडली तैयार की है, तो क्यों ना अपनी श्रोताओं को सुना दे.
1: श्योर.

0: सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तिसादी राब्तों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वजराए सेहत की 3 रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोस शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवन को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जेनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तहत अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति होडा से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी टेक्नोलॉजी नीज इख्तरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। स्कोपिया के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है, इन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकत दारी कायम करने के लिए मदऊ किया, जिससे माली शमूलियत को फरोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाजा होता है। शिमाली मकदूनिया के ब्रिक्स मुल्कों के वजाय सेहत की 3 रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी और मियारी हिफान सेहत तक मसावियाना रसाई दस्तियाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वजराए सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला अहदेदार शिरकत करेंगे।

0: कांग्रेस और लोकसभा में ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलेकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि आंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए ये हुक्म जारी किया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी संधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमासक्रून की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे, नीज तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल्स जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोंग जून हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सर्वी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी राबतों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वजराए सेहत की 3 रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारोबार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोस शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवन को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तहत अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी संधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है अकवाल जर्रीन का प्रोग्राम शम्मी फरोजा।
2: हम में से हर इंसान किसी अकीदा या किसी नजरिए से जुड़ा हुआ है। ये नजरियात और अकायद मादी और दुनियावी चीजों से मुताल्लिक भी होते हैं और रूहानी और मजहबी चीजों से मुताल्लिक भी। गोया के नजरियात और अकायद का ये बंधन लाजमी भी है और फितरी भी। इनमें से कुछ नजरियात आर्जी और वक्ती होते हैं और कुछ दवामी और अबदी होते हैं, जो जिंदगी भर साथ चलते रहते हैं और कभी जुदा नहीं होते। इसी के साथ इंसान फितरतन एक समाजी मखलूक और मुआशरती जानदार है। वो समाज की एक इकाई है, यानी उसका वजूद समाज से वाबस्ता है और समाज का वजूद उससे वाबस्ता है। इस बिना पर हर इंसान अपने नजरिया और अपने अकीदे को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के अकायद और नजरियात से मुतासिर होता है। चूंकि इंसान एक जिंदा मखलूक और बाशूर हैवान है, इसलिए उसके तबीयी मैलानात और जहनी ख्यालात भी तगैयुर पजीर और तनावो पसंद होते हैं और एक समाज के मुख्तलिफ अफराद के मैलानात और ख्यालात भी जुदा जुदा हुआ करते हैं। ऐसी सूरत में उनके अकायद और नजरियात भी मुख्तलिफ और जुदा होते हैं। समाजी मेलजोल और इंसान के फितरी तौर पर मुआशरती मखलूक होने की वजह से हर इंसान अपने अकायद और नजरियात की तबलीग और नशर इशात में लगा रहता है और वो ये चाहता है कि उसके मनपसंद अकीदे और नजरिए को ज्यादा से ज्यादा लोग इख्तियार करें। ऐसे में नजरियात की कशमकश और अकायद का तसादुम एक फितरी अम्र है। इसलिए इस काम में अकीदे का दुरुस्त होना और ज़हनो ख्याल को गलत राहों से बचाना दाई और मदऊ दोनों के लिए जरूरी है। यानी जिस तरह ये बात जरूरी है कि दाई यानी दावत देने वाला दुरुस्त और सही बात की दावत दे, इसी तरह ये बात भी बेअनी ही जरूरी है कि मदऊ यानी जिसको दावत दी जा रही है वो भी अपने जहन को दुरुस्त सिमत में रखकर इस दावत को कबूल करे और गलत बात पर हठधर्मी इख्तियार न करे। इसी में समाज की फलाह व बहबूद की जमानत है और यही इंसानियत का शरफ और मेराज है।

0: Miss Farisa! Miss Farisa!
1: Come in, sir. Yes, sir.
0: Oh, come. हमारे बोइंग प्लेन शोहरत की ये पहली परवाज होगी. मैं हूँ इसका पायलट अकील और आप हैं इसकी एयर होस्टेस फरीसा.
1: जी हाँ, अकल और फिरासत के बगैर शोहरत महज एक ख्वाब रहती है ना.
0: और ख्वाब भी ऐसा ख्वाब जिसकी कोई ताबीर ही ना हो.
1: शायद इसीलिए मुसाफिरों के इंतखाब की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है.
0: हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट देने होंगे जो वाकई शोहरत के मुस्तहिक हों.
1: जी, और सर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.
0: हाँ, लेकिन बहुत कड़ी जिम्मेदारी भी नहीं. जो तरीका हमारी कंपनी ने अपनाया है वो बहुत मुफीद होगा.
1: काश ऐसा ही हो. सर, पहले अलार्म पर बुकिंग कंपाउंड का बाहरी गेट खुल जाएगा और 15 मिनट बाद दूसरे अलार्म पर ये गेट आप ही आप बंद हो जाएगा ताकि ज्यादा भीड़ ना हो जाए.
0: करेक्ट. और तीसरे अलार्म पर हम उन लोगों को ये टोकन और क्वेश्चनेयर जारी करना शुरू कर देंगे.
1: उनका काम सिर्फ ये होगा कि टोकन रख लें और उसी नंबर के फॉर्म की खानापूरी करके अपने पासपोर्ट फोटोग्राफ के साथ कलेक्शन बॉक्स में डाल दें.
0: फाइनल बुकिंग 1 हफ्ते के बाद ही होगी.
1: यस सर.
0: लोग अंदर आने के लिए टूटे पड़े हैं.
1: क्यों ना हो, ये कोई मामूली फ्लाइट नहीं, शोहरत की परवाज है.
0: और कोई भी मशहूर होने का ये मौका जाया करना चाहता नहीं.
1: सर, ये टोकन और फॉर्म्स संभाल लीजिए.
0: अल्लाह ही दीजिए. अब देखिए, हर किसी को हम ये फॉर्म दे नहीं सकते, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा.
1: मैं जानती हूँ सर.
0: ठीक है. लीजिए, बाहरी गेट बंद हो गया. अब हमें

0: चलने की तैयारी करनी चाहिए।
1: यस सर।
0: एक बात याद रखिए मिस सरिसा, इंसानों के अनगिनत जुमरे हैं और हमें हर जुमरे से नुमाइंदा लोगों का इंतखाब करना है।
1: जी हाँ सर, जानती हूँ, वरना हमारे तैयारे में एक ही जुमरे के लोगों की भीड़ लग जाएगी। ये रहा तीसरा अलार्म। सर मैं बुकिंग विंडो खोल रही हूँ।
0: ओके।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। बराहे करम क्यू बना लीजिए, एक तरफ मर्द, एक तरफ खवाती। हमें हर काम सबके साथ करना चाहिए।
2: देखिए मोहतरमा, हम कोई मामूली लोग नहीं, रिसर्च स्कॉलर्स, क्रिटिक्स, पोएट्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, लीडर्स, राइटर्स, एक्टर्स। बेहतर होता अगर आप हर एक के लिए एक अलाहिदा काउंटर रखती।
1: मोहतरमा, आसमान शोहरत सिर्फ एक ही है। क्या आप लोग अपना बायोडाटा और फोटोग्राफ साथ लाएंगे? देखिए, मुकम्मल किया हुआ क्वेश्चनेयर, फोटोग्राफ और बायोडाटा फिलहाल हमें इसी की जरूरत है। तो मेहरबानी करके इस तरफ आ जाइए। ये रहा फॉर्म और ये रहा टोकन। फॉर्म मुकम्मल करके ग्रीन बॉक्स में डाल दीजिए और टोकन प्लीज हिफाजत से रख लीजिएगा। लीजिए, ये रहा टोकन नंबर एक।
2: ये काफी है भाई, मैं सबसे पहले मेरे बुकिंग ऑफिस पहुंचने के बावजूद आपने टोकन नंबर इन साहब को क्यों दे दिया?
1: देखिए मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आप सिर्फ हुज्जत करने में मसरूफ हैं। बहरहाल, ये रहा टोकन नंबर दो।
2: शुक्रिया।
3: अभी इंसान हवाई किले बनाता है लेकिन तकदीर उन्हें मिसमार कर देती है। लीजिए अपना टोकन नंबर मैडम और एक तरफ बढ़ जाइए ताकि हमें भी अपना टोकन लेने
1: दे। ये लीजिए टोकन नंबर तीन, टोकन नंबर चार, टोकन नंबर फाइव।
0: थैंक यू, धन्यवाद मैडम।
1: क्यों है कि खत्म होने में नहीं आता?
0: अब तक कितने टोकन तकसीम हो चुके हैं?
1: 2000।
0: ओके, दैट्स इट। आज के लिए बुकिंग बंद कर दीजिए।
1: जी,
0: बुकिंग क्लोज्ड। और प्लीज कम टुमारो के प्ले कार्ड लगा दीजिए और विंडो गिरा दीजिए।
1: बहुत बेहतर सर, मैं माइक पर भी इसका ऐलान कर देती हूँ ताकि मजमा बेकाबू ना हो जाए।
0: ओके,
1: मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। टुडेज बुकिंग क्लोज, प्लीज कम टुमारो।

0: माय गॉड,
1: अरे नहीं, इतनी भीड़, ये बेतहाशा मजमा।
0: शोहरत की भूख रोटी की भूख से ज्यादा कवी और तेज होती है। वैसे सर, हमारी कंपनी ने इस परवास का ऐलान करके बड़ी आफत मोल ले ली है।
1: हाँ, ये तो सही है। और शोहरत के तैयारे में सीटें लिमिटेड हैं और ख्वाहिशमंदों की तादाद अनलिमिटेड।
0: सर, जब तक इस मुश्किल का कोई हल ना निकले, शोहरत की परवास को मुअत्तल क्यों ना कर दिया जाए।
1: गुड आइडिया। मिस फरी साहब
0: जी,
1: जरा दुनिया के मशहूर लोगों के नाम और उनके हालात पर नजर डालें, शायद इंतखाब करने के लिए कुछ उसूल मिल जाए। अच्छा, आप चंद वो मशहूर नाम लीजिए जो फिलफौर आपके जहन में आ रहे हैं।
0: चंद नाम, हाँ, अरस्तू, अफलातून, लुकमान, शेक्सपियर, कालिदास, मीर, गालिब, इकबाल, आइंस्टाइन, एडिसन, गांधी, चर्चिल, आजाद, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मैडम क्यूरी।

0: चले रोमी।
1: बस बस बस बस, फिलहाल यही नाम काफी है। अच्छा, अब क्या इनमें कोई ऐसी चीज है जिसे हम कद्र मुश्तरक का नाम दे सकें?
0: ये बताना तो बेहद मुश्किल है सर। लेकिन ठहरिए, इन सब ने मुखालफतों के बावजूद अपनी ही बात कही। यूं समझ लीजिए गोया कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक उनकी जिंदगी का मोटो था।
1: ठीक है, लीजिए, हमें स्क्रीनिंग का एक उसूल हाथ आ गया।
0: That's right.
1: जिन लोगों में हक गोई और बेबाकी हो, शोहरत का टिकट उनको ही दिया जाए।
0: लेकिन सर, सिर्फ हक गोई ही काफी नहीं, इंसानियत का दर्द भी जरूरी है, इंसानों से आम हमदर्दी।
1: ओके, इसे उसूल नंबर दो मुकरर कर लीजिए।
0: लेकिन दुनिया इंसानियत से नामालूम हमदर्दी और बेफैज दर्द से भी कोई खास काम नहीं चलता।
1: मैं आपका मतलब समझ गया। इरफान दर्द है तुझे दरमा की फिक्र कर, यानी दर्द का दरमा भी होना चाहिए, क्यों?
0: और दरमा सिर्फ दूरंदेश लोग, मैन ऑफ विजन ही बता सकते हैं, जो लोग इस वाज़े मुस्तकबिल का सच्चा ख्वाब देख सकें।
1: ये लीजिए, हमें स्क्रीनिंग का तीसरा उसूल हाथ आ गया, यानी मुस्तकबिल भी नहीं।
0: ठीक है, गोया नंबर एक हक गोई और बेबाकी।
1: करेक्ट।
0: नंबर दो दर्द का रिश्ता। नंबर तीन आलम इंसानियत के दर्द का दरमा यानी मुस्तकबिल बीनी।
1: बिल्कुल ठीक,
0: हमारी स्क्रीनिंग इन्हीं उसूलों पर होगी।
1: बिल्कुल ठीक मिस सरीसा, लेकिन देखिए 5 कप के बज चुके हैं, ऑफिस टाइम खत्म हुआ।
0: जी,
1: अब कुछ फॉर्म्स आप साथ ले जाएं, कुछ मैं घर ले जाता हूँ। इस तरह कम से कम गैर मुस्तहिक लोगों के फॉर्म्स तो अलग कर लिए जा सकेंगे।
0: मुझे डर है सर, ये फर्स्ट लिस्ट भी काफी तवील होगी।
1: फर्स्ट लिस्ट कहाँ, ये तो फर्स्ट डेज लिस्ट है। बहरहाल, जल्द फाइल उठा लीजिए और हमें प्रेस क्लब की पार्टी में जाना है, याद है?
0: जी,
1: चलिए जल्दी करिए।
0: चलिए। एक जरूरी ऐलान सुनिए, आज इस बुकिंग विंडो पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ काउंटर से फॉर्म्स तकसीम होंगे। आज हमने हर जुमरे के लिए अलहदा काउंटर खोला है, मसलन शायरों, अदीबों, अफसाना नवीसों, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सियासतदान, यानी हर जुमरे का एक अलग काउंटर है। आप पिछले अहाते में जाकर उन काउंटर्स तक पहुंच सकते हैं।
2: ये भी घूम रही, अब काउंटर तक पहुंचना भी एक सफर से कम नहीं है।
0: डिसिप्लिन प्लीज, काइंडली मेंटेन डिसिप्लिन। मेहरबानी फरमाकर अपने कद के मुताबिक कतार बनाइए, सबसे ऊंचा सबसे आगे, टॉलेस्ट फर्स्ट।
3: मेरी मुसीबत अलग रही, मुझे और पीछे जाना पड़ेगा।
4: नाराज, मैं आपसे तवील उल कामत हूँ, इजाजत हो तो आगे आ जाओ।
3: अरे हम दोनों का कद तो बिल्कुल यकसा है।
5: ठीक है, मैं टॉस करके जवाब।
0: जरा सब्र कीजिए प्लीज, सब्र कीजिए। अभी हमारे वॉलंटियर्स आकर कतार का जायजा लेंगे और हर एक को उसके असली कद के मुताबिक खड़ा कर देंगे। आप लोग प्लीज घबराएं नहीं, सही लाइन बनने के बाद ही काउंटर खोला जाएगा। एंड नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं जरा दूसरे काउंटर का हाल देख लूं। अरे ये क्या, आप लोगों ने अभी तक लाइन नहीं बनाई? कब से ऐलान किया जा रहा है द टॉलेस्ट फर्स्ट, सबसे ऊंचा सबसे आगे?
4: मोहतरमा, हम सब रिसर्च स्कॉलर हैं, किसी और की गर्दन पर सवार हैं। हम अपने कद का लिहाज करें या जिसकी गर्दन पर सवार है उसका?
0: देखिए प्लीज, क्या आप लोग अलग अलग नहीं खड़े हो सकते?
4: अभी जब तक दूसरे की गर्दन ना हो, हमारा वजूद और अदम कोई माने नहीं रखता।
0: ये तो आपने एक नया मसला पैदा कर दिया। बहरहाल, एक टिकट पर दो आदमी सफर नहीं कर सकते।
4: तहकीक की दुआई, तहकीक की दुआई।
0: साइलेंस प्लीज, साइलेंस, बराहे करम चुप हो जाइए। मैनेजर साहब आकर खुद इस मसले

0: करने का फैसला कर देंगे।
1: एक्सक्यूज मी, अटेंशन प्लीज, अटेंशन, एक्सक्यूज मी प्लीज, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। इस मैदान में मौजूद ख्वातीनों हजरात से दरख्वास्त की जाती है कि वो जहां तक मुमकिन हो अपने कद के लिहाज से लाइन बनाएं। जी हां, सबसे ऊंचा, सबसे आगे रहे। ये बेनाम काउंटर है, यहां मुख्तलिफ खसूसियत के लोगों को टिकट मिलेगा। जी हां, और ऐसे लोगों को जो किसी खास जुमरे से ताल्लुक नहीं रखते, और उनसे मुलाकात करने वाले वॉलंटियर्स खुद आ रहे हैं। बस आप सब सब्र सुकून से काम लीजिए प्लीज।
2: सुनिए सुनिए ऑर्गेनाइजर साहब।
0: अच्छी, बताइए बताइए, आपका क्या जुमरा हो सकता है?
2: इस कुर्तनी फास्ट सीटिंग,
0: फास्ट सीटिंग वाले हजरात और खवातीन इस तरफ आ जाएं, और अब अपने कद के लिहाज से लाइन बनाएं।
2: ओहो मैडम, हम तो कुल पांच ही तो लोग हैं।
0: देखिए, पांच हो या पचास, डिसिप्लिन से हर काम आसान हो जाता है। That's right, ये हुई ना बात। जी आप कहिए, आपका क्या कारनामा है?
3: जी जी, मैं 3 मिनट में 13 संतरे खा सकता हूँ।
4: जनाब, मैं 10 मिनट में 20 अंडे खा सकता हूँ।
0: मैं सुन रही हूँ, आप लोग कहते हैं।
3: मैडम, मैं 10 मिनट में 6 आम चूस सकता हूँ।
0: और मोहतरमा आप?
5: जी मैं, जी मैं आज 5 साल से सिर्फ विटामिन पिल्स खाकर जिंदा हूँ। विटामिन पिल्स के सिवा कुछ भी नहीं खाती।
0: और मिस्टर आप?
6: जी मैं लोहे के चने चबा सकता हूँ।
0: हैरतनाक, ताज्जुब खेज। लेकिन तेज खुर्दनी और लोहे के चने चबाने से या सिर्फ विटामिन पिल्स पर जिंदा रहने से भला दूसरे लोगों को क्या फायदा?
5: फायदा तो कुछ भी नहीं।
3: मैडम, बल्कि प्रैक्टिस करते रहने में उल्टा खर्च ही होता है।
0: देखिए देखिए, प्लीज सुनिए, आपका तस्किरा अजीब बातों की किताब में तो हो सकता है, लेकिन शोहरत के तैयारे में आपको सीट नहीं दी जा सकती। आई एम वेरी सॉरी, यू ऑल कैन गो होम।
1: ओह गॉड, कितना बड़ा बोझ हट गया। शुक्र है, बुकिंग करीब करीब मुकम्मल हो चुकी। मिस फरीसा।
7: यस सर।
1: अब जरा चार्ट में वैकेंसीज चेक कर लीजिए प्लीज।
7: जी, ये रहा चार्ट। एक दो तीन, सर सिर्फ 4 सीटें खाली हैं, और वो भी डिलक्स सेक्शन में।
1: मिस फरीसा, जहाज के साला तरीन हिस्से में, यानी डिलक्स सेक्शन में, शोहरत के लिए खुद को पेश करने वालों और शोहरत के पीछे भागने वालों को जगह नहीं देनी चाहिए। क्यों?
7: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। सर, क्यों ना इन 4 सीटों को पूरा करने के लिए हम खुद ही मुसाफिरों का इंतखाब करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इन सीटों के लिए देश का कोना कोना फिरकर हम डिजर्विंग पर्सन को ढूंढ निकालेंगे।
7: दैट्स राइट सर।
1: और उसके बाद ही फ्लाइट की तारीख का ऐलान किया जाएगा।
7: जी।

0: कार क्यों रोक लिया आपने?
1: जरा बाएं तरफ के उस साइन बोर्ड को देखिए, क्या लिखा है?
0: इलेक्ट्रॉनिक कारपेंटर। ये क्या बात हुई सर?
1: इसका हाल जानने के लिए हम इस दुकान के करीब ही ठहरे रहेंगे, लेकिन बिल्कुल अजनबियों की तरह।
0: जी?
1: किसी को पता न चलने पाए कि हमें इस दुकान में दिलचस्पी है।
0: जी।
2: शुक्र है, शुक्र है, आखिर बेंच ऑफ मर्थ तैयार हो गई। अभी काम करता हूँ, कुछ लोगों को बुलाकर इस पर बैठा के देखता हूँ। बच्चे ही इन्हें बुलाता हूँ।
3: बच्चों सुनो, हाँ आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ अंदर आ जाओ ना, हाँ आओ, आइए हमारी हजरात, आप भी आइए, हाँ दुकान के अंदर आइए, चले आइए, आइए आइए आइए।
4: खैरियत तो है, खैरियत तो है, आप खुश भी हैं और बेचैन भी, आखिर बात क्या है?
2: अजी बात बाद में पूछिएगा, पहले आप सब इस बेंच पर बैठकर ये बताइए आपको क्या महसूस होता है?
4: ये तो लकड़ी की एक मामूली सी बेंच है, इस पर कुछ अंतर नहीं।

0: कुछ दायरे मुसल्लस मुरब्बा वगैरह की शक्लें बनी है।
1: आप बैठिए तो सही, बैठिए ना। हाँ सुनो नौजवान, तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ।
2: ठीक है जनाब, लेकिन मुझे करना क्या होगा?
1: कुछ खास नहीं, सिर्फ इस बेंच ऑफ मर्क पर बैठना है तुम्हें।
2: बेंच ऑफ मर्क यानी फरहत बेंच?
1: हाँ फरहत बेंच, फरहत बेंच। और बैठने के बाद ये बताना होगा कि क्या वाकई आप सब लोग इस पर बैठने के बाद मसरूर हुए या नहीं।
2: जनाब ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, मैं बैठने के लिए तैयार।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बच्चों, हाँ आप भी अंदर आ जाओ, बेंच पर काफी जगह खाली है, आओ आओ आ जाओ। आइए मैडम, आप भी आइए ना मैडम। मैडम आइए ना, इन बच्चों के पास बैठिए।
3: अरे ये सब के सब बेख्तियार हंसे जा रहे हैं, शायद हंसी का दौरा पड़ गया है।
4: हाँ ऐसा ही लग रहा है सर, देखिए तो। अरे सर वो देखिए, अब उन्हें हंसी का दौरा नहीं रहा, अब तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है। तो देखिए आंखों में चमक है और पेशानी पर फिक्र की एक सलवट भी नहीं रही। लीजिए वो सब बेंच से उतर आए और अपनी अपनी राह लग रहे हैं।
3: आइए जल्दी मोटर में बैठ जाइए, हम उस अगले मोड़ पर मोटर रोककर उन सबका इंटरव्यू लेंगे।
4: जी
3: आइए।
0: ये क्या बदतमीजी है मियां, 20 सड़क पर मोटर उड़ाकर हमारा रास्ता रोकना, आखिर बात क्या है?
3: हजरात हजरात हजरात आप नाराज ना हो, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो बेंच ऑफ मर्क्स पर
2: फरहत बेंच कहिए ना।
3: जी हाँ फरहत बेंच सही। वैसे जनाब असल नाम तो वही होगा जो उसका बनाने वाला मुकर्रर करेगा। खैर ये बताइए कि फरहत बेंच पर बैठकर आपको क्या महसूस हुआ?
5: जनाब मैं एक ताजिर हूँ
3: जी,
5: अभी अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज से आ रहा था, ये सुनकर कि मेरे पास जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है तो उससे मैं काफी उदास था। लेकिन जैसे ही मैं फरहत बेंच पर बैठा, पहले तो बेख्तियार कह कहा लगाने की ख्वाहिश हुई।
4: अच्छा?
5: फिर एक अजीब सरूर और सुकून सा महसूस हुआ।
3: ओह हैरत है।
5: और ये सुकून इलॉजिकल भी नहीं था, मुझे एकदम याद आया कि मेरी कंपनी ने एक और नया बिजनेस खोल लिया है, डिविडेंड में कमी इसी वजह से हुई है। फिर ये बावर करना गलत ना था कि आइंदा साल इस नए बिजनेस की वजह से कंपनी को ज्यादा मुनाफा मिलेगा और मुझे भी।
4: हाँ। बेशक ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। और मोहतरमा आपने क्या महसूस किया?
6: जी घरेलू झगड़ों, यही सास ननद के झगड़ों से मैं बहुत आजीज आ गई थी। फरहत बेंच पर बैठकर मुझे याद आया कि मैं भी किसी की ननद हूँ और मेरा भी यही वतीरा है। इस ख्याल के आते ही मैंने सोचा कि गिव एंड टेक की पॉलिसी से सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।
4: वाह
6: बस इस तरह मुझे सुकून मिल गया।
3: और किबला आपने क्या महसूस किया?
7: क्या महसूस किया?
3: जी
7: मुझे बीमारियों ने बड़ा आजिज कर दिया था।
3: अच्छा।
7: हर वक्त दिल पर घबराहट छाई रहती थी, फरहत बेंच पर बैठकर मुझे गैर गालिब का शेर याद आ गया।
3: अच्छा।
7: गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहार होने तक। और ऐसा महसूस हुआ जनाब कि गालिब ने मेरे ही लिए लिखा है शेर, बस फिर मुझे सुकून आ गया।
4: बड़ी हैरतनाक बात है।
3: और नौजवान आपको क्या महसूस हुआ?
2: जी मुझे
3: जी
2: मैं अभी अभी बीई पास कर चुका हूँ।
3: अच्छा।
2: मैंने मुलाजमत के लिए कई इंटरव्यू दिए पर हर जगह से मायूस कुन जवाब मिले, और जनाब इस फरहत बेंच पर बैठते ही मुझे सुकून मिल गया। गोया वो कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान है जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। ये शेर मेरे हवास पर तारी हो गया। इस रूहानी सुकून के बायस मुझे ख्याल आया क्यों ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की राह इख्तियार करूं।
3: बेशक।
2: और जनाब अब मैं ऐसा ही करने वाला हूँ।
3: हाँ जब इंसान को दिल जमाई मयसर हो तो कई इम्कानात वाजे हो जाते हैं।
4: और सर, इन बच्चों से तो सवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं। देखिए ना, इनकी मसलत इनके चेहरों से आया है।

0: आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया,
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सब जा सकते हैं। मिस फरीसा, ये बेंच ऑफ मर्थ या फरहत बेंच बड़े काम की चीज निकली, क्यों?
1: जी,
0: यकीनन इसके मौजूद को आसमाने शोहरत पर जाने का पूरा पूरा हक है।
1: यस, यू आर राइट।
0: आओ हम उन्हें इसकी खुशखबरी सुना दें।
1: चलिए।
2: आइए आइए आइए ना, इस फरहत बेंच पर बैठ जाइए, आपकी तमाम फिक्र और थकन दूर हो जाएगी।
0: शुक्रिया शुक्रिया जनाब, हमें आपकी इजाद की हुई इस बेंच के फायदे का इल्म हो चुका है।
1: इस बेंच को आप ही ने इजाद किया है ना?
0: जी हाँ जी हाँ, खुशकिस्मती से मैं ही इसका मूजिद हूँ और आज ही मेरा ये तजुर्बा कामयाब हुआ है। कामयाबी पर हमारी मुबारकबाद कबूल फरमाइए।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम से फायदा उठाकर ये शॉप खोली थी और पिछले चंद माह से तजुर्बों में मैं मसरूफ था।
0: किस किस्म के तजुर्बों में?
2: दरअसल ये बेंच ऑफ मर्थ या फरहत बेंच दीवारे गिरिया, दीवारे कहका और ब्रिज ऑफ साइज के मुताले के बाद ही बनाया जा सका है। वैसे ये नाम तो आपने सुने ही होंगे,
1: फिर भी अगर आप कुछ तफसील।
2: जी हाँ, देखिए फरहत बेंच दीवारे कहका के उसूल पर बनाई गई है।
0: वही दीवारे कहका ना जिसे देखकर लोग कहका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं?
2: जी हाँ,
0: पुरानी दास्तानों में उसका काफी तज़किरा आया है।
2: ये दरअसल ज्योमेट्री की शक्लों का करिश्मा है। मैंने भी इस बेंच के बनाने में इन खास शक्लों के पीसेस तैयार किए हैं और इन सबको इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया है।
1: वाकई बड़ा कमाल किया है आपने तो।
2: जो शख्स भी इस बेंच पर बैठ जाए कहकहा लगाने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन अगर वो मुसलसल कहकहा ही लगाता रहे तो बजाते खुद एक अजियत बन जाएगा।
0: हाँ, ये बात भी सच है।
2: और इस अजियत से बैठने वाले को बचाने के लिए दीवारें गिरिया और ब्रिज ऑफ साइज या आहों के पुल की साख्त से मदद ली गई है। या यूं कहिए कि दीवारें गिरिया कहकहों को रोक देती है और फिर दीवारें कहकहा और आहों के पुल का कॉम्बिनेशन सुकून की वो कैफियत पैदा कर देता है जो हर इंसान चाहता है।
0: वंडरफुल,
1: एक्सलेंट, रियली एक्सलेंट। वाकई आपकी अक्लमंदी का जवाब नहीं।
2: और सबसे अहम बात तो ये है कि फरहत बेंच ज्यादा महंगा भी नहीं है।
1: अच्छा?
2: जी हाँ, आम बेंचों से सिर्फ 10-12 रुपए ज्यादा लागत आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी के पार्क्स में जगह जगह ये बेंच रख दिए जाए ताकि हर एक को अपनी फिक्र दूर करने का मौका मिले और खुशी से जीने की हिम्मत पैदा हो जाए।
0: टेंशन और फ्रस्ट्रेशन से भरी आज की इस दुनिया में आपकी ये इजाद सब इंसानों के लिए एक इंतहाई मुफीद इजाद है।
1: इसीलिए हम आपको शोहरत की पहली परवाज का टिकट पेश करते हैं।
2: क्या कह रहे हैं आप? देखिए आसमान शोहरत पर तो बड़े और कद्दावर शख्स ही जा सकते हैं, मेरी ये मजाल कहाँ।
0: ऐसा ना कहिए, ये सही है कि हर जुमरे में कद और बड़ाई ही की अहमियत है। बड़ा लीडर, बड़ा शायर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा फिलोसफर, बड़ा साइंसदान, लेकिन ईजाद की बात अलग है।
1: ईजाद के जुमरे में हर मुजिद अपने एक मुनफरद मुकाम का मालिक होता है, चाहे वो पहिए की ईजाद हो या रॉकेट की ईजाद।
0: और शोहरत के पायलट की हैसियत से मुझे इख्तियार है कि शोहरत की परवाज का ये टिकट आपकी खिदमत में पेश करूं।
1: फ्लाइट जुमेरात 24 को है और फ्लाइट का वक्त 5:15 AM। आधा घंटा पहले एरोड्रोम पहुंच जाइएगा।
0: जी हाँ, शोहरत की परवाज मुबारक।
2: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: एंड विश यू अ वेरी वेरी स्मूथ फ्लाइट इन एडवांस।
2: थैंक यू वेरी मच।

बाबला खोचर, राजेश्वर नाथ, कारी मोहम्मद इलियास, रईस मिर्जा, सलीम खान, मुमताज मिर्जा, सुनील कुमार रावल। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

अपनी विदाई दिनों में मुकेश ने अदाकारी भी की थी सामईन, लेकिन फिर जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी असल पहचान गायकी है। शुरू में उनकी जो गायकी का अंदाज था उस पर केएल सहगल का असर नुमाया था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपना अलग अंदाज पैदा किया जो बाद में उनकी शनाख्त बन गया। 1945 में एक फिल्म आई थी पहली नजर, वहां एक गीत था दिल जलता है तो जलने दे। मुकेश के लिए यह नगमा बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ। इस गाने ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था।

आकाशवाणी से उर्दू सर्विस एयर कर रही है प्रोग्राम मेरी पसंद। और आज का ये प्रोग्राम हम मुकेश गुरुकार मुकेश की याद में पेश कर रहे हैं। 50 और 60 की दहाई में मुकेश ने शंकर जयकिशन, सलील चौधरी, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और दीगर बड़े मौसीकारों के साथ यादगार नगमे रिकॉर्ड कराए। उनकी आवाज खासतौर पर अदाकार राज कपूर की शख्सियत पर बेहद जचती थी। यहां तक कि लोग मुकेश की आवाज को ही राज कपूर की पहचान समझने लगे थे।

मुकेश के फिल्मी सफर में उन्हें कई फिल्मी एजाजात से नवाजा गया। अगर हम फिल्म फेयर के हवाले से बात करें तो उन्हें फिल्म अनाड़ी के नगमे सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, इसके अलावा पहचान फिल्म का नगमा सबसे बड़ा नादान, बेईमान फिल्म का नगमा जय बोलो बेईमानी की, कभी कभी फिल्म का नगमा टाइटल ट्रैक, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है साहिर साहब का लिखा हुआ, इन तमाम चारों नगमों के लिए उन्हें फिल्म फेयर की जानिब से बेस्ट प्लेबैक सिंगर के एजाज से नवाजा गया। इसके अलावा उनकी कई दीगर फिल्में नॉमिनेट भी हुई लेकिन वो ये अवार्ड हासिल ना कर सकी, जिनमें जिस देश में गंगा बहती है, संगम, मिलन, पहचान, मेरा नाम जोकर, आनंद, शोर, रोटी कपड़ा पर मकान, धर्म करम, कभी कभी, मुक्ति, सत्यम शिवम सुंदरम। और नगमे अगर इन फिल्मों के बताएं तो होठों पे सच्चाई रहती है, दोस्त दोस्त ना रहा, सावन का महीना पवन करे शोर, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, जाने कहां गए वो दिन, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, एक प्यार का नगमा है मैं न भूलूंगा एक दिन बिक जाएगा, मैं पल दो पल का शायर हूं, सुहानी चांदनी रातें, चंचल शीतल निर्मल कोमल, ये तमाम के तमाम नगमे थे जो नॉमिनेट हुए फिल्म फेयर के लिए। इसके अलावा रजनीगंधा एक फिल्म आई थी 1974 में और इस फिल्म का जो नगमा था कई बार यूं भी होता है, इस नगमे के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। आज का ये प्रोग्राम हमने गुलुकार मुकेश की याद में पेश किया। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब सुनिए जनाब सिराज अहमद की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी। उनवन है वो लौट आएंगे।

0: बाबा।
1: बेटा यहां आ जाओ, आग के करीब। आज तो कुछ ज्यादा ही सर्दी है और तुम कपड़े भी गर्म नहीं पहने हो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है?
0: मेरा नाम गुलाम रसूल है बाबा। गलती मेरी है, मैं समझा सूरज ढलने से पहले वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन जंगल में ही देर हो गई। अगर आप ना मिल गए होते मैं तो ठंड से मर ही जाता।
1: नहीं बेटा नहीं, सब किस्मत के खेल हैं, किस्मत का लिखा कोई नहीं जानता। मौत कब किसे और

0: पापा, क्या यह किसी रूह की आवाज है जो इन वीरान वादियों में भटक रही है?
1: नहीं बेटा, ये रूह नहीं, एक जीती जागती लड़की है, करीब के ही गांव की रहने वाली।
0: आप उसको जानते हैं?
1: मैं उसे ही नहीं, उसकी पूरी कहानी जानता हूं। ये बेचारी किसी बेचैन रूह की तरह इन वीरान वादियों में क्यों भटक रही है और किसकी तलाश में भटक रही है, ये भी मैं जानता हूं।
0: मुझे भी बताइए बाबा।
1: हाँ, जरूर बताऊंगा। आओ, वहां अलाव के पास बैठते।
0: चलिए बाबा।

0: गुलनार की बेचैन जिंदगी की पुकार है, न मालूम बेचारी कब तक इसी तरह भटकती रहेगी।
1: पापा, आप उसे कैसे जानते हैं?
0: 3 माह पहले की बात है, जब पहली बार मैंने उस लड़की गुलनार को देखा था। मौसम बहार के आखिरी दिन थे, वादियों में खिलने वाले खुशनुमा फूल अपने शबाब की आखिरी मंजिल पर थे। ऐसी ही एक चांदनी रात थी।
2: यूसुफ बेटी, वापस आ जाओ।
3: नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे अपने यूसुफ के पास जाना है।
2: नहीं बेटी नहीं, ये सरहदी इलाका है, यहाँ तुझे मौत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ यूसुफ नहीं, मशीन गन की कातिल गोलियां हैं, धमाके हैं, वहशत है, वीरानी है।
3: लेकिन सरहद के उस पार मेरा यूसुफ ही तो है, मैं उसी की तलाश में यहाँ आई हूँ। उसने मुझसे यही मिलने का वादा किया था।
2: मुझे बताओ यूसुफ कौन है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैंने पहले भी तुम्हें भटकते देखा है, क्यों अपनी जान देने पर तुली हो?
3: मुझे अपनी मौत की फिक्र नहीं है, आती है तो आ जाए।
2: बेटी, खुदकुशी हराम है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? इन वीरानों में जो कभी जन्नत के तस्वुर को हकीकत का रूप देते महसूस होते थे, आज सिर्फ तबाही और बर्बादी का राज है।
3: मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ। मैं तो बस अपनी यूसुफ की तलाश में भटक रही हूँ इन वीरानों में, जहाँ कभी मैंने और यूसुफ ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाई थी। लेकिन
2: क्या बेटी?
3: फिर यूसुफ ने आजादी के हुसूल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और इसी सिलसिले में सरहद के उस पार चला गया और मुझे यही इंतजार करने के लिए कह गया।
2: ओह, तो ये बात है। बेटी देखो, सर्दी बढ़ती जा रही है, तुम मेरे साथ चलो, मैं सामने उस गार में रहता हूँ, मैं वहां बैठकर तुम्हारी दास्तान सुनूंगा, शायद मेरी बेकीमत जिंदगी तुम्हारे किसी काम आ सके। आओ मेरे पीछे चलिए। आओ आ जाओ बेटी, आ जाओ, अंदर आ जाओ।
3: बाबा, आप इसी घर में रहते हैं?
2: हाँ बेटी, ये पथरीली घर मेरी कुल कायनात, मेरी दुनिया है। तुम्हारा नाम क्या है?
3: मेरा नाम गुलनार है, और आपका?
2: मालूम नहीं बेटा, दुनिया मुझे सिर्फ बाबा के नाम से पहचानती है। तुम भी मुझे बाबा कह सकती हो, लेकिन तुम्हारा नाम खूबसूरत है, गुलनार, गुलेनार। आओ यहाँ बैठो आपके पास, और अपनी कहानी सुनाओ, दिल का बोझ हल्का होगा।
3: लेकिन आपको मैं अपनी कहानी?
2: देखो गुलनार, मैंने तुम्हें बेटी कहा है और तुमने मुझे बाबा, और इस तरह हमारे दरमियान दुनिया का सबसे ज्यादा मुकद्दस रिश्ता कायम हो गया है, यानी बाप बेटी का रिश्ता। इसलिए अब झिझको मत, एक अच्छी बेटी की तरह अपना दुख दर्द बाप से कह दो, बांटने से दुख हल्का होता है बेटी।
3: ठीक है बाबा, तो सुनिए, मैं और यूसुफ गुलमर्ग के पास खूबसूरत पहाड़ी के दामन में आबाद एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। हम दोनों के घर का आंगन मुश्तरका था, हमारा बचपन सेब के बागों के साय में खुशनुमा झरनों के किनारे कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला। मैं और यूसुफ बचपन से जवानी में कदम रखने के बावजूद उसी तरह मिलते रहे। हम दोनों के बुजुर्गों, वहां के गांव के बड़ों ने भी हम दोनों के मिलने जुलने पर कभी कोई एतराज नहीं किया। वे जानते थे हमारे जज्बे सादिक हैं और दिल हर आलूदगी से साफ।
2: फिर बेटी?
3: फिर हम दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। यूसुफ की आवाज में मिठास भी थी और दर्द भी। हम दोनों कश्मीर की फूलों से लदी वादियों में हाथों में हाथ डाले बहिश्त के परिंदों की तरह परवाज किया करते थे। यूसुफ

0: हमारे दिन हमारी रातें इसी तरह हंसते खेलते गुजर रही थी। आइंदा साल में हमारी शादी भी तय हो चुकी थी। हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों अब भी मिला करते थे लेकिन दुनिया की नजरों से छुपकर, सेब के दरख्तों के घने साए में।
1: हाँ, फिर क्या हुआ बेटी?
0: एक दिन यूसुफ मुझे मिलने सेब के बाग में आया। उस रोज उसके चेहरे पर हमेशा खेलने वाली मन मोहिनी मुस्कान का कहीं पता ही नहीं था। यूसुफ संजीदगी और मुतानत का पैकर बना हुआ था। ये देखकर मैं कुछ परेशान सी हो गई। यूसुफ, यूसुफ खैर तो है? आज तुम इस कदर खामोश और अफसरदा क्यों हो?
1: गुलनार, गुलनार तुम मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हो, लेकिन इसके बावजूद वतन की आजादी के लिए मुझे कुछ दिन तक तुम्हारी जुदाई के दर्द को बर्दाश्त करना होगा।
0: यूसुफ, मेरी हयात, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ।
1: तो सुनो गुलनार, तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है कितनी मुद्दत से हम गुलामी की जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। कश्मीर जैसी जन्नत के बासी होने के बावजूद हमारी जिंदगी कैसी दुखभरी रही है। हम जो इस जन्नत के बासी हैं, अब आजादी हासिल करके ही रहेंगे, आजादी हासिल करके ही रहेंगे। और मुझे उम्मीद है गुलनार, तुम इस काम में मेरा साथ दोगी।
0: मैं और कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ यूसुफ कि मैं तुम्हारे इशारे पर आग के दरिया में भी कूद सकती हूँ।
1: नहीं गुलनार, इसकी जरूरत नहीं। जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए, बस तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। अपने मकसद के हुसूल के लिए मैं कुछ मुद्दत तक सरहद के उस पार अपने उन दोस्तों के साथ रहूंगा जो जद्दोजहद आजादी में हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं। मेरी कल ही उनसे मुलाकात हुई थी। मेरे साथ कुछ और नौजवान भी सरहद पार जा रहे हैं।
0: यूसुफ, कश्मीर मुझे भी उतना ही प्यारा है जितना तुम्हें। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम्हारी राह का पत्थर कभी नहीं बनूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी यूसुफ। मेरे कानों में उस नगमे की गूंज अभी तक बाकी है जिसमें तुम कश्मीर की खूबसूरती की तस्वीर खींच दिया करते थे और साथ में मेरी तारीफ भी कर दिया करते थे। तुम जाने से पहले ये नगमा एक बार गुनगुना दो।
1: गुलनार, ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो।

0: जन्नत का नजारा।
1: और इस तरह बाबा आजादी के कुछ और मुजाहिदों के साथ यूसुफ भी चला गया आजादी हासिल करने की तरबियत पाने के लिए।
2: मुजाहिदों के साथ नहीं, नादानों के साथ कहो, कुछ और नादानों के साथ। आजादी हासिल करने का हुनर सीखने नहीं बेटी, अपने हमवतनों की तबाही और बर्बादी का सामान लेने गया है।
1: बाबा शायद अब कश्मीरी नहीं, इसीलिए यूसुफ जैसे नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं।
2: बेटी मैं तुमसे और यूसुफ से ज्यादा कश्मीरी हूँ, इसलिए कि मैंने उस कश्मीर जन्नत नजीर में आंख खोली थी जो टुकड़ों में नहीं बटा था, जहां गरीबी तो थी लेकिन अपनों का साथ था, दिल नहीं बटे थे। मजहब के नाम पर हम कश्मीरी नहीं बटे थे, हमारी तहजीब और हमारे दुख दर्द एक थे। तुम कहती हो मैं कश्मीरी नहीं हूं, मैं तो उस कश्मीर का परवरदा हूं जिसमें मजहब के नाम पर किसी खलीज का वजूद तो क्या तसव्वुर भी मौजूद नहीं था। बेटी मैं सिर्फ यूसुफ पर नहीं बल्कि यूसुफ और उस जैसे दूसरे कश्मीरी नौजवानों की नादानी और मासूमियत पर अफसोस कर रहा हूं, उन कच्चे जहनों पर अफसोस कर रहा हूं जो दुश्मन के प्रोपेगेंडे का शिकार होकर खुद अपने ही कत्ल के लिए तरबियत हासिल कर रहे हैं। गुलनार मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि तुम्हारी यूसुफ की कहानी में मुझे कोई नयापन नहीं मिला।
1: बाबा आपका असली नाम क्या है?
2: मेरी भोली मासूम बेटी, तू मेरा असली नाम इसलिए जानना चाहती है कि मेरे मजहब का अंदाजा लगा सके, मेरी बात का तुझे यकीन नहीं इसलिए मेरे झूठ सच को परखने के लिए मेरा मजहब जानना चाहती है।
1: हाँ बाबा यही बात है।
2: बेटी मजहब इंसान की पहचान का जरिया कभी नहीं होता, मजहब बिल्कुल जाती चीज है। मैं तो दूसरों के लिए पहले इंसान हूं और फिर कश्मीरी हूं, उसके बाद हिंदू या मुसलमान हूं।
1: लेकिन बाबा यूसुफ नादा नहीं है, वो तो अपनी और हमारी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है।
2: बेटी यूसुफ और उसके नादान दोस्तों के लिए तो मैं वही दुआ कर सकता हूँ जो हजरत ईसा ने की थी, ऐ खुदा इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं।
1: वो कैसे बाबा?
2: जानना चाहती हो तो सुनो, लेकिन नहीं पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीरी किसी से कमतर हैं?
1: नहीं कभी नहीं।
2: तो जब हम किसी से कमतर नहीं, किसी के गुलाम भी नहीं, तो आजादी की जद्दोजहद क्या मानी रखती है? क्या हम अपने तरीके पर अपनी इबादत के लिए आजाद नहीं? क्या हमें अपने कश्मीरी तहजीब को बनाए रखने की आजादी नहीं? क्या हमें वो तमाम बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है जो मुल्क के दीगर बाशिंदों को हासिल हैं? क्या दूसरों के मुकाबले हमें तरक्की के मौके हासिल नहीं है?
1: नहीं ऐसी बात तो नहीं।
2: अगर नहीं तो फिर कश्मीर की आजादी का नारा क्या मानी रखता है?
1: लेकिन बाबा कश्मीर में इतनी बेरोजगारी क्यों है?
2: बेरोजगारी सिर्फ कश्मीर या हिंदुस्तान का ही मसला नहीं बल्कि एक आलमगीर मसला है।
1: लेकिन यूसुफ कहता है कि कश्मीर में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में हुई है।
2: शायद तुम सही कहती हो, कश्मीर के कुदरती हुस्न को महफूज रखने के लिए यहाँ बड़ी सनतों के कयाम से गुरेज किया गया और सियाहत को ही यहाँ की बुनियादी सनत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे पड़ोसी ने कभी हमें सुकून से बैठने और सियाहत को फरोग देने का मौका नहीं दिया और वो मासूम और नापुख्ता जहन नौजवानों को गुमराह करता आ रहा है और उनमें तुम्हारा यूसुफ भी शामिल है।
1: ऐसा लगता है शायद यही सच्चाई है, लेकिन बाबा यूसुफ कब लौटेगा?
2: बहुत जल्द बेटा बहुत जल्द, हमारे नौजवानों के जहनों पर छाई हुई धुंध छट जाएगी और वो हकीकत को समझ लेंगे तुम्हारी तरह, तब लौट आएंगे और तुम्हारे यूसुफ भी उनमें शामिल होगा। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब कश्मीर की वादियों में एक बार फिर बारूद की जगह फूलों की महक फजा में फैल जाएगी।
1: इंशाल्लाह। और बाबा जब मेरा यूसुफ लौट आएगा तब हम दोनों मिलकर इन वादियों में फिर वही नगमे गुनगुनाएंगे।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये नगमा भी आपने पूर्णिमा फिल्म से सुना। अब सुनिए मुकेश के साथ सुमन कल्याणपुर को, फिल्म है बूंद जो बन गई मोती।

0: मुकेश के साथ आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म थी फर्ज। ये थे कुछ दो गाने मुकेश के साथ दीगर गुलकारों के गाए हुए। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है नालंदा यूनिवर्सिटी।
1: नालंदा का शुमार हिंदुस्तान में आला तालीम के कदीम मरकज के तौर पर होता है। ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि नालंदा की अजीम शान दर्शगाह मौजूदा सूबे बिहार के राजगीर इलाके में वाकई थी। ये कुमार गुप्त अव्वल की हुकूमत का दौर था जिसने इस इदारे के फरोग में तआवुन किया। ज़माने कदीम से हिंदुस्तान में तालीम हासिल करना समाजी और मजहबी जिंदगी का हिस्सा था। गुरु शिष्य और गुरुकुल की रवायत थी जहां तालिब इल्म अपनी उम्र का एक हिस्सा उस्ताद से इल्म हासिल करने में लगाता था। 6वीं सदी ईस्वी में कायम होने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी आला तालीम का एक ऐसा वसी मरकज था जहां मुख्तलिफ किस्म के उलूम फनून की तालीम एक साथ दी जाती।

0: नालंदा में बुद्ध मजहब के अलावा संस्कृत अदब, वेदों का इल्म, मंतिक, उसूल नव, तिब, जराही, इल्मुल हिसाब, फलकियात, सियासत और सिपहदरी की तालीम दी जाती थी। इसीलिए एशिया के दूर दराज ममालिक से तालिब इल्म यहां आते थे, जिनमें चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, तिब्बत, ईरान, तुर्की और इंडोनेशिया के तालिब इल्म शामिल थे। नालंदा के बारे में तफसील हमें चीनी सयाह ह्यूनसांग की तहरीरों से मिलती है। ह्यूनसांग 630 ईस्वी में हिंदुस्तान आया और 5 साल तालिब इल्म की हैसियत से नालंदा में गुजारे। इस दौरान ह्यूनसांग ने संस्कृत जबान और बुद्ध फलसफे में महारत हासिल की। ह्यूनसांग लिखता है कि नालंदा का दारुल उलूम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है, जहां 10,000 तालिब इल्म पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाने के लिए 1500 असातज़ा मुकर्रर हैं। नालंदा की शानदार इमारतों का जिक्र करते हुए वो कहता है, नालंदा में 8 बड़े अहाते हैं, 10 मंदिर, मुराक़बे के लिए खुसूसी हॉल, 10 देने के लिए कमरे, झील और बागात हैं। तालिब इल्मों के क़याम व ताम, पोशाक और किताबों का इंतजाम इदारे की जानिब से होता था। नालंदा के इल्मी माहौल ने ह्यूनसांग को बहुत मुतासिर किया। वहां के इल्मी मशागिल का जिक्र करते हुए वो लिखता है कि सवालात दरियाफ्त करने और उनका जवाब सुनने में तालिब इल्म मशगूल रहते हैं। सुबह से शाम तक मुबाहसे होते रहते हैं, छोटे बड़े सब इस काम में लगे रहते हैं और कभी आपस में लड़ते नहीं। नालंदा के इल्मी माहौल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सबसे अहम इमारत एक 9 मंजिला लाइब्रेरी की थी, जिसमें हजारों किताबों के अलावा अहम किताबों के कलमी नुस्खे तैयार किए जाते थे और तालिब इल्मों को फराहम किए जाते थे। ह्यूनसांग ने उस वक्त के बुद्ध मजहब और फलसफे के सबसे बड़े आलिम शैलभद्र से मुलाकात का जिक्र किया है। शैलभद्र को महाविद्वान कहा है। नालंदा दरअसल सिर्फ आला तालीम के लिए मखसूस था। इसमें दाखिले के लिए एक सख्त इम्तिहान लिया जाता था। यहां के असातज़ा और तालिब इल्म बड़ी सलाहियतों के हामिल थे। उनकी शोहरत दूर दराज इलाकों तक फैली हुई थी। वो जहां जाते वहां उनकी इज्जत होती। 6वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी तक नालंदा तालीम के बुलंद तरीन मेयार का एक नादिर नमूना था।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था नालंदा यूनिवर्सिटी। तहरीर सज्जाद रिजवी की थी और रावी थे SM नुमान। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मेरी सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत कुछ नगमे नई फिल्मों से।

अंगरक्षक फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ। अगली पेशकश आपकी नजर कर रहे हैं, समाप्त कीजिए, उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म है डुप्लीकेट।

वीर जी के 71 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्कोपिया में तजारती फोरम के दौरान शुमाली मकदूनिया को भारत के साथ सरमाया काराना ताल्लुकात में तौसी देने की दावत दी। आज ही चंडीगढ़ में ब्रिक्स के वज़राए सेहत की 3 रोजा मीटिंग हो रही है। भारत ने जिनेवा में डब्ल्यूटीओ तिजारती पॉलिसी में उसूलों पर मबनी कसीर मुल्की तिजारती निजाम के तहत अपने अहद को दोहराया। फ्रांस में 15 साल की उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई नहीं हो सकेगी। अमरीका ने ईरान पर लगातार 11वीं रात हमले किए हैं और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज जो हमारी फिल्म है वो है एक फूल दो माली। ये फिल्म प्रेम, त्याग, मातृत्व और पितृत्व की भावनाओं पर आधारित है। कहानी एक ऐसे बच्चे की इर्द गिर्द घूमती है जिसकी परवरिश करने वाले और उसके जैविक पिता दोनों उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसी कारण फिल्म का शीर्षक एक फूल दो माली रखा गया। यानी एक फूल यानी वो बच्चे और उसकी देखभाल करने वाले दो माली। तो श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत। और जो ये अगला गीत है वो एक ऐसा गीत है जो एक पिता के अपने बच्चे के प्रति स्नेह, गर्व और ममता को बहुत ही सरल और भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त करता है। अगर उनकी पंक्ति, जो कि उनकी पंक्ति है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, जी हाँ, हम इसी गीत के बारे में बात कर रहे हैं। ये पंक्ति इस बात का प्रतीक है कि बच्चे की तुलना किसी एक सुंदर या मूल्यवान वस्तु से करना भी कम पड़ जाता है। मन्ना डे की भावपूर्ण गायकी जिसने गीत को अमर बना दिया, मधुर और सहज धुन जो आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। तो आइए सुनते हैं यह गीत मन्ना डे की आवाज में।

श्रोताओं, अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो सोमना एक गरीब औरत है जो अपनी विधवा माँ लीला के साथ भारत और नेपाल की पहाड़ी इलाके में रहती है। वहीं अमीर विदुर कैलाशनाथ कौशल के सेब के खेत में काम करके गुजारा करती है। कौशल एक माउंटेनियरिंग स्कूल भी चलाते हैं जहां अमर कुमार उनके स्टूडेंट में से एक है। अमर के क्लाइंबिंग एक्सपेक्टेशन से लौटने के कुछ समय बाद ही सोमना और अमर मिलते हैं और वे प्रेम में पड़ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हें खबर मिलती है कि अमर और दूसरे क्लाइंबर मारे गए हैं। सोमना के साथ शमशेर सिंह छेड़छाड़ करते हैं। जब कैलाश को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है तो वह उसे बचाने आता है और उसे शादी करने का ऑफर देता है। उनकी शादी हो जाती है और सोमना एक लड़के बॉबी को जन्म देती है। शमशेर को गिरफ्तार कर 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। कैलाश जो एक एक्सीडेंट के बाद बच्चे ना होने के कारण से उन्होंने वो पिता बनकर ही खुश हो जाते हैं, बॉबी के पिता। जी हाँ, वे बॉबी से बहुत प्यार करते हैं और उसे अलग नहीं हो सकते। 5 साल बाद बॉबी का 6वां जन्मदिन मना रहे सोमना और कैलाश को तब झटका लगता है जब पार्टी में अमर आ जाता है।

बॉबी अपने पिता कैलाश से प्यार करता है, लेकिन अपने असली पिता अमर के करीब आने से खुद को रोक नहीं पाता, जिससे सोमना और कैलाश बहुत परेशान होते हैं। सोमना बॉबी को अमर से मिलने से मना करती है, लेकिन कैलाश उसका साथ देता है और सोमना से कहता है कि वह बॉबी को खुश देखना चाहता है। सोमना अमर से पूछती है और मानती है कि वह नहीं चाहती कि वह उससे मिलने आए। अमर इससे परेशान हो जाता है और बॉबी से मिलना बंद करने की कसम खाता है। कैलाश के साथ घूमते समय बॉबी अमर को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से वह डायनामाइट जोन में फंस जाता है और इस चक्कर में खुद को घायल कर देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत गंभीर है क्योंकि उसका बहुत खून बह गया। कैलाश खून देने की पेशकश करता है, लेकिन उसका खून का टाइप मैच नहीं करता। फिर अमर अपना खून देता है, जिससे बॉबी की जान बच जाती है। कैलाश खुश है कि बॉबी जिंदा है, लेकिन अमर के उसे ले जाने के डर से वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। अमर को सारी बातें समझ में आती है और उसे पता चलता है कि बॉबी सच में उसका बेटा है। जैसा कैलाश को डर था, वह बॉबी के बेहोश होने पर उसे ले जाना आता है। सोमना उसे रोकती है और समझाती है कि बॉबी ना तो उसका बेटा है और ना ही उसका, बल्कि कैलाश का बेटा है। वह उसे समझाती है उसने सच जानने के बावजूद उससे शादी करके उसकी इज्जत बचाई और वह बॉबी को किसी और से ज्यादा प्यार करता था, उसे अपने बेटे की तरह पाला। कैलाश चुपके से पूरी बात सुन लेता है। अमर इससे दुखी होकर अपने किए पर पछताता है और कैलाश को बॉबी रखने देने का फैसला करता है और उसे हमेशा के लिए छोड़ जाता है।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन फटे फटे पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा।
2: हाँ जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: श्रोताओं हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं तो चलिए पहले उन संदेशों को पढ़ ले। हमारे पास जो पहला संदेश आया वो आया है सुदर्शन शाह का और मध्य प्रदेश नीपा नगर मध्य प्रदेश से और इनके साथ हैं प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और पल्लवी शाह। अगला जो संदेश है वो है नितेश दिवांगन का और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद दिवांगन, पराग टेलर, पूना राम दिवांगन, कृष्ण दिवांगन और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश है वो है स्वर्ण सिंह का और इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। अगला जो संदेश है वो है सोमदत्त नाभा जिला पटियाला पंजाब सिंह के साथ है कैरफ ज्योति रानी गुरमंद कौर मनु। अगला संदेश है सतीश अनेजा का और इनके साथ है बिमला अनेजा। अगला संदेश है कमलकांत गुप्ता का और इनके साथ है श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। अजीत भावसर का संदेश आया है, इनके साथ है विरमगान गुजरात से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं प्रमिला भावसा, अजीत भावेश भावसार और वो हमारे संदेश को सुन रहे हैं। अगला संदेश जो है वो सुभाष जी का आया है, इनके साथ है बिमला गोदारा, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव हीरावाली फजल का पंजाब से और इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा और ये भी हमें लिखकर भेज रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र छीपा का अगला संदेश आया है, इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि आप चर्चा कर रहे हैं फिल्म जगत की बेहतरीन फिल्म एक फूल दो माली की, इन फिल्मों के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं और रोचक किस्से नगमे भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरामणि वर्मा का अगला संदेश है और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश जो है वो है डोलराना और इनके ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेहरू विहार दिल्ली से। सुरेश जाधव हमें संदेश भेज रहे हैं और इनके साथ है अरी जाधव, सोनल प्रसाद जाधव, नेहरू चौक से वो हमें लिखकर भेज रहे हैं, भवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम दिवांगन और चंपा दिवांगन हमें लिखकर भेज रहे हैं। आर कुमार का संदेश है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगला संदेश जो है वो है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, आदिप और परिवार वाले कोई भी गीत में शामिल करें। और जो अगला संदेश है वो नरेंद्र का आया है और ये हमें लिखकर भेजा है राजस्थान से, प्रकाश वर्मा जी ने हमें अगला संदेश भेजा है छत्तीसगढ़ पलारी से, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अगला

0: श्रोताओ, अगला संदेश है धर्मेंद्र छीपा का, इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार, और अगला संदेश है वो रामलाल चंद्रवंशी जी का है, और इनके साथ है श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं आकली दीवान मध्य प्रदेश से। अगला जो है वो संदेश है संदीप मक्कर का, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुराया, जालंधर से। फारूक अली खान ने मैसेज भेजे, इनके साथ है पूरा पासी परिवार, स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, सिंह गुरलाल सिंह, अविराज सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं, सुधाकर यादव, और इनके साथ है डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित बायाल, और साथ ही है सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी, कुमारी कल्पना। अग्रज संदेश है संजय ढींगिया जी का है, और इनके साथ ही नमन ढींगिया, पाठ ढींगिया जो हमें लिखकर भेज रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, सुदर्शन मुखी है, इनके साथ है नीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से। अगला संदेश है राजकुमार डूडी का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव परांसी जिला हिसार से। अगला संदेश है रेजी डिकॉस्टा का, और इनके साथ है जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। अगला संदेश है पी एस नाहकर का, और इनके साथ है निर्मला विशाल, और यह हमें लेकर भेज रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से। अगला संदेश है शेख मोहम्मद का, और इनके साथ है खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा, यह हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। अगला संदेश है गुरमीत सिंह नीता, साउथ एक्सटेंशन, शालीमार बाग, अशोक कुमार सहकर, और जो अगला संदेश है वो है लालगिरी जी का, और ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश है मोहम्मद कमर जी का। श्रोताओं, हो सकता हो कि इस कार्यक्रम में हम आपके नाम नहीं ले पाए, लेकिन हम सभी के संदेशों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, और आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। श्रोताओ, कल फिर हाजिर होंगे ये कार्यक्रम लेकर ठीक 1:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी आपकी दोस्त और होस्ट को दीक्षा को विदा दीजिए। नमस्कार। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। दिन के 1:40 होने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: नीट पेपर इफ्शा होने के मामले पर पार्लियामेंट में तातपुल जारी है। सरकार के बहस के लिए तैयार होने के बावजूद दोनों ऐवानों की कार्यवाही अपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करनी पड़ी। अब दोस्त शिकन INS मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है, जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। कोड मुल्कों के वज़राए खारजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आजादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। असम में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के अल्बी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर इफ्शा होने समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब पहले इल्तवा के बाद दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरों ने पेपर इफ्शा होने के मामले पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन मेंबरों से ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने के लिए तावुन करने को कहा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर के मामले पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तलबा के एहतजाज करने का मामला उठाया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर बहस के लिए तैयार है और हरेक को मिलजुल कर बहस का वक्त तय करने के लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी ने आज कहा कि मरकज तलबा के साथ है और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ उसकी आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट मासूरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कायादत वाली बीजेपी सरकार ने विकसित भारत को मुस्तहकम करने के लिए नौजवानों की कायादत पर मबनी तरक्की का मंत्र रखा है। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि नीट का दोबारा इम्तिहान महज 37 दिन में कराया गया और 25 दिन के अंदर नतीजों का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की और पेपर लीक के 13 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और अब ये सब जेल के अंदर हैं। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि मुलजिमों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाएगी। एहतजाज के बारे में बात करते हुए बीजेपी की एमपी ने कहा कि हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, पुरमन एहतजाज की इजाजत दी और बातचीत के दरवाजे खुले रखे। बीजेपी ने कल वजीर आजम की रिहाइश कहा के दरवाजे के बाहर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के किसी इजाजत के बगैर धरना देने की मजम्मत की है और इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। नई दिल्ली में नामानिकारों से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की जमहूरियत की तारीख में ये एक शर्मनाक दिन था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की रिहाइश गाह की अजमत और वकार को जानते हुए जनाब गांधी ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहिरा किया। भारतीय बहरिया ने आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर INS मालवन को अपने कामकाज में शामिल किया। ये माहे तर्ज का दूसरा आबदोज शिकन जंगी जहाज है। मुल्क में ही जंगी जहाज तैयार करने की भारत की सलाहियतों के सिलसिले में ये एक अहम कामयाबी है। फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस तकरीब में मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में बहरिया की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि INS मालवन मुल्क के साहिली खित्ते की बहरी सलामती में एक अहम किरदार अदा करेगा।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: वजीर खारिजा डॉ एस जयशंकर ने मनीला में कोर्ट वजराए खारिजा

0: मीटिंग में शिरकत की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक मुश्तरका बयान में भारत बहरुल काहिल को खुला और आजादाना रखने के अपने अज़्म और इसे मुस्तहकम करने का तहैया किया है। इन मुल्कों ने आसियान तंजीम के इत्तेहाद और उसकी मरकजी हैसियत की भी पुरजोर हिमायत की है। मीटिंग के दौरान इन मुल्कों ने आसियान के पस मंजर की हिमायत में इलाकाई चैलेंजों और मौकों पर भी तवज्जो मरकूज की। मीटिंग में इक्तसादी खुशहाली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी के हालात से निमटने के तौर तरीकों पर खासतौर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने बहरी सिक्योरिटी पर भी गौर खौज किया। इस मौके पर डॉ. जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू की। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान ऐसे शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई जो भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी शराकतदारी के लिए तरजीही शोबे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ. एस. जयशंकर ने फिलिपाइन के शहर मनीला में मशरकी एशिया चोटी मीटिंग और आसियान इलाकाई फोरम के इजलास के दौरान चीन के वजीर खारजा वांग यी से बातचीत की है। अपने इफ्तिताहिया कलिमात में डॉ. जयशंकर ने भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बतदरीज मामूल पर लाने की जरूरत को उजागर किया और साथ ही ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बाहमी तआवुन और इश्तराक के लिए सरहदों पर अमनो सुकून का होना एक बुनियादी शर्त है। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों को यकीन है कि बाहमी एतमाद और बाहमी मफादात की बुनियाद पर ही तआवुन पर मबनी और पायदार ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। ब्रिक्स 2026 की सदारत के एक हिस्से के तौर पर भारत ने कल चंडीगढ़ में रिवायती, कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों की मीटिंग की मेजबानी की। ये मीटिंग सेहत से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों के उस चार रोजा प्रोग्राम का एक हिस्सा थी जिसका एहतमाम सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत और आयुष की वजारत ने मुश्तरका तौर पर किया। मीटिंग से सबूतों पर मबनी अद्वियात के रिवायती निजाम को फरोग देने, इदारा जाती साझेदारी को मुस्तहकम करने और अफसाने सेहत के पायदार और मुस्तहकम निजाम में तआवुन देने के सिलसिले में ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान इश्तराक में इजाफा करने में मदद मिली। आसाम के 16 जिलों में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। खबरों में कहा गया है कि पूरी रियासत में 872 गांव सैलाब से मुतासिर हुए हैं जिसका असर 5,64,000 से ज्यादा अफराद पर पड़ा है। 24 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा और वहां पानी भर गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक अगले तीन दिन के दौरान जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर जेर तामीर सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव और तलाश की कार्रवाइयां आज तीसरे दिन भी जारी हैं। सरकारी जराये ने बताया कि अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं और सुरंग के अंदर 13 अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वो इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 21-17, 5-21, 21-17 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। नीट पेपर इफ्शा होने के मामले पर पार्लियामेंट में तातुल जारी है। सरकार के बहस के लिए तैयार होने के बावजूद दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करनी पड़ी। अब दोस्त शिकन INS मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। कोड मुल्कों के वज़राए खारजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आजादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। आसाम में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Stalemate continues in Parliament over NEET paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific, hold meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation remains grim in Assam. Red alert for heavy rainfall in Gujarat, central Maharashtra and parts of Goa for the next 2 days. An Indian shuttler Ayush Shetty enters pre-quarterfinals, defeating Indonesia's Alvi Farhan in China Open badminton tournament. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country.
2: Sarkar, NEET paper leak.
3: The government is fully prepared to discuss the NEET paper leak issue. I request that the Honorable Speaker discuss with the floor leaders of all parties and decide when the discussion should take place, how long it should continue and under which rule it should be conducted. The government is completely ready to discuss the NEET paper leak issue.
2: Paper leak pe charcha karne ka tayar
1: hai. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the House rejoined after the first adjournment at 12 noon, the opposition again started sloganeering over the NEET issue. Deputy Chairman Harivansh tried to take up the questioner. He emphasized that the questioner is an important part of parliamentary proceedings and belongs to the members. Despite his repeated appeal, the opposition members did not pay heed to Deputy Chairman's advice, which led to adjournment of the House till 2 p.m. Earlier, when the proceedings began at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan expressed grief over the loss of lives during a tragic accident at the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project in Sikkim.
4: With the big sorrow, we have to inform the House of a tragic accident at the under-construction NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project tunnel in Sikkim yesterday, where many workers have been reportedly lost their lives in course of their contribution towards nation building and some were trapped. Rescue operations have been undertaken. The House expresses its profound grief over the tragic loss of precious lives. We convey our heartfelt condolences.
1: The government is informed that 162 Vande Bharat train services are currently operating across the country. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Union Railways Minister Ashwani Vaishnav said the railways has introduced indigenously designed and manufactured Vande Bharat trains to enhance the travel experience of passengers. BJP has condemned Leader of Opposition Rahul Gandhi's sit-in outside the gate of the Prime Minister's residence yesterday without permission and termed it as irresponsible. Talking to media in New Delhi, BJP MP Ravi Shankar Prasad described it as a shameful day in the history of India's democracy. He said that despite knowing the dignity associated with the Prime Minister's residence, Mr. Gandhi displayed irresponsible conduct. BJP MP stressed the importance of security protocols, stating that the Prime Minister's security is of paramount importance.
5: It was a very shameful day in the history of Indian democracy. Opposition leader Rahul Gandhi forcibly staged a protest and a sit-in at the gate of Prime Minister's residence without any permission. I strongly condemn the irresponsible behavior he displayed.
1: Delhi Metro Rail Corporation DMRC has informed that 16 metro stations have been closed till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The Indian Navy inducted the second anti

0: लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश

0: यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को ये उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदम्बा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना

0: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी अधिक दिल के करीब आ जाती है। ऐसी ही एक आवाज है मुकेश साहब की। जब मुकेश गाते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे कोई अपने दिल की बात कह रहा हो। उनकी गायकी में कोई बनावट नहीं थी बल्कि सच्चाई थी, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो आज केंद्रित है मुकेश साहब पर, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। बाकी के नगमे इस अंतराल के बाद।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: दोस्तों 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में जन्मे मुकेश चंद माथुर बचपन से ही संगीत के शौकीन थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल ने एक पारिवारिक समारोह में उन्हें गाते सुना। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर वे मुकेश को मुंबई ले आए और यहीं से शुरू हुआ भारतीय फिल्म संगीत का एक सुनहरा अध्याय।

दोस्तों, मुकेश ने लगभग 1300 से अधिक फिल्मी गीत गाए। उन्होंने केवल राज कपूर के लिए ही नहीं बल्कि मनोज कुमार, सुनील दत्त, फिरोज खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और कई अन्य कलाकारों के लिए भी अपनी आवाज दी। तो आइए अब सुनते हैं श्री 420 का ये गीत।

दोस्तों, इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। इन्हें 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं ही देखा है के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। 1960 में फिल्म अनाड़ी के गीत सब कुछ सीखा हमने के लिए, 1971 में फिल्म पहचान के गीत सबसे बड़ा नादान वही है के लिए और 1973 में फिल्म बेईमान के गाने जय बोलो बेईमान के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। 1970 की फिल्म कभी कभी के लिए इन्हें कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के लिए इन्हें मरणोपरांत फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था।

दोस्तों 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में एक स्टेज शो के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा और संगीत की ये अमर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके निधन की खबर सुनकर राज कपूर की आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर कहा था, मैंने अपनी आवाज खो दी। लेकिन कलाकार कभी विदा नहीं होते, वे अपनी कला में हमेशा जीवित रहते हैं।

दोस्तों बहुत से श्रोता मेल के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनके भी नाम पढ़ लेते हैं। बठिंडा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, विरमगाम गुजरात से प्रमिला भवसार, भवेश कुमार भवसार। अगला मैसेज आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु रिधान खुराना का। अगला मैसेज आया है चिरमीरा कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, इन्होंने हमें मैसेज किया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर मनु, इन्होंने भी हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज आया है अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा और इन्होंने हमें मैसेज किया है, ये दिख नहीं रहा है कहाँ से मैसेज इन्होंने किया है हमें, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन ने भी हमें मैसेज किया है पिलारी छत्तीसगढ़ से। अगला मैसेज आया है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत का, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखन लाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन ने हमें मैसेज किया है पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या खुराना, आरव खुराना, मेघा, आशीष, अनुज, छोटू और एसके।

इस गीत के साथ ही एक ही कलाकार कार्यक्रम का समय संपन्न होता है। मीना चौहान को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। लेकिन दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ठीक 3 बजे शुरू हो रहा है हमारा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, जिसमें हम आपको सुनाते हैं गोल्डन एरास के गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान और रहूंगी इस कार्यक्रम में आपके साथ। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म दो बदन के इस

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। अब्दुल शिकन आईएनएस मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है, जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। क्वाड मुल्कों के वजराए खारजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आजादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज्म को दोहराया है। फ्रांस में 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक रिसाई नहीं हो सकेगी। अमरीका ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात हमले किए हैं और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के अली फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया ने आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर आईएनएस मालवन को अपने कामकाज में शामिल किया। यह माहे तर्ज का दूसरा आबदोज शिकन जंगी जहाज है। मुल्क ने ही जंगी जहाज तैयार

0: करें। कटरा में महसूर यात्रियों को श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ से मुफ्त लंगर, तिब्बी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उनके ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से पास रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून सासरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। इस बिल के तहत तलबा पर यह बंदिश भी आयद की गई है कि वो स्कूलों में मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें। इस तरह फ्रांस यूरोपीय यूनियन में ऐसा पहला मुल्क है जिसने सोशल मीडिया पर इस तरह की बंदिश आयद की है, क्योंकि दुनिया भर में यह तशवीश पाई जा रही है कि बच्चों पर डिजिटल मवाद के नुकसानदेह असरात मुरतब हो रहे हैं। इस बंदिश में ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, तालीमी और साइंसी लुगात शामिल नहीं हैं। अमरीकी मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ मुसलसल 11वीं रात फजाई हमले किए हैं ताकि अबनए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों को धमकाने की ईरान की सलाहियत को कम किया जा सके। अमरीकी फौज ने फौजी कार्रवाई के मरकजों, समंदरी तनसीबात, हवाई जहाजों के रुकने की जगहों, ड्रोन को जखीरा करने की जखीरों और फौजी लॉजिस्टिक्स से मुतालिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। इससे पहले ईरान ने 29 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों पर हमले किए थे जो पिछले 3 महीनों में अपने हुरमुज से गुजरे हैं। मगरबी नेपाल में आज सुबह सवेरे जलजले का झटका महसूस किया गया जिसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 4.2 बताई जाती है। इस जलजले का मरकज पाझंग जिले में कोट देवाल के पास था। नवाही अजला में भी जलजला महसूस किया गया। फौरी तौर पर किसी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। गुज़श्ता हफ्ते भी मगरबी नेपाल में लुम्बिनी सूबे में मशरकी जिले में जलजला आया था। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा। मर्दों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन जापान के खिलाड़ी युशी तानाका का सामना करेंगे और ये खेल चीन के शहर चांगजू में हो रहे हैं। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वो इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को 21-17, 5-21, 21-17 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। इस दौरान मर्दों के डबल्स में 32वें दौर में भारत की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन का मुकाबला चीन की जोड़ी से होगा। भारत की अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान स्क्वॉश की आलमी जूनियर इन्फिरादी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आला दर्जे के खिलाड़ी अनाहत ने सीधे सेटों में हांगकांग की खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आर्यवीर दीवान ने जनूबी अफ्रीका के जोसेफ फीस्ट को आसानी से हरा दिया और अगले दौर में अब उनका मुकाबला अमरीका के खिलाड़ी यासीन शालाबी से होगा। इसी दौरान भारत के गुरवीर सिंह, युषा नफीस, सांगवी कालंकी, रुद्र सिंह और अनिका दुबे आला दर्जे के अपने हरीफों से हार गए। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। अब्दुल शिकन आईएनएस मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। कोड मुल्कों के वज़राए खारिजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आजादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। फ्रांस में 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई नहीं हो सकेगी। अमरीका ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात हमले किए हैं और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। आज की मेरी पसंद प्रोग्राम के सामईन जो नगमे हमने मुंतखब किए हैं वो मुकेश की आवाज में, चूंकि आज उनका यौम पैदाइश है। मुकेश आज ही के दिन यानी 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी यहीं पर हासिल की। एक मौसीकी के साथ उनकी बहन को तालीम देने के लिए घर पर आया करते थे। उन्हें मुकेश के अंदर एक गुलकार और एक फनकार नजर आया। उन्होंने उन पर खसूसी तवज्जो दी और फिर उनके एक दूर के रिश्तेदार मोतीलाल ये जो बम्बई में फिल्मों से वापसता थे उनकी नजर मुकेश पर पड़ी, उनको बम्बई ले गए। वहां जाकर जो सबसे पहला काम उन्होंने किया उनकी मौसीकी की तालीम पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी से उनको मिलाई। इसी दौरान एक फिल्म 1941 में उन्हें

इंटर फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मुस्कुराती थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सनी ये सुनिए दिल ने फिर याद किया, नगमगीत सीरावल, मौसीकार सोनिक उर्मी।

0: गायब हो जाता है।
1: जी मैडम, आपने मुझे बुलाया?
0: मगर तुम थे कहाँ? तुम्हें घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती?
1: जी मैं तो वहाँ बैठा था बाहर।
0: अच्छा, और जरा सफाई पेश मत करो। ये लो चाबी, उस फाइल को निकाल कर जल्दी से लाओ मेरे पास।
1: लीजिए मैडम।
0: ठीक है, रख दो यहीं पर। और सुनो।
1: जी।
0: कैंटीन जाकर एक सेट चाय के लिए कह आओ।
1: बहुत अच्छे।
0: हेलो, रमा बोल रही हूँ, कहिए। अच्छा, वर्मा साहब हैं, कहिए कैसे याद किया? जी हाँ, सब तैयार है, अभी धनीराम के हाथ भिजवा देती हूँ। सुनो धनीराम।
1: जी।
0: जल्दी से हाजिरी के तमाम रजिस्टर ले आओ मेरे पास, और सुनो, आते वक्त शर्मा साहब को भी साथ लेते आना।
1: बहुत अच्छा मैडम। शर्मा साहब, आपको मैडम याद कर रही
2: है। अभी चलता हूँ भाई।
3: अरे मैं शर्मा, क्या सोच रहे हो यार, जल्दी चले जाओ वरना बॉस का नजला पूरे दफ्तर पर आ गिरेगा।
2: देखो कपूर, तुझे कितनी बार समझाया है कि अपने काम से काम रखा कर।
3: अरे भैया, खफा क्यों होते हो? इस दफ्तर का मक्खी मच्छर तक जानता है कि जिस दिन मैडम गुस्से में होती हैं, उस दिन।
2: इस मशवरे के लिए शुक्रिया, मगर एक बात सुन लो, मुझे दूसरे लोगों की तरह किसी की चापलूसी करना कतई पसंद नहीं है। मैं तो काम करने में यकीन रखता हूँ, खाली बैठे बैठे दफ्तर की कुर्सियां नहीं तोड़ा करता।
3: देख लो, मगर हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, इसीलिए ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मोल लेना खतरे से खाली नहीं हुआ करता। बेचारा।
2: मैडम, आगे मुझे।
0: ओफो शर्मा, हजार बार समझा दिया कि मुझे मैडम नहीं सर कहा करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं खुद को सर कहलवाना ज्यादा पसंद करती हूँ।
2: सॉरी मैडम, सॉरी सर।
0: मिस्टर शर्मा,
2: yes.
0: ये कोटेशंस तुमने ही तैयार की है ना?
2: यस सर।
0: बहुत खूब, तुम्हारे काम को देखकर कोई भी दाग दिए बगैर नहीं रह सकता।
2: मैं समझा नहीं सर।
0: जरा एक नजर इन कोटेशंस पे डालो, खुद बखुद समझ जाओगे।
2: जी।
0: ये कैसा तरीका है तुम्हारे काम करने का? मैं समझ नहीं पा रही कि तुम अपना मुस्तकबिल इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हो।
2: सॉरी सर, मैं खुद समझ नहीं सका कि ऐसा मुझसे कैसे हुआ। मैं सिर्फ दोबारा तैयार करना।
0: वो तो तुम करोगे ही, तुम्हें करना भी पड़ेगा, लेकिन वक्त की अपनी एक अहमियत भी हुआ करती है। जो कोटेशंस तुम्हें दो रोज पहले तैयार कर लेनी चाहिए थी, वो अभी तक नामुकम्मल है। उधर डायरेक्टर साहब के फोन टू फोन आ रहे हैं।
2: सॉरी सर, मैं अभी ठीक किए लेता हूँ।
0: अच्छा, कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं इस दफ्तर में। धनीराम।
1: जी मैडम।
0: तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑर्डर सेक्शन से कुछ कागजात लेने भेजा था।
1: मैडम, मुझे तो आपने
0: खैर,
1: अभी जाता हूँ मैडम।
0: अरे तुम फिर लौट आए?
1: मैडम, ऑडिटर साहब खुद ही इधर आ रहे हैं।
0: ठीक है।
2: अरे रमा, यहाँ
0: ये मैं क्या देख रही हूँ? जगदीश और इस दफ्तर में मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है?
1: मैडम, ऑडिटर साहब आ गए हैं। आपने शायद इन्हें पहचाना नहीं। आप जब छुट्टी पर थी तभी साहब ने ये दफ्तर ज्वाइन किया था।
0: धनीराम, मैंने तुमसे तारुफ कराने को नहीं कहा, अपने काम से काम रखा करो। और हाँ, साहब से फाइलें लेकर मेरी गाड़ी में रख दो, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ।
1: मैडम, ना जाने मैडम को भी क्या हो जाता है, पल भर में तोला, पल भर में माशा, मैं तो समझ ही नहीं पाया आज तक।
4: काश तुम जान पाती रमा कि अपने आप से टूट जाने की तकलीफ कितनी नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करती है। बगैर सोचे समझे उठाए गए कदम का नतीजा एक ना एक दिन यही होता है।

0: रमा रमा बेटी, आज दफ्तर नहीं जाना है क्या? अरे नौ तो कब के बच चुके, धनी राम जीप लेकर आता ही होगा।
1: काकी रहने भी दो, नौ तो हर रोज बचते हैं और बचते रहे।
0: वो तो मैं भी जानू हूँ, कल तो कह रही थी कि जल्दी उठा देना, किसी मीटिंग में जाना है, मगर आज उठने का नाम ही नहीं ले रही।
1: कल और आज में बहुत फर्क होता है काकी।
0: कह तो तू ठीक रही है बेटी।
1: इसीलिए तो कहती हूँ काकी, कल गंगा की तरह पवित्र और मुकद्दस था, और आज आज मेरे लिए वही गंगा गर्म पानी के चश्मे की मानिंद है। दिल और दिमाग में जंग शुरू हो चुकी है, दिल दिमाग से और दिमाग दिल से दस्तो गरीबा है।
0: तू तो मजाने क्या क्या बोलती रहती है हर वक्त, अरे तेरी बातें मेरे समझ में नहीं आती।
1: तुम्हारी समझ में आएंगी भी नहीं काकी। कल मेरे पांव के नीचे ठोस जमीन थी, और आज उसकी जगह फिसलन है। मैं जितना जमीन पर अपना पांव जमाने की कोशिश करती हूँ, उतनी तेजी से फिसल कर गिर पड़ती हूँ।
0: कैसी बातें कर रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
1: मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या होता जा रहा है। मेरे अंदर एक अजीब हलचल है, एक तूफान है जिसमें खुद भी नहीं समझ पा रही।
0: कल जब से तू दफ्तर से आई है इसी तरह की बेतुकी बातें कर रही है, ना तो तूने ढंग से खाया है ना पिया है, आखिर बात क्या है? कुछ मालूम भी तो हो कि हुआ क्या है?
1: ये क्यों नहीं पूछती काकी कि क्या नहीं हुआ?
0: हेलो, वो धनी राम भी आ गया जीप लेकर, और तू तो अभी
1: उससे कह दो काकी मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
2: और सुनो,
1: ये तमाम फाइलें भी उसे दे दो।
0: ठीक है, मुझे क्या कर देती हूँ।
3: धनी राम, ये फाइलें संभाल कर दफ्तर ले जाना, मैडम आज दफ्तर नहीं जाएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
4: जी जी, बहुत अच्छा।
0: अब बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो?
1: हाँ सब कुछ बताऊंगी काकी, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो फिर किसे बताऊंगी? मेरी सुनने वाला और है कौन? काकी तुम्हें सुनकर भी ताज्जुब होगा कि जिस दर्द से मैं तड़प रही हूँ वो दर्द खुद मेरा पैदा किया हुआ है।
0: क्या कह रही है तू?
1: मैं ठीक कह रही हूँ, समझ में नहीं आता कि अब मेरी जिंदगी का मकसद क्या रह गया है। कभी अपनी हालत पर रोने को जी चाहता है और कभी जी भर कर हंसने को, मगर मैं जानती हूँ कि मैं रो भी नहीं सकूंगी, और हंसना तो मुमकिन ही नहीं मेरे लिए। मुझे तो शायद अब हमेशा के लिए इसी दलदल में फंसे रहना होगा।
0: रमा,
1: मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है, किस जानिब ले जा रहा है ये अंधेरा मुझे। मैंने तो ऐसे खौफनाक अंधेरों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, फिर ये मेरी तकदीर क्यों बन गए? काकी, कभी कभी लगता है जैसे मैं हजारों मील का लंबा सफर तय करने के बाद आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ से चली थी।
0: ये तेरा वहम है बेटी, ना समझी है?
1: नहीं काकी, ये हकीकत है, हकीकत। मेरे पांव के तलवे धुआं देने लगे हैं, घुटने चटकने लगे हैं, मेरे चारों तरफ घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है। मैं लाख कोशिश के बावजूद भी ये नहीं समझ पा रही कि वो रास्ते कहाँ छूट गए, क्यों मैं अपनी मंजिल से भटक गई, क्या गुनाह किया था मैंने आखिर?
0: बेटी, जो छूट गया उसे भूल क्यों नहीं?
1: कैसे भूल जाऊं काकी, सांसें तो आज भी वहीं अटकी पड़ी हैं। आज सोचती हूँ कि उस वक्त कैसी कैसी बेवकूफियां की थी मैंने।

0: अब जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी है। जानती हो काकी, कभी कभी तो जी चाहते हैं कि कोई आगे बढ़कर मुझे अपने आगोश में ले ले, मुझे सहारा दे। मगर
1: बेटी, मैं तेरा दर्द बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन बेटी तुझे फैसला करने के लिए किसी ने मजबूर भी तो नहीं किया था
0: काकी।
1: हाँ बेटी, तू मुझे कुछ समझती है ना, इसीलिए ये सब कहा मैंने।
0: काकी, उन यादों को फिर से ताजा मत करो काकी।
1: पगली, उन यादों को मैं कब ताजा कर रही हूँ, तू तो खुद उन यादों से लिपटी हुई है। न जाने तुझे क्या होता जा रहा है, कभी किसी बात को ठुकरा देती है और कभी उसी बात को जायज कहकर उसी को करने की जिद करने लगती है। बेटी, खुद सरी और खुद गर्जी का यही अंजाम होता है।
0: काकी, तू क्या कह रही हो काकी?
1: बेटी, खफा क्यों होती है? बचपन से आज तक तुझे गोद में खिलाया है ना, उसी रिश्ते से कह रही हूँ। लेकिन अगर तू सच्चाई को कबूल करने से इनकार करती है तो कौन कहता है कि तू मेरी बात सुन। लेकिन लेकिन बेटी, मेरे चुप रहने से क्या ये कहानी खत्म हो जाएगी?
0: कहानी कभी खत्म हुआ करती है क्या? ये कहानी अब एक नए उन्वान से आगे बढ़ेगी, जिसके साथ मेरा कोई सरोकार नहीं होगा। मगर इस कहानी के किरदार और माहौल दोनों मुझे हर लम्हा परेशान करते रहेंगी। मेरे लिए ऐसे खौफनाक हालात को सहना कितना मुश्किल होगा काकी। जगदीश ठीक ही कहता था।
2: मुबारक रमा। कहो, नया दफ्तर और पहले दिन की अफसरी कैसे लगी? कुछ हमें भी तो पता चले।
3: मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रही पहले दिन की बात, तो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं।
2: अच्छा?
3: सच जगदीश, कहीं एक अफसर बनकर काम करना और कहीं मातहत बनकर काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं, जिन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बयान करना आसान नहीं।
2: हाँ, वो तो तुम ठीक ही कहती हो, मगर तुम इतनी जल्दी घर क्यों चली आई? मैंने तो तुम्हें दफ्तर से पिकअप करने को कहा था।
3: बस यूं ही, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं चाय बनाकर आती हूँ।
2: अजी छोड़िए मैडम, अब तो आप एक आला अफसर हैं, आप बैठिए, आखिर एक खादिम किस मर्ज की दवा है।
3: देखो जगदीश, ऐसी बातें करोगे ना तो मैं।
2: अच्छा अच्छा, ये तेवर,
3: ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे, दरवाजा खुला हुआ है, कहीं काकी?
2: काकी बीच में कहां से टपक पड़ी? अच्छा, तो ये बात थी। काकी का बहाना करके मैडम किचन में चली गई।
3: लीजिए, ये रही चाय और ये जायकेदार कचौरियाँ।
2: नहीं वाह, आज तो मजा आ गया। अरे ये सब क्या? ये नए पर्दे, नया सोफा, सब कुछ बदला बदला लगता है आपको।
3: ये सब कुछ मैंने ही, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ रद्द बदल तो करना ही चाहिए।
2: वो तो ठीक है रमा, मगर
3: देखो जगदीश, अब अगर मगर कुछ नहीं, अब तक ये घर जैसे तुमने चाहा वैसे चला, और अब हाँ जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही चलेगा। कब से तमन्ना थी कि ये खूबसूरत घर हो, जिसमें आराम और आसाइश की हर चीज हो, नौकर चाकर हो, दफ्तर आने जाने के लिए स्टाफ कार हो। आज मेरी वो दैरीना आरजू पूरी हुई है, इसलिए तो कह रही हूँ ये सब।
2: देखो रमा, एक हद तक तो ख्वाहिशात और तमन्नाओं का होना ठीक है, मगर हद से आगे बढ़ना।
3: तुम्हारा फलसफा मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, यही हम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। खैर, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी?
2: मैंने पहले कभी बुरा माना है तुम्हारी बात का जो आज? अच्छा कहो, क्या कहना चाहती हो?
3: अगर तुम अपनी साइकिल को खैर बात कहकर एक नया स्कूटर खरीद लो अपने लिए तो कैसा रहेगा?
2: मगर इसकी क्या जरूरत है, मेरा काम तो ठीक चल रहा है।
3: तुम समझते क्यों नहीं, कहीं आना जाना हो तो क्या अच्छी लगेगी ये फटीचर साइकिल?
2: तो क्या आज से तुम ये समझने लगे हो कि स्कूटर से आदमी का रुतबा

0: खूबी भी है भाई
1: सर और मियाँ बेचारा
2: तो मियाँ भी कुछ कर क्यों नहीं लेता इसमें कंपटीशन हो
0: भाई कुछ नहीं कर सकता तो नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस ही कर ले
1: बीवी रोप क्यों ना जमाए।

0: रमा रमा जी कहाँ हो भाई, जल्दी से खाना लगवा दो, आज तो बहुत जोर से भूख लगी है। रमा अरे कहाँ हो तुम?
1: रमा बीबी जी तो अभी तक दफ्तर से ही नहीं आई।
0: क्या कुछ कहकर गई थी? क्या
1: कहकर तो कुछ नहीं गई थी, मगर कुछ देर पहले फोन जरूर आया था, आपके और बाबा के बारे में पूछ रही थी।
0: बाबा सो गया क्या?
1: हाँ कुछ ही देर पहले रोता रोता सोया है बेचारा। आपके लिए खाना लगा दो?
0: नहीं रहने दो, अभी भूख नहीं है।
1: अभी तो कह रहे थे भूख लगी है और अब
0: क्या फर्क पड़ता है काकी,

0: इतनी देर हो गई, कुछ देर और सही, रमा आ जाए तो।
1: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
2: बाबा उठ गया है।
0: समझ में नहीं आता आखिर रमा को क्या होता जा रहा है, ना घर की फिक्र है ना बच्चे की।
3: क्या बात है चाची, बाबा क्यों रो जा रहा है?
2: क्या बताऊं, सुबह से यही हाल है इसका, सुबह से दूध भी नहीं पिया।
3: लाओ इसे मेरे पास लाओ, मैं चुप कराता हूँ। अरे ले ले, हमारा बेटा क्यों रो रहा है? अरे मम्मी अभी आ जाएगी, चुप।
1: लाइए लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, ये काम आपके बस का नहीं है। अच्छा बेटी, आ जा आ जाओ, क्यों परेशान कर रहा है बच्चे? आएगी, अभी आ जाएगी। ओ अरे वो सामने तेरी मम्मी आ रही है। वो आ गई।
4: क्या बात है काकी? बाबा इतने जोर से क्यों रो रहा था? दूर से इसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी।
0: शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया, कहाँ थी अब तक?
4: मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया है, आज एक फंक्शन था इसी वजह से कुछ देर हो गई।
0: क्या क्या कह रही हो, तुमने मुझसे तो कोई बात नहीं की इस बारे में? क्या
4: आपसे क्या बात करती, आपको तो किसी चीज में दिलचस्पी है ही नहीं, सभी अफसर क्लब जाते हैं, इसलिए मैंने भी।
0: ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए वही करो, मगर इसे तो संभालो, वो तो रहता बुरा हाल हो गया है।
4: जरा साड़ी चेंज कर लू, अभी लेती हूँ।
0: साड़ी बाद में भी बदली जा सकती है, पहले बच्चे को संभालो।
4: ओफो, एक दिन आपने बच्चे को क्या संभाल लिया कि बस मेरे लिए आफत ही खड़ी कर दी। जब मियाँ बीवी दोनों कमाते हो तो दोनों को मिलकर ये भी काम करना चाहिए, इसे तो मैं ही।
0: आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारा खाबिद हूँ, नौकर नहीं। घर आने पर बच्चे को संभालूं, तुम्हारा इंतजार करूं, बच्चे को दूध पिलाऊं, बस यही काम रह गया मेरे लिए।
4: नहीं साहब, नौकर आप नहीं, नौकरानी तो मैं हूँ। तब तक से घर लौट कर आपकी खिदमत भी करूं और ऊपर से आपकी जली कटी भी सुनूं।
0: देखो रमा, मैं ये सब सुनने का आदि नहीं हूँ। जब से तुम्हें अफसरी का तमगा मिला है तुम्हारे रंग ही बदल गए। रही नौकरी की बात तो वो तुम अपनी खुशी से कर रही हो, उसके लिए मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया।
4: हाजी रहने दीजिए, ये सब कहने की बातें हैं। नौकरी छोड़ दूं तो दो दिन में आटे दाल का भाव मालूम हो जाए जनाब को। हाँ, सारे ठाट बाट धरे के धरे रह जाएं। एक LBC की हैसियत ही क्या होती है।
0: रमा, तुम हद से ज्यादा।
4: सच्चाई कड़वी होती है जगदीश, अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो आज मेरी हंसी न उड़वाते इस तरह, मुझे इस तरह सब सुनने को न मिलता। ये हालात खुद तुम्हारे पैदा किए हुए हैं।
0: नहीं, ये हालात मैंने नहीं तुमने पैदा किए हैं, अपने लिए ही नहीं पूरे घर के लिए।
4: नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम क्या जानो, तुम्हारी वजह से मुझे लोगों के कैसे कैसे कमेंट सुनने पड़ते हैं, चार लोगों में कैसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेरी अपनी भी तो ख्वाहिशें हैं, मैं भी सोसाइटी में अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। बीवी और माँ के अलावा मेरी भी एक शख्सियत है।
0: ये तो मुझे मालूम ही नहीं था।
4: बात को हंसी में मत उड़ाओ जगदीश, मैं बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम किसी कंपटीशन में नहीं बैठना चाहते तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते कम से कम?
0: रामा, तुम इस हद तक भी सोच सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ये तो भूल गया था कि आदमी के अपने हाथों से बनाई गई छुरी खुद उसके लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। मगर इस बात को हमेशा याद रखना रमा, कि तुम जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहती हो वहां पहुंच कर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। ऐसी औरतों को समाज कोई बहुत अच्छा दर्जा नहीं देता।
4: मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने में यकीन रखती हूँ।
0: तुम जो भी करना चाहो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है, मगर इतना जरूर याद रखना कि पानी की तमन्ना में भटकते रहने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस ऊंचाई की तह तक तुम पहुंचना चाहती हो वहां पहुंचकर तुम्हें मालूम होगा कि हकीकत क्या होती है। और
4: ये सब फजूल बातें हैं। दुनिया में किसी एक ऐसे शख्स का नाम बताओ जो शोहरत और इज्जत की ऊंचाइयों को छूना ना चाहता हो।
0: इज्जत और शोहरत को हासिल करना और उसे कायम रखना, ये बातें तो समझ में आती हैं। मगर आंखों पर पट्टी बांधकर दीवानावार उनके पीछे भटकते रहना अकलमंदी नहीं होती।
4: ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है और दानिशमंद उसे ही कहा जाएगा जो रोज बरोज की नई नई तब्दीलियों को पेशे नजर रखकर उनसे समझौता करके आगे बढ़ता है। सब तुम्हारी तरह नहीं होते।
0: रमा, मैं हकीकत में यकीन रखता हूँ।
4: ताज्जुब है, ये सब तुम कह रहे हो?
0: जी हाँ, मैं ही कह रहा हूँ।
4: मगर तुमने तो आज तक जमाने की परवाह ही नहीं की, वक्त की धड़कनों को पहचाना ही नहीं, वक्त के साथ चलने की बात तो दरकिनार। तुम तो ऐसी हकीकतों से

0: बचते रहे जो हमेशा अहम तरीन दर्जा रखते हैं।
1: ये ठीक है कि मैंने कभी समाज की परवाह नहीं की, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैंने समाज के बुनियादी उसूलों की कभी अनदेखी नहीं की। हर काम समाज के उसूलों को जहन में रखते हुए किया है, मगर
0: हाँ, मैंने समाज के हर उसूल को तोड़ा है, यही कहना चाहते हो ना?
1: प्लीज रमा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम तो यूं ही।
0: मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, समझती हूँ। इतनी भोली नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। मैं
1: कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? बोलो रे, बोलो, चुप क्यों हो गई? सच तो ये है रमा कि तुमने शुरू से ही ऐसे ऊंचे रेशमी खाद देखे हैं, इसलिए तुम्हें क्लब और पार्टियों की रंगीनियों में दिलचस्पी है। घर में कदम रखते ही तुम्हारा दम घुटने लगता है। तुम्हारे लिए घर सुकून रखने वाली जगह का नाम नहीं है, बल्कि एक कैद खाना है, बेमानी जगह है।
0: सब लोग तुम्हारी तरह पिछड़े हुए नहीं होते,
1: लेकिन सब तुम्हारी तरह भी नहीं।
0: मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ, मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी तरह से जीना चाहती हूँ।
1: और मैं भी तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि इस घर में जिस तरह मैं चाहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, समझी? मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट नहीं हूँ, तुम्हारा शौर।
0: तुम भी कान खोलकर सुन लो, मुझे किसी का हुक्म सुनने की आदत नहीं रही है, मुझे अब हुक्म देने की आदत पड़ चुकी है। तुम्हारा घर और तुम्हारे उसूल तुम्हें मुबारक। मैं ऐसे घर में एक भी लम्हा रहना नहीं चाहती जहाँ सांस लेने के लिए भी किसी से इजाजत लेनी पड़े।
1: हाँ, हाँ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ जी चाहे चली जाओ, तुम्हें रोका किसने?
0: हाँ हाँ जा रही हूँ, तुम क्या सोचते हो एक आला अफसर होकर भी तुम्हारे जरिए की बातें सुनती रहो?
2: अरे क्या कर रही हो बेटी, कुछ सोचा तो होगा?
0: मैंने खुद सोच लिया है, तुम बाबा की जगह मुझे लो।
1: कान खोल कर सुन लो रमा, बाबा को हाथ लगाओ तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। और एक बात और सुन लो, तुम खुद अपनी मर्जी से जा रही हो।
0: बाबा पर जितना हक तुम्हारा है उतना बल्कि उससे भी ज्यादा हक मेरा है, मैं उसकी माँ हूँ।
1: ताज्जुब है, अपने हकों का तुम्हें आज ख्याल आया? तुमने इसे अपना समझा ही कब? उसकी खुशी से ज्यादा तुमने क्लब और अपनी आजादी को तरजीह दी, उसे तो तुमने कभी कुछ समझा ही नहीं। मैं उस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा।
2: हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे भगवान के लिए कुछ तो सोचो, अपना नहीं तो इस मासूम के बारे में कुछ सोचो।

0: तुम ठीक ही कहते थे जगदीश, मैं आंखों पर पट्टी बांधे अंधे कुएं की तरफ भागती चली गई। जिस आईने को मैंने मजबूती से पकड़ रखा था वो तो कब का टूट चुका, मगर मैं अभी तक उस भुलावे में थी कि वो अभी तक साबुत है, वन पीस है।
1: बस कर बेटी, बस कर।
2: जो भी हो उसे बाहर से ही लौटा देना,
0: मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती।
1: ठीक है।
3: अरे जगदीश बाबू आप यहाँ? अरे रमा बेटी देखो कौन आया है।
2: काकी कहाँ ने, मुझे परेशान मत करो।
4: तुम रहने दो काकी, मैं खुद ही।
0: आप यहाँ? मगर यहाँ का पता आपको कहाँ से मिला?
4: रमा दुनिया इतनी बड़ी तो नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इसी दफ्तर में काम करती हो तो मैं शायद खैर तुम्हें खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना तबादला करवा लिया है।
0: क्या?
4: और वैसे देखा जाए तो तुम्हें परेशान होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं भी क्लास वन ऑफिसर हूँ।
0: जगदीश
4: अच्छा मैं चलता।
2: कहाँ चल रही है? रुक जाओ जगदीश, भगवान के लिए रुक जाओ।
0: मैं मुजरिम हूँ, तुम्हारी मुजरिम। तुम जो चाहो मुझे सजा दे दो, मगर आप मुझे इस तरह अकेला और बेसहारा छोड़कर मत जाओ। अब मैं जान गई हूँ कि आदमी रुपए पैसे और रुतबे से बड़ा नहीं होता।
4: रमा अब इन बातों से क्या फायदा?
0: ऐसा मत कहो जगदीश, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मुझे अपनी बेवकूफियों की बहुत सजा मिल चुकी है। ऊंचाइयों की तह में पहुंचने के बाद ही मुझे अपनी कमतरी का एहसास हुआ है। जगदीश जगदीश मुझे माफ कर दो। जगदीश
4: ये क्या कर रही हो रमा? उठो, अरे उठो। ऊंचा इंसान वही होता है जो अपनी गलती का एतराफ करता है। चलो रमा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा घर और तुम्हारा बेटा आज भी तुम्हारा इंतजार

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का नगमा सुनी लता मंगेशकर मुकेश और साथियों को नगमा निगार वर्मा मलिक मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल

0: एक बार मुस्कुरा दो। इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मुकेश के साथ आशा भोसले की आवाजों में, मुसीकार थे ओपी नैयर। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, बस नंबरी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अच्छा,

अपनी सरदारजी को दिया कर, मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सत्यनाल टोपी रूसी से।

सावन का महीना पवन करे शोर।

0: レソール。
1: パワーヌパレショール。
0: あれ、ババショールね、ソール、ソール、ソール。

ऑनलाइन फिल्म दिलाग में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में नगमनी गार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और साथ में आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हसरत जयपुरी का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाए शंकर जयकिशन ने, आवाजें हैं मुकेश और शारदा की, फिल्म है अराउंड द वर्ल्ड।

0: सरकारी स्कूल वाले ने डिपार्टमेंट ने ये सरको इस तरह कोशिश की थी मेरी माँ को आख्या ने तू जो है ना इसका नौकरी कर गया मस्तानी दे क्योंकि इसका स्कूल का ही नहीं।
1: अच्छा
0: मेरी माँ पहली टीचर आई नुस्कने दे जे सही बाले को पढ़ाने वास्ते लग गया स्कूल खोलिया तो पहले स्कूल का ही नहीं लेडी लड़कियां था।
1: अच्छा
0: लड़की ना पहला स्कूल मेरी माँ खोला सन 1978 च और मेरे ख्याल मातरी रूपए तनखा गिंदी हम तो स्कूल चलता रहा।
1: अच्छा
0: असा भी स्कूल चौके बाल असे
1: जी जी
0: अद्धा बजदा उन्हें नाल लगे हुए असे जो जो वे थे गए असा भी अपने स्कूल च वड़ना शुरू करता
1: जी।
0: ज्यादातर पढ़ाई जारी है वो असा हिंदी दी कीती चूंकि अपने मां नाल वेंदे असे मां साडी हिंदी ज्यादा पढ़ी हुई है उर्दू घट पढ़ी हुई है। मैं मां आपको एक पूछा भाई एक गल दसो तुसा जो उत्ता पढ़ेंदे आवे बाले को किवें पढ़ेंदे आवे वो मेरे को आखन लगे इवें सब तो पहला काम जेड़ा है वो है घरेलू वड़ाई कढ़ाई रोटी बनाना सब्जी बनाना ये स्कूल सिखेंदे असे सब तो ज्यादा काम जेड़ा है वो वड़ाई और कढ़ाई दा हुंदा किरोशे नाल तो सलाह नाल
1: यानी स्किल डोडे यानी स्किल
0: बिल्कुल स्किल का काम हुंदा और वो आज भी वो चीज चल जा पान साडे मां ने सिखाया हुआ
1: जी जी
0: आज भी चल जा पान वो। मैं पूछा एक दफा जल मैं पाकिस्तान गया तो मैं को मिलने वास्ते दो लेडीज आया वो जेड़े हम मेरी माँ को पढ़ा हुआ मैं को बड़ी खुशी थी कि 60-60 साल औरत जेड़े हैं वो मेरे को मिलन आये।
1: तेरे वालिद साहब क्या कहने क्या तुम्हारा बिजनेस आई कोई खेती बाड़ी आई क्या आई
0: ज्यादा बिजनेस कोई नहीं होता सिर्फ जमींदारी दे।
1: अच्छा
0: एक जमींदारी है सवेरे उठते से घोड़ी से बांधे से अपने अल्लाह ना अपना गए जमींदारी से थी के वाल लाए करने वाले मुजहरे होंगे
1: जी हाँ
0: आप कहने का ना आप सिवाय आपसे कोई काम नहीं कह रहा है
1: मुजहरे कौन होंगे
0: मुजहरे वो जो खेती बाड़ी का कम करने हैं।
1: अच्छा।
0: और ज्यादातर वो मुसलमान होंगे और मुस्लिम भी करने वो हिंदू लोग जितने भी हैं वो टाइम वो सारे सरमाएदार हैं और जमींदार हैं और दुकानदार हैं बिजनेसमैन
1: किराड़ भी आते हैं किराड़
0: वो मुस्लिम आते हैं साकू किराड़ चूंकि वो साको एक बेहतर नाम समझते।
1: अच्छा
0: वो किरार जरा शब्द आई वो ये आ सकते सारे वास्ते गाह निकले ने नो।
1: अच्छा अच्छा
0: वो किरार आख रहे हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: किरार मेरा पाए।
1: अच्छा
0: मतलब कोई एक अच्छा
1: मोहब्बत हरी आपस ही जो
0: मोहब्बत में बारे थे एक मोहब्बत बहु आई मेरे को याद है कि सारे दरखान हुंदा एक वो साको जो है इतने मोहब्बत करे ने सारा दिवासा को पकड़े रखना खाना पीना करना सब कट्ठा होता कोई फर्क कोई नहीं बड़े दे अंदर हाँ वड्डे च फर्क हाई मैं समझना खान पीण से कोई जरूरत करे पैसा मिलता का नहीं सिवाय झोली च अनाज गिर जो तो सामान गिरना बटावा वाला सौदा ही कोई ये सौदा कोई नहीं कि तुसा ये करने तुसा वो करने कोई खरीदने और फिर वो टाइम होता क्या है सिवाय छोले मूंगफली कोई सौदा ही कोई नहीं होता
1: मिठाइया
0: टांगरिया कुछ टांगरी होंगी सिंधी।
1: अच्छा
0: एक गुड़ वाली टांगरी होंगी तो मिठा होता वही ये होना ये मिठाया होना।
1: अच्छा एक बे की खुशी गमी चावन मन होंगे
0: एक बे की खुशी गमी का ये कि मुस्लिम और हिंदू अपनी खुशी च एक दूजे को सजे एक चीज आई मुस्लिम लोग जेड़े हैं वो साडे घरे च आंदे हैं और खांदे पींदे हैं मुस्लिम जेड़ा अपनी खुशी मनांदे हैं वो साको हिंदुए को कच्चा देने हैं पक्का नहीं देंदे कच्चा जिवें क्या है तेरे घर आटा दे गए तेरे घर घ्यो दे गए तो आप बना के खा गिनो सारी खुशी का वो लोग आते हैं वो सारी खुशी खावे दे हैं।
1: अच्छा तुम्हें बचपन की में बीते बचपन
0: बचपन में मैं कोई तरह आखो स्कूल चीजा होने एक छोटी जी डली बता दिया से।
1: अच्छा
0: कच्चा बनाया होता कोई नहीं शरारत होने बहुत ज्यादा स्कूल च लड़ूंगा तो मैं ज्यादा करना डली छेकने बंदा मैं पिछो हाथ आके भाई ये खेद हम साझा
1: शरारत भी
0: ये शरारत खेद भी हैं।
1: अच्छा
0: स्कूल का इो माहौल होता आपस में खेडा करना पढ़ाई घट खेल ज्यादा होने
1: खेल क्या क्या हम कोई रेड़े चलेंदे आवे क्या क्या
0: रेड़े

0: का पालन करना, राष्ट्रीय झंडे पर राष्ट्रगीत का सत्कार करना। दूसरे पे है आजादी दे संघर्ष तो प्रेरित उच्च आदर्शों को अपनाना। तीसरा भारत की प्रभुसत्ता एकता ते अखंडता की रक्षा करनी। चौथा देश की रक्षा करनी ते लोड़ पैण ते राष्ट्रीय सेवा भी निभानी। पंजवां है धर्म भाषा खेतर या जात पात उपर उठ के भाईचारा ते सद्भावना नूं वधाउणा ते औरतां दा सम्मान करना।
1: बड़ा सी
2: थैंक यू मैडम।
1: सब तो पहले असि जानना चाहांगे कि अमरीक गिल दा जन्म कित्थे होया।
2: मेरा जन्म असल दे विच अगर देखा जावे ते पार्टीशन दे वेले होया गड्डी दे थले।
1: जी
2: जदों पाकिस्तान तों जदों वापस आ रहे सी ना पार्टीशन वेले
1: जी
2: तां मैं राह दे विच काफला किसी जगह दे उत्ते रोकिया गया सी जिथे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता फैमिली विच सी उस वेले ऑन द वे
1: यानी कि 47 दी वंड अमरीक हाँ। गिल नू इस धरती ते लेके आई। अमरीक गिल दी मुढली सिख्या किथे होई?
2: मेरी मुढली सिख्या मेरे पिंड मुकेरिया दे कोल मनसूरपुर पिंड है छोटा जा ते उस पिंड दे विच ही मैं छोटा जा प्राइमरी स्कूल पिंड दा हुंदा सरकारी उहदे विच मैं चौथी तक उत्थे पढ़िया। फिर मैं बाद दे विच मैं जलंधर चला गया। मेरे फादर उत्थे नौकरी करदे सी
1: जी।
2: पंजवी इथे कीती, छेवी कीती हुशियारपुर, सतवी कीती लुधियाने तो
1: जी।
2: ओह तो बाद फिर मेरी मुकेरिया च बाकी एजुकेशन हुई।
1: वाह जी वाह। अमरीक गिल दा अपने परिवार विचों किन्ना नंबर सी?
2: मेरी एक सिस्टर सी जो बचपन च इंतकाल हो गया सी ओहदा, मैं कल्ला ही सी अपने घर।
1: जी जी। अमरीक गिल नूं असीं पुछना चाहांगे कि उसने संवाद लेखन दा काम कदों शुरू कीता?
2: असल विच पहले अखबारां मैगजीनां दे विच कहानियां कवितावां पंजाब च लिखदा हुंदा सी पंजाबी च
1: जी।
2: ते संवाद लेखन दा काम मैनूं असल दे विच जो इंडिपेंडेंट फिल्म दे रूप दे विच उहदे मैं बीए विच एमए च वी राइटर दे तौर ते काम करदा सी जिस तरह राइटर सारे करदे ने मैगजीनां च जां अखबारां च अपनी

kimse

वेव 375.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 854 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.6 मेगा हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्ज, एफएम बैंड 103.6 मेगा हर्ट्ज, आकाशवाणी अमृतसर और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की घड़ी 6:30 हो रहे हैं। हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: ऐसे प्रभाव च हुंदा है कि दूजा बंदा उस स्थिति नूं बचा सकता है। जिस सियाणा बंदा होगा अगला कहना यार ये इस टाइम गर्मी दे विच है या कोई इस तरह की जिदा कहने की तलखी है वो अगला कहना यार तू ऐदा करी आप कल गल करांगे ठंडे मद्दे नाल गल करांगे।
1: कुछ दे दोवे गर्म हो गए तां हल नहीं होने एक में चुप रहने की आदत पौनी पैनी आ
0: क्योंकि जे तुसी उस बंदे नूं ना चंगारा सिंह जी उस टाइम ते संभाल लिया
1: जी
0: अगले पल उन्हें तेन संभाल लेना उन्हें आप ही ताडे घर उठ के आना यार मेथो गलती हो गई।
1: देखो जी वक्त बेचारे सोई बंदा सही गल
0: है कि नहीं जे वक्त ना बेचारिया फिर वक्त ताडे हाथ नहीं आना।
1: हाँ वक्त तो कहते हाथ है ही नहीं वैसे
0: किसी के नहीं। सो इस करके सियाणप इसे चीज च है कि कोई भी रिश्ता ओनू आपा खराब करने तो पहला ओदे दूरगामी जेड़े है चिर स्थाई ओदे प्रभावां बारे सानू थोड़ी जानकारी एकत्र कर लेनी चाहीदी है फिर आपां ओह रिश्ते दे क्योंकि देखो रिश्ते दे विच ना इह जिद्दां शिंगारा सिंह जी कई वारी इह हुंदा है कि जदों तुहाडा कोई गल्लबात किसे नाल मन मुटाव हुंदा है ना तुसीं इक तां कहिंदे हुंदे ने वी ओह यारी विच ना वकील बनाईए लड़के दस जाऊगा
1: सही गल
0: ओह तीजा बंदा ना विच पाओ।
1: हां तीजा रलिया ते घर गलिया
0: ओह इस करके सियाणप पेच है वी ओहनूं कहो वी भरावा तूं आ आपां दोनों जणे बैठ के बहने आ
1: जी
0: आपां जिहड़ी वी गल तुहानूं लगदी है कोई बहन ना ओह कढ लैंदे
1: आपां मन मुटाव कढ लैणा चाहीदा जी सौखा रहिंदा
0: और निकल भी जांदा जे गल कंधी कौली चढ़ गई
1: जी
0: ते फिर मुड़ के सूत नहीं आउणी
1: नहीं जी। देखो कई चक्कण वाले भी हुंदे कई रखण वाले भी हुंदे
0: लोक बोल गाउण दे लाउणे
1: आ ला दिओ जी।

Oh,

0: ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਚੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
2: ਨਮਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰਫਿਰੋਜ਼ੀ संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
2: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष असहिष्णुता और विभाजन से

0: जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स मुकाबले में आज सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे किसान बहन भाइयों को राम राम। अतुल भाई
1: जी, लोकेंद्र भाई
0: कार्यक्रम लेके हाजिर हैं और आज के हमारे कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और साथ साथ होगा मनोरंजन।
1: बिल्कुल, और देखिए भाई बरसात का मौसम चल रहा है लोकेंद्र भाई, और बरसात के मौसम में भाई हम तो अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि भाई अपने पशुओं की जो देखभाल है भाई वो जरूर करें, क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में ही कई बार पशुओं को अनेक बीमारियां जो है वो लग जाती है।
0: बिल्कुल, देखिए इसमें महत्वपूर्ण

0: से साफ सफाई रखें। इसके साथ साथ अतुल भाई पीने के लिए हमेशा स्वच्छ होता है पानी उपलब्ध कराएं, हरा चारा साफ सुथरा होना चाहिए, फफूंदी ना लगा होना चाहिए और साथ ही गाढ़ा सलाना होना चाहिए और संतुलित आहार का के साथ साथ नमक भी दें उनको और मच्छर मक्खी जैसे बीमारियां वो कीड़े हैं उनको से बचाव करें।
1: यानी आप कह रहे हैं कि जो हमारे पशु हैं उनको मिनरल मिक्सचर भी आप दें।
0: हाँ।
1: और भाई जब देखें कोशिश करें कि भाई आपके पशुओं पर जो है भाई मक्खी या मच्छर बैठ रहे हैं तो उसका स्प्रे भी आप जो है पशुओं पर करते रहें। और एक बात और कहना चाहेंगे भाइयों, अपने सभी किसान भाइयों से कि भाई कोशिश करें, देखिए बरसात का मौसम है और आपने अगर आपकी पशुशाला पक्की है, अगर आपने अपने पशुओं के नीचे पक्का करारा किया हुआ है तो भाई कोशिश करें कि भाई चूने का एक बार हफ्ते में छिड़काव आप अवश्य कर दें। और अगर कच्चा है तो भी करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मिट्टी और जब गारा बनती है ना उसमें गोबर भी उस पशु का जब मिल जाता है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और जब कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो वो पशुओं के खुर में या पशुओं के मुंह में भी कई बार चले जाते हैं और बीमारी का पशु जो है वो शिकार हो जाता है। तो कोशिश करें भाई आप चूने का भी जो है आप छिड़काव समय समय पर करते रहे ताकि जो कीड़े हैं
0: वो उत्पन्न ना हो,
1: हाँ वायरस है वो खत्म हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: और भाई जब बरसात का मौसम आप बता रहे हैं शुरू हुए है, हम भी देख रहे हैं, हम भी भीगते आप भी भीगते हैं बारिश।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई कोशिश करें कि भाई
0: उनको बचा
1: अगर आपको पशुओं में कहीं खुरपका या मुंहपका कोई लक्षण भी दिखाई देता है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है, तो कोशिश करें भाई अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाकर के अपने पशु की देख टीकाकरण कराएं और चिकित्सक को जरूर दिखाएं।
0: बिल्कुल।
1: और समय समय पर सलाह भी आप लेते रहें।
0: बिल्कुल। तो ये तो रही जानकारी, अब अपने भाइयों को हम जानकारी सुनवाते हैं कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत एक मोती उत्पादन किसानों के लिए, जो अनुभवी किसान थे उन्होंने संध्या गुप्ता से क्या अपने अनुभवों को साझा किया, तो आइए सुनते हैं मोती उत्पादन किसान उत्पादक किसान।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। कृषि समाचार दर्शन के आज के अंक में मोती उत्पादक किसान और प्रशिक्षक मोती की खेती के विषय में अपने अनुभव और विचार साझा कर रहे हैं।
3: नमस्कार, मैं कुलंजन दुबे मनवानी। मोती पालन करीबन मैंने 2002 से शुरू किया था। मैंने मुंबई में CIFC करके है, वहाँ किरण दुबे मैडम के अंडर में मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद जो हमने शुरुआत की, दिक्कतें बहुत आई। पहले तो सीप भी नहीं मिल रहे थे, सीप मिलते भी थे तो छोटे छोटे मिलते थे। जो था उसी में अपना जो रिसर्च है शुरू कर दिया और पहली बार हमारा मुरबाड़ में मोती आया था, जिसके बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस है बहुत आगे बढ़ा। और फिर जो हम बढ़ते चले गए जगह जगह हर एक राज्य में भारत में, पहले महाराष्ट्र से शुरू किया, फिर बिहार बेगूसराय, ऐसे करते करते बहुत सारे राज्य हमने गुजरात भी कवर किया, कर्नाटक में भी हम गए थे। हर जगह हम जाते थे वहाँ पे, क्योंकि करना पड़ता था क्योंकि वहाँ किसी ने किया नहीं था, लोगों के लिए जानकारी ही नहीं थी कि मोती पालन होता है। जो हर गांव में नदी तालाब मिलता है इसमें मोती पालन होता है, लोगों को जानकारी नहीं। तो हमें खुद भी करना पड़ता था कि इस क्षेत्र में कैसे आएगा मोती, सीप कौन सी मिल रही है, ये सब हमें रिसर्च के तौर पे हमने हर स्टेट में दो दो साल रह के वहाँ पे मोती उगाए। और खुशी की बात यह है कि जहाँ भी हम रुके, जहाँ भी हमने ट्राई किया, हर जगह मोती आया। तो वही हमारा लक्ष्य और आगे बढ़ाते थे। पहले तो फेलियर में थे, फिर जो सक्सेस हुआ तो वो सक्सेस ही छूता चला गया। जो पहले प्रोजेक्ट में जो केवल 10% मोती आए, उसने हमें हौसला दिया कि हम आगे कर सकते हैं। और फिर जो बढ़ते गए, हम कदम हमारे पीछे नहीं गए। और यही देख के भारत सरकार से भी हमें कई अवार्ड मिले इसके लिए कि हमने मोती पालन किया। एक लड़की होने के बावजूद जंगल में रुकना, पहली महिला मैं हूँ जो मोती पालन में किया है। तो उसके लिए मुझे पहले अवार्ड मिला था 2011 में महाराष्ट्र के सरकार के तरफ से ही। वहाँ पे साइंटिस्टों को बुलाया था लेकिन उसमें मुझे एक अवार्ड मिला। और फिर जो हमें अवार्ड मिलते चले गए, हम लोग एग्जीबिशन भी करते थे, लोगों को जागरूक भी करते थे कि भाई मोती पालन होता है। और आज देखिएगा, सर ने कहा था 2016 में, आज हम 2026 में खड़े हैं। हमारा मोती बिकता भी है, लोग हमें जानते भी हैं और हम मोती उगा भी रहे हैं। लोगों को फोन पे भी कंसल्टेंसी हम करते हैं बिना चार्ज के। किसी को कोई दिक्कत है पॉल फार्मिंग के इसमें तो हम सबको गाइड कर

देखिए, इस तरीके से किया जा सकता है। इसमें जो नुकसान है वो आप लोग न झेल पाए। हमें 13 साल, हमारा मोती नहीं आया था 13 साल। हमने लोगों को 13 साल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बता दे रहे कि ये चीज आप न करें, जिससे उनको वो दिक्कतें नहीं आती जो हमने झेला। करते हैं पॉल फार्मिंग तो उनको मोती सही तरीके से मिल जाती है। कॉलेज के एग्रीकल्चर BSc बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं। हमने स्किल कॉलेज में भी जाके ट्रेनिंग दिया है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी दिया है, NGOs

बता दे रहे कि ये चीज आप न करें, जिससे उनको वो दिक्कतें नहीं आती जो हमने झेला। करते हैं पॉल फार्मिंग तो उनको मोती सही तरीके से मिल जाती है। कॉलेज के एग्रीकल्चर बीएससी बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं, हमने स्किल कॉलेज में भी जाके ट्रेनिंग दिया है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी दिया है, एनजीओज में भी दिया है, जहां जहां हमें मौका मिला ये अवेयरनेस फैलाने का हमने किया। इसमें हमने इनोवेशन भी किए, मशीन इसको खोलने वाला जो यंत्र था ये अपने इंडिया का नहीं था, फॉरेन के सीप को खोलने वाले, जो फॉरेन के सीप अगर आप देखेंगे तो हथेलियों से भी बड़े होते थे, उन सीप को खोलने के औजार से हम भारत की छोटी छोटी सीपियां जो 10-12 सेंटीमीटर की होती थी उसको खोलते थे, तो इसमें मौत की संख्या ज्यादा हो जाती थी। तो उससे बचाने के लिए हमने छोटे छोटे शेल के कवर के, जब ये मर जाते हैं तो उसी को हम एरल्डाइट में मिक्स करके एक ओपनर बनाते हैं, जिससे छोटी से छोटी सीप भी हम खोल सकते हैं। और इस मशीन, ये सारे टूल्स भी बनाने के लिए हमें अवार्ड मिल चुका है। आज हमारे पास सब है, हम मोती पालन करते हैं, हमने टूल्स बनाए हैं, मोती के पेंडेंट्स कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीख लिया, पर्ल्स को कैसे कट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पर्ल फार्मिंग में वैल्यू एडिशन हमने किया है, जो सीपियां मर जाती हैं उसके हैंडीक्राफ्ट हमने बनाए हैं, जैसे दिया है, कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, लेकिन हमारा अगर सीप का दिया आप देखेंगे अंधेरा नहीं होता, उस दिए के नीचे जो भी कलर उस सीप को आप लगाएंगे वो नीचे धरती पे आ जाता है। ये करामात हमने पर्ल फार्मिंग में की है। कई लोग जानते हैं कि ये पति पत्नी मिलके 26 साल से पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं भारत

0: 2 साल में नहीं आएगा, 4 या 5 साल लेगा। एक मोती बहुत अच्छा मोती अगर आपको चाहिए, उम्दा मोती, तो वो 4-5 साल लेगा आने के लिए। जो मोती उगा रहे ना हम लोग, वही मोती नेचुरल मोती है जो हर इंसान पहन सकता है। ये मोती हम नहीं बनाते हैं, मोती सीप बनाता है। क्यों ना हम भारत में उगे मोती को पहने, हमारा किसान जो उगा रहा है उसी से खरीद के पहने, तो और अपने भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। जो किसान अब पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि हाँ, जो भारतीय लोग है भारतीय मोती पहन रहे, भारत के लोगों से लेके। पहले होता था कि समुन्द्र में सीपियों को मार के मोती निकाले जाते थे, आज हर सीप में हम अपने कोई भी मोती उगा सकते, किसी डिजाइन का हमें चाहिए।
1: मेरा नाम वंश राजकुमार, ग्राम दुधार वो सुंदरगंज, जिला औरंगाबाद, बिहार है। मोती की खेती 4-5 सालों से कर रहा हूँ और इसकी ट्रेनिंग हमने BHU में अशोक मानवानी जी से ली थी। तो अभी कुछ सफलताएं हमें हुई हैं, वीडियो वगैरह देखते रहते थे तो हमारे मन में आया कि इसे मैं भी इसको कर सकता हूँ। ऐसे मैं मेडिसिनल और एरोमेटिक्स की खेती करता हूँ और उसी से जुड़ा लगभग भी है, तो हमको लगा कि इसे इसमें करना चाहिए। फिर मैंने उसके ट्रेनिंग बजाते ली, हमें अच्छा लगा और उसके बाद से मैंने लगातार प्रयास करते रहा और प्रयास करने के बाद हमको इस बार सफलता मिली है। कुछ मोती हमारे आए हैं 1.5 साल के बाद, तो हमको लगा कि इसे और इसको और बढ़ाना चाहिए। सीप मैंने

एक सिप का, और उसमें कितना परसेंटेज मरेगा जिएगा इस पर कोई गारंटी नहीं है। तो इसके चलते अगर जो भी किसान करना चाहेंगे, मैं उनको कहूंगा कि अपने आसपास के तो जो तालाब हैं या डैम हैं या नदियां हैं उससे वो ढूंढें। हमने 2-3 साल तक इस पर अथक प्रयास किया, तब जाकर के हमें सफलता मिली है। और हमने BHU में जो ट्रेनिंग ली थी, हम लोग जो ऑपरेशन कर करके 1,000 सिप डाले थे, तो उसका अभी भी वहां पर ट्रायल चल रहा। अगर वो तालाब में किया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, टैंक में थोड़ा देख रेख ज्यादा होता है पानी का और मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होता है। तालाब में जब करते हैं हम लोग तो ज्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें जाली बनाना पड़ता है और जाली बना करके उसमें ऑपरेशन किया जाता है, उसको प्रत्यारोपित किया जाता है, वो सांचा जो रहता है उसको, और उसके बाद हम लोग जाली बना करके उसको लटका देते हैं बोतल के सहारे जो पानी में लटका हुआ रहता है। इसमें होता क्या है कि जितना ज्यादा समय आप रखेंगे तो उसका शाइनिंग जो है वो ज्यादा मिलेगा। हमने 1.5 साल पर एक किया था, 2-3 महीने पर, तो वो हमें प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन जब हम 1.5 साल उसको रखें तो उसमें लाइटिंग है, शाइनिंग है, वो अच्छा आता है। मोती की खेती में सावधानियां ये रखनी पड़ेगी कि जो पानी आपका है वो एल्गी होना चाहिए, जो हरापन है, जो सीप का भोजन है, तो उस तरह का होना चाहिए। और चुनौतियां हैं कि बहुत सारे सीप जो हैं आप बाहर से अगर लाते हैं तो आपके वातावरण में वो सेट कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, उनका डेथ परसेंटेज कितना है, ये सब देखना पड़ता है। अगर वो आपके पानी में वो सेट कर जाता है तो आपकी सफलता निश्चित है कि हो जाएगी। पहली बार तो मैं हतोत्साहित हो गया था, शुरू बार में एक भी नहीं आया तो, और मैं थोड़ा जिद्दी टाइप

0: लोट निकला है जो 30-35 आ गया है। मैंने 150 डाला था तो 30-35 की सफलता हमें मिली है। अब इसको और बढ़ाना चाहेंगे। अभी बिक्री तो मैंने नहीं की है, लेकिन अब मार्केटिंग करके उसको देखेंगे बाजार क्या मिलता है, कहाँ मिलता है। आगे को हम आए चाहेंगे कि इसको बढ़ावे और हमारे साथ जो किसान और जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं उनको हम प्रोत्साहित करें ताकि ये मोती की खेती को और बढ़ावा मिले।
1: नमस्कार, मैं अशोक मनवानी इंडियन पर्ल कल्चर से। पिछले 30 सालों से हम मोती पालन पे कार्य कर रहे हैं। आपको पता ही है कि भारत के 18 राज्यों में आज मोती उग रहे हैं। तो हम ही ने जगह जगह जाके प्रयोग किए, सीपियां ढूंढी और उनमें डिफरेंट टाइम में मोती निकाले, उनको कट किया, उनके पेंडेंट बनाए और अवेयरनेस में हमने भारत को जगाया कि मोती उगता है, आकृतियों वाला बहुत अच्छा उसमें मोती आता है और ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आज भारत में कई जगह पे मोती उत्पादन शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पे। सरकार की कई योजनाएं भी आ रही है, आपको इसमें दी जा रही है, जो 2 लाख 5 लाख रुपए आप अपने अपने पोर्टल में देख सकते हैं। यह मोती जो है बड़ी आसानी से तालाबों में उगाया जा सकता है। मोती उगने में 50 रुपए मात्र खर्चा आता है। समय जो है 1.5 साल 2 साल के बीच में इसमें समय लगता है। इन मोतियों को मछली पालन के साथ भी हम लोग कर रहे हैं। मैं अशोक मनवानी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो मोती पालन का हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। हमने 10 पेटेंट लिए हैं और ये सब किसान भाइयों के लिए है कि किसान भाइयों, आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है तो हम जो चाहेंगे कि मोती पालन पे आप

0: इंडिया का अभी पर्ल का मार्केट नहीं है, पर्ल का मार्केट अभी चाइना, मेनली चाइना वगैरह से आता है, तो इंडिया में इसका प्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और डिमांड भी इसकी बहुत ज्यादा है मार्केट में, और हम कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मैं कृष्णा देशमुख नांदेड़ महाराष्ट्र से। मैं मोती की खेती की जानकारी पिछले 4 साल से ले रहा था और अभी

0: इलाज करा सकते हैं और अपनी मिट्टी का जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी आप
1: बनवा सकते हैं। तो ये तो रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में।
0: और अब भाई अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं उपदेश रोमेंद्र नागर और विनयपाल नागर की आवाज़।

0: तो लोकेंद्र भाई, अभी हमारे सभी किसान बहन भाई सुन रहे थे रोमेंद्र नागर और विनयपाल नागर से ये रानी। और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत कर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजा ये कार्यक्रम। आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल की।

0: रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ

0: मांगा है एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। पीठ ने जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी कर अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने महिलाओं और बच्चों सहित प्रदर्शनकारी
0: वो मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है, ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि गोवा की कृषि और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सिंगल विंडो प्रणाली पर उपलब्ध 84 सरकारी सेवाओं में आवेदन के निपटारे का समय कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों और कारोबार से जुड़े लोगों को सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अविनियम प्रक्रिया के दूसरे चरण के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र 21 पर विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें 18 विभागों को

क्षेत्रफल वाले एनडीएमसी क्षेत्र में वर्तमान में 364 सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयां संचालित हैं, जिनमें 200 से अधिक सार्वजनिक शौचालय, 40 सामुदायिक शौचालय और 33 सार्वजनिक मूत्रालय शामिल हैं। उन्होंने बताया, पटियाला हाउस न्यायालय के पीछे स्थित यह सार्वजनिक शौचालय लगभग 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में 22 लाख की लागत से आधुनिक सुविधाओं से बनाया गया है। श्री चहल ने बताया कि आधुनिक सुविधा में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष ब्लॉक में 3

0: सालों की मॉनसून स्वास्थ्य तैयारी की समीक्षा के दौरान आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त भंडार, पैथोलॉजी और जांच सुविधाएं तथा चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए सभी अस्पतालों को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहने को कहा है। इसके अलावा अस्पतालों की नियमित निगरानी और किसी भी स्तर की लापरवाही।
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई। जी हाँ श्रोताओं, महिलाओं का श्रृंगार केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि ये श्रृंगार एक महिला की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और व्यक्तित्व की भी पहचान होता है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें या प्राचीन काल की बात करें तो तभी से भारतीय नारी अपने पूरे 16 श्रृंगार और कई सारे प्रकार के आभूषणों से खुद को सजाती हुई नजर आती है। और ये आज भी हम देखते हैं कि तीज हो, त्योहार हो, पर्व हो, तो महिलाएं किस तरह से 16 श्रृंगार में सजी हुई नजर आती है। ये श्रृंगार केवल बाहरी नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास, सौंदर्य और गरिमा को और भी निखारता है। तो आइए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में ये गीत।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नारी के श्रृंगार की। प्रेम है, प्रतीक्षा है और अपनत्व का भाव भी इस गीत के माध्यम से नजर आता है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि श्रृंगार और गहने किस तरह से भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाते हैं। महिलाओं के बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियां, पायल, कितने सारे आभूषण जिनकी अपनी चमक है, अपनी खनक है और वहीं अपनी महक भी है। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अब एक और श्रृंगार से ही जुड़ा हुआ ये गीत।

जख्मी दिल फिनसलिया गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। श्रोताओं, पायल की मधुर आवाज जो मन को छू जाती है, इसके घुंघरुओं का घर आंगन में बजना मानो किसी उत्सव उल्लास और प्रेम का भाव अपने साथ लेकर आया हो। फिर वो घर में गूंजी किलकारी हो, उसके पैर में बजने वाले पायल के घुंघरू हो, या फिर घर आंगन को अपनी मौजूदगी से महकाने वाली प्रेमिका या फिर स्त्री हो। आइए श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, वंश फिल्म से लिया गीत अभी आपको सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत से संवारा था आनंद मिलिंद ने। नारी के आभूषण जिनकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है। कई बार श्रोताओं ऐसा होता है ना कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके भाव, और मन के भाव को अपने साथी तक खामोशी से पहुंचाना हो तो फिर पायल की आवाज, चूड़ियों की खनक और गजरे की महक आपके मौन का स्वर बन जाते हैं। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत से सजा कार्यक्रम गीत मालिका। आइए अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वर में सुनते हैं ये गीत।

श्रोता लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और अपने कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं महिला के श्रृंगार से जुड़ी हुई, और ये श्रृंगार जो है वो महिलाओं का न केवल सौंदर्य है बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, उसके कई सारे भावों को भी प्रकट करता हुआ नजर आता है। और बात जब भारतीय महिला के श्रृंगार की हो तो उससे भारतीय सिनेमा कैसे अछूता रह जाता, और यही जुगलबंदी आज हमने आपके साथ पेश की है, जहां हमने देखा कि कई सारे हिंदी फिल्मों में ऐसे गीत लिए गए जिसमें नारी का श्रृंगार तो है ही और उसके साथ साथ उसके भाव भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि महिला का जो श्रृंगार और हिंदी फिल्मों के जो गीत रहे हैं उनका गहरा और अटूट रिश्ता रहा है। समय कोई भी रहा हो, गीतों में हमने अक्सर देखा है कि नायिकाओं का जो रूप, सौंदर्य और उनके आभूषण और साथ ही साथ जो 16 श्रृंगार है हमेशा गीतकारों की कल्पनाओं में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, और यही है भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अब आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। आवाज है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: सारा श्रृंगार करते रहिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
3: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
2: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने बने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
6: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
7: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इश्यू भी डिस्कस कर सकते हैं।
2: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएसपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए हैं। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावासकेस से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिडकैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल

नमस्कार, 20 मिनट पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं छाया गांगुली। आप समाप्त करेंगे उनके गए चंद गीत और गजलें। नमस्कार, 45 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और 9:55 पर कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से, मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत। जबकि 10:00 मार्केट मंत्र प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट हम आपके लिए पेश करेंगे और 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामीले इरशाद। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद जारी रहेगा 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11:00 आप सुनेंगे खबरें बर सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। सुरक्षा में ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा 11:30 पर और शब के 11:45 पर कवालियां पेश करेंगे सादत हुसैन कवाल और हमनवा। शब के 12:00 आलमी खबरें नशे की जाएंगी। 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे राजीव जनार्दन का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। 12:30 आखिर शब प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नाक में। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शब 1:00 उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सारा ये एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मोहब्बत भी दोस्तों भले चंगे इंसान को क्या से क्या बना देती है। मोहब्बत कीजिए फिर समझिए बेखुदी क्या चीज है।

एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे हैं छाया गांगुली के गए चंद गजलों और गीतों से। एक और खूबसूरत गजल इन्हीं की आवाज में आपकी समातों की नजर है।

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज की फनकारा थी छाया गांगुली। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: अब आप सौरली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है, जिसमें

इस सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। आप सभी सामने को नईम का आदाब। चलिए जनाब, आज कुछ बातें खाने पकाने की हो जाए। नहीं, मजा नहीं आया। हाँ, बात किसी हद तक तो ठीक है कि जिस शय की हम बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक जायके से भी है और खाने से भी है, लेकिन जनाब इस शय को अगर हम देखें दूसरे नजरिए से तो तिब्बी फवायद ही फवायद हैं। जब आप करी पत्ते के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके जहन में किसी हिंदुस्तानी कुजीन की शुरुआत जो होती है, जैसे गर्म तेल में तड़का लगाना, बघार लगाना और एक अजीब गरीब खुशबू बखेरते हुए ये पत्ते याद आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आम से दिखने वाले पत्ते सिर्फ जायके के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं? जी हाँ, हम बात करें करी पत्ते की, जिसे कुछ लोग कड़ी पत्ता भी कहते हैं। इसमें गजाइत भी है और तिब्बी फवायद भी हैं। चाहे आप सुबह करी पत्ते का पानी पी रहे हों, अपने बालों में करी पत्ते का तेल लगा रहे हों, या फिर खाने में ताजे पत्ते शामिल कर रहे हों, आपका जिस्म आपको शुक्रिया कहेगा। करी पत्ता हमारे मुल्क में और हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये छोटे हरे पत्ते होते हैं और इनका अगर जायके की बात की जाए तो हल्का सा इसमें खट्टापन और थोड़ा सा कसैला होता है। और जनूबी हिंद की अगर बात की जाए तो वहां के खानों में इसका इस्तेमाल बहुत ही कसरत के साथ किया जाता है। अब ये तो खानों की बात हो गई, इसके अलावा करी पत्ते की अगर तिब्बी फवायद की बात की जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें है और जरूरी ग़िज़ाई अज्जा इसमें वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं करी पत्ते, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और खून में कोलेस्ट्रॉल को जो ऑक्सीजन मिलती है उस के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है एलडीएल, उसके के बनने को कम करते हैं, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम एचडीएल कहते हैं उसमें इजाफा होता है, और इस तरह से दिल की जो सेहत तो वो अच्छी होती है, क्योंकि दिल के जो शरियाने हैं उनमें रुकावट पैदा होने से ये रोकते हैं करी पत्ते। और आयुर्वेद में करी पत्तों को लंबे वक्त से उनके गुणों के लिए खास तवज्जो दी जाती है, और चूंकि निजामे हाजमा को ये दुरुस्त करते हैं और मैदे को फूलने से बचाते हैं और गैस की परेशानी से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर मैदे में कोई सोजिश है, सूजन है, और या फिर आप बदहजमी का शिकार हैं तो करी पत्ते जो है इसके लिए बहुत ही मुआविन साबित होते हैं। और कई तहकीकात से पता भी चला है करी पत्तों में टैनिन और कार्बासोल एल्कोलाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और ये विटामिन ए और सी के जो अज्जा हैं उनको एंजाइम में मिलाकर इसको और ज्यादा बेहतर बनाते हैं, जिससे आपका लीवर जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। बालों के लिए बहुत अच्छे हैं करी पत्ते, और बालों का झड़ना कम करना हो या फिर उनके जो अफजाइश है उसमें इजाफा करना हो, या फिर कई बार खुश्की हो जाती है उसका अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो करी पत्तों में चूंकि एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट अज्जा पाए जाते हैं जो स्कैल्प या सर के जो सेहत को बेहतर बनाने में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। और करी पत्ते में चूंकि विटामिन ए वाफिर मकदार में पाया जाता है तो इसलिए बिनाई के लिए बहुत उम्दा है, और जो नाइट ब्लाइंडनेस या जिनकी बिनाई कमजोर हो जाती है, रात को कम दिखता है, वो ऐसे अफराद अगर करी पत्तों का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में तो काफी फायदा साबित उनके लिए हो सकता है, और वजन को घटाने में भी मुआविन साबित होते हैं करी पत्ते, चूंकि आपके निजामे हाजमा को दुरुस्त रखते हैं
और

0: जैसा आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मुआविन होते हैं, तो लिहाजा वजन भी आपका कम हो सकता है करी पत्ते के इस्तेमाल से। और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, खून के बहाव को जो है वो बेहतर बनाने में मुआविन साबित होते हैं करी पत्ते। और जो शुगर के मरीज हैं, जो डायबिटिक अफराद हैं, करी पत्ता उनके लिए भी फायदेमंद साबित होता है, ऐसा माहिरीन का कहना है। कैफ काफी फवाइद इसके हैं और भी इसके मुताबिक बात की जा सकती है, लेकिन वक्त की तंगी है दोस्तों, तो आज मशवरे सेहत के सिलसिले में बस इतना ही। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर पेशे खिदमत है मार्केट मंत्र।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्र। सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: धन्यवाद अमित।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा।
0: Thank you, Amit and Sushma. Once again, welcome to the program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices continue downward trend. Sensex declines over 700 points. Nifty settles below 24,000 level. Most Asian stock market indices end with gains. And global crude oil prices rise around 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 700 अंक से अधिक लुढ़का। निफ्टी भी 24,000 के स्तर से नीचे दर्ज। प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का दौर और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की तेजी।

0: Listeners, before we move well into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। बढ़ते वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में जारी तेजी से घरेलू सूचकांकों में आज लगभग 1% तक की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई।
0: Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. The Nifty lost 191 points to settle at 23,996. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell over 1% and the Small-Cap 100 Index dipped over 1.5%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 24 कंपनियों में आज गिरावट रही। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में इंडिगो 3.6%, इन्फोसिस 2%, स्टेट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.8% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.7%, एनटीपीसी तथा पावर ग्रिड 0.6% और टाइटन 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे।
0: Broad-based selling was observed in sectoral indices on the BSE. FMCG emerged as the sole gainer, rising 0.4%, while all other sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dropped 2.6%, services slipped 2%, and PSU banks lost over 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,780 companies declined, 1,458 advanced, and 180 remained unchanged.
1: अंतरबैंकी विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे की गिरावट से 96.57 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। सुषमा, अगर शेयर बाजार की बात करें, आज एक और दिन जिस जब बाजार कहीं न कहीं गिरावट के दबाव में नजर आया।
2: बिल्कुल,
1: ये दबाव किस वजह से हो रहा है और बाजार क्यों नहीं इससे उबर पा रहा? हालांकि कल और आज या सोमवार की भी स्थिति अगर हम देखें तो तीनों दिन कहीं न कहीं बाजार में गिरावट हावी रही, और अगर बाजार कहीं संभलता हुआ भी नजर आता था तो वो बहुत देर तक टिक नहीं पाया।
2: देखिए, ये जो आजकल के 2-3 दिनों से ये चल रहा है, ये बेरिश ट्रेंड, ये तो साफ आपने भी अपनी खबरों में बोला है कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये इसलिए बढ़ रही हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वो टूट गया है और बीच में गोलाबारी शुरू हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बीच में मीडिएटर्स आ गए हैं और कोशिश दोनों तरफ से है कि किसी न किसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर कोई अंत लगाया जाए। तो ये जब तक ये ये जो प्रॉब्लम चल रही है वेस्ट एशिया में, तब तक तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहेंगे। और इसमें ये भी डर है, अगर आप तेल की कीमतों की बात करें तो जो पहले के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, जब ये कॉन्फ्लिक्ट, जब ये वॉर शुरू हुआ, ये जंग शुरू हुआ मार्च में, फरवरी के एंड में, तो उस वक्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, अमेरिका के भी थे और बहुत सारे देशों के थे, तो वो रिलीज हो गए थे। लेकिन अब इस वक्त वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। तो अवेलेबिलिटी, खैर ये बात नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी जो इन्वेंट्रीज थी वो कम हो गई है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल ड्रिलिंग वगैरह का जो वेस्ट एशिया में, उसके ऊपर वो भी काफी डैमेज हो गया है, तो इसका भी डर है। तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारी जो मार्केट्स हैं वो हिल गई हैं। दूसरी वजह ये है कि आज की जो खबर आई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा सेक्टर में वो टैरिफ्स लगाएंगे। खैर अभी नहीं, उन्होंने दो साल की ये पीरियड दिया है कि दो साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये 100% और 200% के टैरिफ्स होंगे, तो उससे भी नेचुरली मार्केट्स को थोड़ा सा मतलब अगेन फिर से हिल गया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
1: फार्मा सेक्टर की बात करिए, उससे संबंधित कुछ खबरें हमारे पास हैं, तो पहले उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे देते हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमरीका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमरीका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद शुल्क पहले वर्ष के लिए 100% और अगले वर्ष के लिए 200% तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए तय समय सीमा में संयंत्र और अन्य जरूरी व्यवस्था नहीं करेंगी, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुषमा, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि अमरीका एक तरफ हम उसका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, उसका दंश झेल रहे हैं, और अगर इस तरह की भी बातें आती हैं, क्या शेयर बाजार पर सीधा सीधा इसका भी असर पड़ता है?
2: ये तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्षेत्र जो है, एक तो बहुत बड़ा है हमारी उद्योग क्षेत्र में, और दूसरा हमारी जो निर्यात क्षेत्र में, ये वहां भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है फार्मास्यूटिकल्स का, और जो मार्केट्स में एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र देख रहा है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है, और खासकर जेनेरिक दवाइयों के लिए। ये जो बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि 2 साल के बाद ये होगा, इसको खैर हम थ्रेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर 2 साल के बाद भी वो 100% टैरिफ लगाते हैं तो इसका असर हाँ हमारी उद्योग के ऊपर तो होगा, लेकिन अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर हमारा देश है, और जेनेरिक दवाइयां, ये जो हमारी भारतीय दवाइयां जो है, वो अमेरिका में बहुत कंज्यूम की जाती है, मतलब बहुत खरीदी जाती है, और अगर इनकी आप टैरिफ लगाएंगे तो उनके जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। वैसे भी जो दवाइयां अमेरिका में उनकी जो उनका जो खर्चा है, उनकी जो कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन मेडिसिन। कई लोग जो अमेरिकी हैं, अमेरिकन सिटीजन, यहां आके दवाइयां खरीदते हैं और वहां वापस चले जाते हैं, तो ये हम थ्रेट समझ सकते हैं, और लेकिन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को इसके बारे में, फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा।
0: राइट, सो अ स्मॉल क्वेश्चन अगेन स्टार्टिंग विद फार्मा एंड द अनाउंसमेंट ओवर नाउ, इट्स 2 years इन द फ्यूचर,
2: इट्स
0: एन ऑफिंग, वी ऑल्सो नो दैट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ कमेंट्स दैट आर मेड ऑफ टैक्सेशन ऑफ टैक्सेस, लिविंग टैक्सेस, ऑफ सीज फायर ऑफ MOUs फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट, वी ऑल्सो नो दैट देर इज अदर देन द शेयर मार्क वॉलिटिलिटी, देर इज अ लॉट वॉलिटिलिटी देयर ऑल्सो,
2: यस करेक्ट,
0: and linking this to the fall in the Indian stock market today, in the indices that we saw, if we are looking at a direct correlation possibly in the future, but also more to understand that even if that is say a threat in the future and not the reaction was not to that, the correction that we are seeing actually is really not a correction. For a correction to really have to rise and then come down, so this fall actually a market fall,
2: yes,
0: and we are seeing it. So can we link it somewhere? Because earlier we've always had reason that either it's a correction or it's the monsoon, or there is, and the Ukraine war has somewhere been built in because global supply was not affected that much.
2: Yes,
0: stances were affected. Here actually, you know, the shoe is pinching, but not many countries.
2: Yeah.
0: How do you see our stock market? And I know it's not about prophecy.
2: Yes.
0: But you know, seeing the global situation, do you think that we'll somehow be able to build in that volatility and not have such huge ups and downs, because retail investors actually don't know what to do, the smaller ones, and they're sitting on a fair number of shares, which you keep thinking it might just go up, but over a 6-month period you're seeing that, my God, maybe I'll never recover.
2: Yeah. Well, I think first of all, of course, investors have to, even retail investors should take a long term view, and I think this is normally the advice given by most financial analysts, unless of course you're doing day trading and you're selling and, you know, buying on a daily basis, but retail investors should be taking a long term view. The long term view, of course, for India, the growth story remains intact. Now, of course, coming to this issue of the pharma sector, well, it has a direct impact. It is very true, as you point out, that this is a threat which is in the future, 2 years in the future, and from a person, the President of the United States, who has very often made statements, retracted, or even gone worse. And, you know, we have seen it within the Iran war also, and also in relation to the US-India trade deal. But the fact is, the markets, stock markets, tend to be, and this is not just in India, but around the world, they tend to be sentiment driven, as they say. And therefore, the fact that he has made this announcement today, that may not have an impact on the pharmaceutical industry today, it may never have an impact on the pharmaceutical
0: industry.
2: But it is a sentiment response that it could have an impact if, for instance, 100% tariffs is levied on the pharmaceutical sector, and we are the largest provider of generics to the US. The US is the biggest market for generics. It will have an impact on the industry. So that is the sentiment which drives stock markets, and therefore you are bound to see volatility in the context of geopolitical tensions. Yes, I don't think that there is any getting away from this kind of volatility, because you are going to have the market reacting to these kind of developments. Now, just a few days ago, it looked like the war was settling down. The Strait of Hormuz had opened up. Availability of oil had increased. Prices had come down to below $70. Now we are up once again to over $90. So there is volatility in the geopolitical scenario, and therefore the stock markets are reacting accordingly. But at the

0: same time, retail investors must remember that the underlying growth story of India we have been able to is intact, in the sense that we have been able to meet various crises with a great if you take in a macro sense, composure, in the sense that a country that has, we have continued growing at a fairly, we have continued growing at 7% to 7.5%, and despite all the tensions of the Ukraine war, where we had thought that we are going to have so many of there were supply chain disruptions, and we had thought that we would have a great deal of problems. So there are still problems. This is not not to wish them away, but I think we can tackle them.
1: And Sushma, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ जहाँ बीच में आपने कहा, जैसा कि गौरव ने कहा, क्या ये टेक्निकल करेक्शन है या ये सेंटिमेंट का करेक्शन है या सेंटिमेंट कहीं गायब है या वाकई में हमारा या सबको ऐसा सोचना है कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है. भारतीय कंपनियों में चाहे जितना भी दम हो, बट फिलहाल के लिए एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो इन सब पे ज्यादा भारी पड़ रही है. क्या यही एक वजह है जो शेयर बाजार को अभी ट्रिगर नहीं लेने दे रही या कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही, या वाकई कंपनी जगत से भी जो पिछले कुछ नतीजे आए हैं वो इतने उत्साहजनक नहीं रहे, या सबका मिला जुला रुझान है? महंगाई भी एक मुद्दा बन सकता है क्या इसमें?
0: देखिये, अब ये मैं नहीं मान सकती कि ये टेक्निकल करेक्शन है, इसको तो आप रहने दीजिए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो उनके साथ ही चल रहा है, जैसे कोई राग चल रहा है और आप वो गायक का तबला साथ में, तो ये स्टॉक मार्केट की वैसे ही चल रही है. तो इसमें ये है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो आपने बात की, वो बिल्कुल आपने, आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड. एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर उद्योग के लिए, हर कंपनी के लिए. और इसको एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तेल को हम लोग समझते हैं जो क्रूड ऑयल है, और उसके अलावा पेट्रोल है और डीजल है. इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पेट्रोकेमिकल्स आ जाती हैं, इसमें प्लास्टिक्स आ जाती हैं. जो जब ये जो यूएस ईरान की वॉर शुरू हुई, एक महीने के बाद हमारे देश में प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे, बहुत तेजी से प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे. और मुझे किसी ने कहा कि किसी कंपनी का नाम लिया, उन्होंने कहा अरे वो लोग ये तो प्लास्टिक के दाम आ रहे हैं. मैंने कहा भाई अब ये प्लास्टिक के दाम क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स के दाम
1: नहीं आ पा रहा है
0: क्योंकि तेल की वजह से, उसके साथ फर्टिलाइजर्स भी है. तो ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है एक चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये है जो एक चीज जो हावी है सारे हमारे उद्योग क्षेत्र में.
1: एफएमसीजी लेकिन आज पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें जगाता हुआ नजर आया. एफएमसीजी
0: बिल्कुल,
1: क्या सिर्फ यही है वजह कि ये तो एक मूल जरूरत ही है इस वजह से, या कोई और बात
0: है? नहीं, मूल जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन, हमारा डिमांड, ये बहुत बड़ा देश है और हमारी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये एक कहा जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारी मार्केट, इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है. तो ये एफएमसीजी के लिए यही है कि इतनी बड़ी मार्केट है. हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब दाम बढ़ाने होते हैं तो वो पैकेज छोटे कर लेते हैं, तो स्मॉल पैकेट की इश्यू हो जाती है और फिर बड़े पैकेट्स कर लेते हैं. तो डेफिनेटली हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत बड़ा है, वाइड स्प्रेड एरिया है.
2: Right, and it's interesting that when we see FMCG and even luxury goods,
0: yes,
2: both segments, our consumption has not really, you know, fallen that much.
0: Yes.
2: And it's I think it's a sign of maybe overall raising of standard of living.
0: Yes, indeed. Right. I mean, that needs to be analyzed, but it could be.
2: Right. Moving on to our next story, Eternal Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue from operations rose by 182% year-on-year to 20,211 crore rupees. On a quarter-on-quarter basis, revenue increased around 17%. The company's consolidated net profit grew by 268% to 92 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, net profit declined over 47%.
1: जवाहरलाल ने एशियाई शेयर बाजार पर, एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मजबूती का रुझान रहा. ताइवान का ताइएक्स 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेच टाइम सूचकांक 1.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक मामूली बढ़त के साथ

0: You, first of all, sorry, you talked about high consumption. Actually, on a per capita basis, our consumption of energy is not so high.
1: Right.
0: So, in fact, we need to improve our consumption, our per capita consumption of energy. But you are very right that we need to change the sources of this energy. Now, one of the things that ways in which the government has is trying to do that and which has created a great deal of controversy is by introducing ethanol and blending it into our petrol, 20% blending, which is the E20 controversy that has been going on. And despite the fact, and this is by doing this, the government has brought about a huge saving in the import bill. Now, the controversy over this is despite the fact that even automobile manufacturers, mind you, they are saying that there is no damage to the car as a result of using ethanol, and they are designing their cars to use more ethanol. Automobile experts have also said that yes, there will be a slight decline in fuel efficiency. And that is not a great deal, but there will be some slight decline, but there will be no damage to the car. Now, there is a great deal of talk about damage to the engine, but according to automobile experts, according to the automobile industry, this is not so. And as has been pointed out by the petroleum minister himself, that this ethanol blends are being used by Formula One cars in their racing cars, because they say there's a less of what they call a knock-on effect. I'm not a technical person, but this is what they say. So it's preferred there. So therefore, the government is trying. This is one of the ways.
1: Right.
0: And we have to see what
1: oil was the flavor of the last question. Look at the global crude oil prices. They climbed nearly 4% today. The surge was led by growing concerns about supply disruptions triggered by escalating hostilities between the U.S. and Iran. Brent crude was trading almost 3.8% up at $94.44 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% up at $87.28 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading over 1.2% up at 1,45,350 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.5% up at 2,25,420 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 1.2% की बढ़त से 1,44,618 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 0.6% की मजबूती से 2,25,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। सुषमा, संक्षेप में, जो अभी तेल की कीमतों का जो दबाव है
1: जी,
2: वो किस तरह से आपको नजर आता है, और क्या सोना चांदी की जो भाव हैं वो भी कहीं इससे कदम ताल करते हुए नजर आएंगे, या फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि डॉलर और रुपए का जो संबंध है, क्योंकि आज भी रुपए में हल्की सी कमजोरी आई है, वो इसको दिक्कत करेगी।
0: ये आपका सवाल बहुत लंबा है, ये संक्षेप में नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कह सकती है कि तेल के जो दाम है वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया तो फिर वो एकदम नीचे आ जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सोना जो है, जो अभी भी गोल्ड वो सेफ हेवन एसेट है, और ये रहेगा, और जब तक क्राइसिस रहेगा दुनिया भर में तो इसकी प्रॉब्लम्स रहेगी, इसके दाम बढ़ेंगे।
2: सुषमा, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
1: एब्सोल्युटली, थैंक यू सुषमा वंस अगेन। अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड। सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 700 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000 लेवल। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद गेन्स एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अराउंड 4%। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूं, तो आके जा भी चुका है, मैं इंतजार में हूं। सभी सामेन को नेम का आदाब।

ये तो दोस्तों हमें भी नहीं पता चलता कि घड़ियां इंतजार की कैसे गुजर जाती हैं आपसे मुलाकात की जस्तजु में। बहर कैफ चले आते हैं गाहे बगाहे आपसे मुलाकात करने, और आज भी ये खुशी का दिन है, आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकातों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल तो सिलसिला जारी करते हैं आपके ईमेल शामिल करने का। ये पहला ईमेल जो मौसूल हुआ आज के प्रोग्राम में, गांव है परसों का, तहसील जिला लातूर से हैं हमारे सामने उस्मान शेख, फौजी सायर बानो और करिश्मा शेख। और अगला ईमेल किसका है ये भी देखना चाहेंगे। अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार साथ में कुलदीप गांधी, और ये फरमाइश ईमेल कालका से मिला है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा साथ में स्वीटी छाबड़ा, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से पसंद किया कन्हैया फिल्म के इस नगमे को जिसे लता मंगेशकर, मुकेश साथियों ने गाया, शैलेन्द्र का लिखा नगमा था, शंकर जयकिशन की थी मौसीकी, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इस नगमे को पसंद किया था। और इसी जिम्न में एक और ईमेल मौसूल हुआ कैथल हरियाणा से, जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा का, और आप हैं सुरेश नारंग, आशु नारंग और साथ में विनोद पुरी, सहारनपुर से आपने फरमाइश हमें साल की है। और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से ये ईमेल मौसूल हुआ है राशिद हुसैन अंसारी, नसीर अंसारी, नौरीन अंसारी का, और इसे

नगमे को सुन रहे थे और पसंद फरमा रहे थे। बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशो और मुख्तसर पंजाब से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई और आप रामगढ़ के इनसे महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, राजा बाबू और उनके अहले खाना और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से फरमाइश मिली अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी की। इसी नगमे को सुनना चाहते थे मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, कर्ण बत्ता कनेरा मोहल्ला पटियाला से और आप हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, पुरानी भिलाई 3/4 छत्तीसगढ़ से और ये फरमाइशी ईमेल मौसूआ व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव और अहले खाना का और ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से सुनने के मुतमन्नी थे इस नगमे को मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी और आप हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और साथी फिल्मकाम गुजरात से और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है रेलवे रोड गंज टंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी का और आप हैं राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी तनमय, अनिष्का तनमय डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से और दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से फरमाइश मौसूल हुई मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज और हसन नवाज की। और आइए सुनते हैं बरखा फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण ने इस नगमे को कलमबंद किया और तर्ज बनाई चित्रगुप्त ने। सुनने के ख्वाहिशमंद आप तमाम सामिन सलाई सोकटाहा नेपाल से, अरुण कुमार शर्मा, रेंद्र शर्मा साथ में राहुल कुमार शर्मा और दिल्ली रघुवीर नगर से फरमाइश मिले दिलावर खान, हसीना बानो, अलीसा नयाब के और आप हैं कस्बा गुन्नौर से। बड़े नीचे जाके आपके नाम मिलते हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और साथ में फैजी फराज। बाकी के ईमेल्स डिलीट कर दिया करें और जो फ्रेश ईमेल है उसी को रहने दिया करें तो वक्त कम जाया होता है। पश्चिम थोक गंज टंडवारा से मुनव्वर अल्लाह पीरजादा, नसीन मिर्जा, अरबाज शहबाज भी हैं और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ अगले नगमे के लिए फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर से, नासिर शेख, नाजे नासिर साथ में साजिद शाहिद और नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं आप सब आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से और ये फरमाइश मिली है नाला मच्छट्टा फरुखाबाद यूपी से, संजू चौरसिया, श्रेष्ठ चौरसिया और कुशाग्र चौरसिया की जानिब से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं रायपुर नई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन और आप हैं आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर। अगला ईमेल मौसूल हुआ है सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद का, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, करनाल से बलविंदर सिंह सोढ़ी साहब सुनने के मुंतजिर अगले नगमे को। नसवाला चौक मलकापुर से फरमाइश के संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल ने और आप हैं गाड़ी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे और पिंजौर से चंद्रमोहन साथ में होंगे इंद्र मोहन और मुल्लापुर दाखा से फरमाइश की राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन ने। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं जॉन डिकेस्ट, रोजी डिकेस्ट और विलिस जनकपुरी सहारनपुर से और हररपुर मटकली बरेली से हैं शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, मोइन अंसारी और उनके बहुत सारे साथी और ये फरमाइश ईमेल राज पैलेस मोमनाथ भंजन यूपी से मिला है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन का और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम साहिबा साथ में डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, आप तमाम सामिन की पसंद, आप तमाम सामिन की नजर।

लखा फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मुकेश का गाया हुआ एक और नगमा, फिल्म है मॉडर्न गर्ल। इस नगमे को तमाम सामईन ने पसंद किया, उनके नाम शामिल करना चाहेंगे जनाब। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं इसको रिफ्रेश। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान साथ में उत्कर्ष, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं अजवाई नगर से दुपरा टाउन से जुबैर अली खान, जबिया जुबैर और अंजुमन खान, और ये फरमाइश के लिए शेरवानी स्कूल गंज जुनवारा यूपी से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और साथ में अनवर मास्टर, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्की वाली फलनाजा, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से, और आप में सिद्धार्थ नगर देरापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले और सुशील येले, और ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा, साथ में राहुल कुमार वर्मा, बटाला महाराष्ट्र से फरमाइश की विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और कुमकुम ने, इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर है सुब्रत चौधरी साहब कोलकाता से, और अगला ही मेल मिला है रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का, गंगाधरी मेकर, प्रमोदी मेकर, प्रदीप है मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से, घंटागर चौक खंडवा से सुनना चाहते हैं अगले नगमे को संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया। जी हाँ, मुकेश साहब का नगमा है जो आप सुनना चाहते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार कीजिए। विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे आप कोर्ट से, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, कुमार गली श्रीरामपुर से, और कैलाश चंद सोनी, गोविंदा उत्तम कुमार सोनी की फरमाइश बीकानेर राजस्थान से, और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं तो साइड लाइन करना पड़ेगा आपको। चंडीगढ़ सिटी से फरमाइश की है सतीश अनेजा और साथ में उनके बिमला अनेजा, और ही फरमाइश मेल पंचकुला सेक्टर 9 से मिला है आशु चुग, अश्वनी चुग और गोविंद चुग का, और मजनू कटीरा दिल्ली से सुनने के मुंतजिर इस नगमे को कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, महल महसौल सीतामणि बिहार से मुसरत जहनाज, तला जहनाज, अफरत जहनाज की फरमाइश भी है, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीट शहर से, और ये फरमाइश मिली है भाटापारा छत्तीसगढ़ से अरविंद चावला, सोन जोशी और शिव कुमार शर्मा की।

और भाटापारा छत्तीसगढ़ से बच कमल डॉक्टर बसंत भृगु और मोतीलाल यादव जी, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं मंगल गेट मलकापुर से रामेश्वर तलेकर, वंदना तलेकर और दिव्या हर्ष तलेकर। और अगला ईमेल किसका है ये भी देखना होगा। देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत और उनके कुछ और साथी मानेवाड़ा रोड नागपुर से ये फरमाइश मिली है कि संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुम डाबेराव के विदर्भ आकोट से, और उमर के मेहरनगर महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं इस नगमे को। अभिजीत गोहनकर रही, सरिता गोहनकर, अर्जुन गोहनकर डुग्गू और आप हैं ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल। और अगला ईमेल मिला है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और आरजू जाजौरिया का। आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा आप सब सामेन की नजर। मुकेश का गाया हुआ मॉडर्न गर्ल फिल्म का ये नगमा।

हमेशा प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामेन की नजर आप हैं। ज्ञानेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहौकर निर्मला नाहौकर और साथ में विशाल और ये फरमाइश मिली है। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी राजू मिगलानी बब्बू डब्बू की और बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम साथ में कुसुम नेताम और इसी नकमे को सुनना चाहते हैं। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवीद हसन अब्बासी और आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव और एम खलील कुरैशी नुसरत बेगम बेबियारीबा हबीबा की फरमाइश है। पटेली रोड गंज डुंडवारा से और सिद्धार्थ गोंदाने अर्चना गोंदाने प्रणय प्रसिद्धि ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से और ही फरमाइश मिली है। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर सल्ला मनवर बीपी प्रियांशी की अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं। आप हैं सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल दीपक जायसवाल जामनिया गाजीपुर से और नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शनी मिर्गे डॉक्टर प्रियंका कालपांडे की फरमाइश है। साईनगर आरवी महाराष्ट्र से अनंता भगत अरुणा भगत और चेतन है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूर शाहीन हसन नाजिया इब्राहिम और ये फरमाइश मिली है। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्ढा साथ में अलका मिड्ढा और बिट्टू भाटे रीटा भाटिया रजत की फरमाइश झज्जर हरियाणा से मिली है। इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी है पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह और साथ में कुशल शाह और आप हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शादाब खत्री और ओम प्रकाश है उषा राय अमित की फरमाइश है। कोटवा नारायणपुर बापट्टी बलिया से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह है लोहगढ़ ठाकुरावाला से सुनने के मुंतजर इस नगमे को और ही फरमाइश है। निजामाबाद तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श बेगम रावे शेख शेख रहीम मुन्ना की उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशोताशु पाकुर झारखंड से और प्रतीक्षा चंदन उषा चंदन पाणु चंदन कुमार गली कोलगांव से सुनना चाहते हैं इस नगमे को और ये फरमाइश मेल बरगद बेल हुबली कर्नाटक से मिला है फैज अहमद शाकिर मुल्ला जी और साबिर मुल्ला जी का। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सरस्वती चंद्र फिल्म का नगमा है कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में।

सरस्वती चंद्र फिल्म कई दफा सुन रहे थे, हिंदी वर का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी की थी मौसीकी। और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के साथ मुकेश की आवाज में एक और दोगाना फिल्म है मल्हार, मौसीकी रोशन की और नगमा निगार इनकी वर।

0: किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने हुकाम को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी समेत पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम सबूत को महफूज रखने की हिदायत दी है। मफादे अम्मा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए बेंच ने हुकाम को जवाब सौंपने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की अगली समाअत 11 सितम्बर को होगी। रेलवे के वजीर अश्विनी मेषन ने बताया कि हुकूमत के इकदाम की बदौलत संगीन नौयत के रेल हादसात की तादाद साल 2014-15 के 135 से घटकर इस साल 2026-27 के जून तक सिर्फ 2 रह गई है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णो ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और बेहतर रखरखाव के जरिए रेल सेफ्टी को मुस्तहकम किया गया। जनाब वैष्णो ने मजीद बताया कि सेफ्टी से मुतालिक सरगर्मियों पर अखराजात साल 2013-14 के तकरीबन 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर साल 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रूपये से तजावज कर गए हैं। अमरीका ने यमन के हौसी बागियों के उस ऐलान की मजम्मत की है जिसमें हौसियों ने बहर अहमर में सऊदी अरब की बाहरी नाकाबंदी करने और तजारती बाहरी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हौसी बागी ग्रुप की इस धमकी के लिए ईरान को मुर्दे इल्जाम ठहराया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि कशीदगी कम की जा सकती है। फिलीपींस में इलाकाई समिट के तनाजुर में जनाब रूबियो ने कहा कि बाहर अहमर में जहाज रानी में रुकावट डालने वाली हर वजह आबनाए हुरमुज में जहाज रानी में रुकावट डालने से मुमासलत रखती है। इससे पहले हौसियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बाहरी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए नया महाज खोल दिया है। हौसियों ने तेल की आलमी सप्लाई और तजारत को निशाना बनाने की धमकी दी है। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान नाजेबा मवाद नष्ट करने की बिना पर 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में इत्तला तो नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुर्गन ने बताया कि हुकूमत शिकायतों की बुनियाद पर इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बाकायदगी से कार्रवाई करती है। चाइना ओपन बैडमिंटन में 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु अपने हमवतन उन्नति हुडा की को हराकर खवातीन के सिंगल्स के 2रे राउंड में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज दोपहर प्री क्वार्टर फाइनल में हुडा को 21-14, 9-21 और 21-10 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी आलमी नंबर 11 इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 21-17, 5-21 और 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करें। हुकूमत ने बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है। उसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहिरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी मेषन ने कहा है कि बेहतर रेल सेफ्टी, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसात में खातिरख्वाह कमी आई है। अमरीका ने ईरान पर यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से बाहर अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ बाहरी नाकाबंदी का इल्जाम लगाया है। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। प्रोग्राम जारी है तामिले इरशाद।

जौहर महमूद इन गोवा फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे। कमर जलालाबादी का लिखा हुआ मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की थी और आवाजें सुमन कल्याणपुर और मुकेश की। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक नगमा मल्हार फिल्म का सुनवाया था आपको। इन दोनों नगमों की मिली जुली फरमाइशें शामिल कर लेते हैं। बगे भाटा पर से कैसा हो आकाश कमलेश कन्नूलाल रजक और उनके बहुत सारे साथी ये फरमाइश मिली अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी रजे बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी की। और आप हैं शेगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से संतोष एस काले तेजस एस काले और साथ में लोकेश एस काले मुनव्वर अल्लाह पीरजादा नसीन मिर्जा अरबाज शहबाज की फरमाइश पश्चिम तो गंज डंडवारा से मिली है। अब्दुल वफा डावर अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आपने फरमाइशी मेल हमें इरसाल किया और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है अनारकली बाजार चकराव से सुनील पाठक कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा का। और उत्तम नगर दिल्ली से हैं कमला रानी बोधराज खोरवाल भानु प्रकाश और इसी नगमे को एंजॉय कर रहे थे बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और अगला ई मेल मिला है के एच राही गुड़िया बेगम वकील प्रेमिका तहसील रोड गंज टंडवारा से और आप हैं तालुका नांदुरा कोलासर से प्रमोद बगाड़े वर्षा बगाड़े संकेत बगाड़े। और अगला ईमेल रिपीट है और ये फरमाइश ईमेल बागपत यूपी से मिला है संजय ढींगे नमन ढींगिया साथ में अपार ढींगिया और नेहरू चौक पैठड़ से सुनना चाहते थे इस नगमे को डॉक्टर सुरेश जाधव नीता जाधव सोनर प्रसाद जाधव। इसी नगमे को सुन रहे थे गुरमीत सिंह मेहता साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से और ये फरमाइश मिली है वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटो थॉमस पिंकी अरोड़ा और अहली खाना की। बड़ा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू की फरमाइश भी थी इसी नगमे की। और आप हैं मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े विजय ताड़े और अहले खाना विनोद मुणत नेहा जैन दीपक मुणत बोरखेड़ा जिला उज्जैन से। और अब सुनवाते हैं आपको तमिल शातर प्रोग्राम में रास फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी नगमा निगार हैं गुलशन बावरा। और इस नगमे को सुनना चाहते हैं गांव अंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा और दिलीप रामेकर हर्ष रामेकर अक्षय रामेकर रामेकर हैं राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। और ये फरमाइश मिली है महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी सीट को संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुनील सामग और अंजलि की। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी अब प्रथम सोनी और आप हैं नामवी दिल्ली से मदन चक्रवर्ती साथ में राजेंद्र चड्डा।

था और अगला मेल चीपा कॉलोनी खंडवा से मिला मोहम्मद न्यूज खत्री मोहम्मद सादिक खत्री साथ में है अयूब खत्री और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी मीनाक्षी नलगोड़ा छत्तीसगढ़ से और ये फरमाइश मेल शंकरलाल जायसवाल गणेश लाल जायसवाल और राखी जायसवाल का है नांदेड़ ये तालाब महाराष्ट्र से और आप हैं इम्तियाजी मामा तेज तायरा परवीन तेज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा बिशनपुर गेडी झारखंड से और ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ है मोहम्मद करीम ये पहले हम शामिल कर चुके हैं पुराना तालाब डुमरा से वली अंसारी सुल्तान अंसारी साथ में असमानाज अंसारी और गढ़वाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी डॉक्टर प्रियंका थांडी डॉक्टर प्रशांत थांडी भी साथ में शामिल हैं और इसे नगमों को सुनना चाहते हैं मनोज सेन पूनम सेन दीपक सेन कार्तिक सिटी सेंटर खंडवा से आपकी फरमाइश हमें मिली है और रतन राम रतन टॉकिस कुंडलवाड़ी सिंह गंगाधर सावनकर विजय लक्ष्मी सावनकर और जहराबाद वेस्ट से सुरेश कटनिया पूनम कटनिया साथ में दिशानी निमित और बसंत कुमार सिन्हा के साथ में कौन कौन है आज ये भी देखना चाहेंगे रेखा बसंत कुमार सिन्हा पूरा नाम है अजय कुमार गुप्ता है साथ में और नन्नी सी है अन्विका तनुश्री गुप्ता दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से और ये फरमाइश मेल पेपर लोड सरगांव से मिला है दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति का इसी नगमे को सुनना चाहते हैं किशनगंज ब्यास से रविन्द्र मोहनदास आशा देवी भारत कीर्ति भारती और पंजाब रामटेके यशोधरा शव्या हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से

हम तो जाने का कोई सवाल नहीं, पहले शामिल करते हैं कुछ दोस्तों के नाम, उसके बाद जाने की बातें करेंगे। नर्मदा पार्क मंगल बेटा महाराष्ट्र से इस नगमे को सुन रहे हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल और प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण है, करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब से, और आप हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी कामले।

देश और नगमा भी बस खत्म होने को है, लेकिन कुछ नाम तो शामिल कर लेते हैं जनाब। बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर कटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा हैं और मास्टर विट्ठल सरोशे, मायरा सरोशे, साथ में सुषमा सरोशे, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से। और ये फरमाइश मिली है कन्नूलाल रजक, मुझे लगता है शायद ये हम पहले शामिल कर चुके हैं, देखते हैं जनाब। इसको फिलहाल तो गेम पे होल्ड पे रखते हैं। राजू माठे, गजान माठे, संजय माठे की फरमाइश बुल्डाना असल गांव बाजार से मिली है। और अब आपकी नजर करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ एक और खूबसूरत नगमा, फिल्म है पतंग। नगमा निगार राजेंद्र किश, मौसीकी चित्र गुप्त की है। और जहां तक फरमाइश की बात है तो आप सब सुनना चाहते हैं इस नगमे को, ईमेल हो गया रिपीट आगे, तो एक और ईमेल शामिल करते हैं। कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और उनके कुछ और साथी, और प्रभुदास कोटेचा, अंसा कोटेचा, आशीष कोटेचा जंक्शन प्लॉट राजकोट से हैं। विठल यादव, सुय यादव, पवन राय यादव नागपुर से सुनना चाहते हैं इस नगमे को। और अगला ईमेल फिर रिपीट है, इसको भी साइडलाइन कर देते हैं। पंद्रकावा से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे की फरमाइश है, इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी है। गणेशपुगन चुंडोरा एटा यूपी से शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख और बेबी मुस्कान, और बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से फरमाइश की राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग ने। और आप हैं सैयद शमा परवीन, सुफियान इमाम और अर्शी सुल्तान, गिरडी झारखंड से आपकी फरमाइश हमें मिली है। शंभू दयाल खटक, विमला देवी, योगेश हैं गांव जाखोद से, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसप्रीत, जसबीर कौर और महकप्रीत कौर, आपने एसएस नगर मोहाली पंजाब से ये फरमाइश हमें साल की। अगला मेल भी रिपीट हो गया, इसको भी करते हैं साइडलाइन। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, साथ में रानी मानिकपुरी, और ये फरमाइश आई है रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और धनंजय की। आपने गांधीबाग अकोला से फरमाइश मेल हमें साल किया है। बांदा यूपी से फहीम मंसूरी, अदी फातिमा मंसूरी, सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी देवाना, कृष्णा पार्क दिल्ली से। और ये फरमाइशी मेल मिला है सनावसी शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना का, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। दूलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और सोनू सुरेश और मोहम्मद अनीसुल मोहाल, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद रफीक की फरमाइश है बाजार पहल शेगांव महाराष्ट्र से। और ये फरमाइश मिले राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद और उनके बहुत सारे साथियों के, बकानी खुर्दा, आंवली कला, भवानी मंडी, झालावाड़ राजस्थान से, और बड़ी रैवी चौराह वाराणसी से, अरुण कुमार मालवीय, त्रिभुवन नाथ मालवीय और साथ में अनमोल मालवीय श्लोक। और ये फरमाइश चंद्रेश गौर, वंदना गौर, जयपाल यादव की सागर एमपी से। और अगला ई मेल है हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के उत्तम जमधाड़े का, और ये फरमाइश गुन्नौर से मिली है आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली की, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसैन पवार, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, निसार सलमानी, बेबी आलिया है और साथ में नौशाद सलमानी भी है, धनौरी तेलीवाला से आपने फरमाइश की है। और गांव फरासी सार से राजकुमार डूटी, प्रमोद कुमार डूटी और साथ में पुष्पेंद्र कुमार डूटी। तो आइए नगमा सुनते हैं, जैसे वक्त रहेगा तो कुछ और नाम शामिल कर ली जाएंगे, एक नगमे की भी गुंजाइश है।

आप ये नगमा भी सुनते रहिए और नाम भी शामिल कर लेते हैं। बल्लारपुर चंद्रपुर से हैं हेमंत कुमार भाषंकर, प्रिया भाषंकर, मास्टर ओमी भाषंकर, हिना साबरी, आयजल साबरी, आयजल इमाम है मोहम्मद हसन इमाम के साथ बिशनपुर के डे झारखंड से, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी और सागर पवार का, कल मंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से। और

वादा तो हम भी करते हैं जिंदगी बखैर रही तो किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल कुछ नाम शामिल करके जाएंगे दोस्तों। दत्ता ढूंढ के हैं आज के जालना से जो इस वक्त सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, और शमसुल कमर रही, शाहिन फातिमा, अदनान खान गंज डंडवारे से शामिल हुए हैं, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा एमपीसी आनंद जोशी, धर्मल जोशी और ध्रुवी जोशी का, और ये फरमाइशी ईमेल किसका है ये भी देखना पड़ेगा जनाब, काफी नीचे जाकर नाम लिखे हैं। और बालकेश्वर कॉलोनी आगरा से हैं सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, साथ में वीर चौरसिया दरअसल, और बुरहानुद्दीन, साथ में मोहम्मद यूसुफुद्दीन, तेलंगाना भूंगी से आपकी फरमाइश मिली है। नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन है नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से आपकी फरमाइश हमें साल की, और शब्बीर हुसैन मुजुबाबा शहजाद की फरमाइश सब्जी मंडी बुल्डाना से है, और आप हैं आनंद राज आनंद और साथ में उनके, जी हाँ आज तरुलता सागर भी हैं, जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया, और इसी नगमे को सुन रहे हैं असलम एम असलम सैफी जेबुल निसा बेगम सद्दाम सोनी, और कस्बा बिलराम से हैं इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब और उनके कुछ और साथी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और इसी नगमे को सुन रहे हैं नंद कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जिला बेगूसराय से आपने फरमाइश हमें एक साल की है, और छोटी बलिया कर मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, इकबाल अहमद साथ में, इमरान और कुछ

0: साथी गेमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं और आनंद राज, आर्यन राज और रोहित राज पीयूष की फरमाइश है मुजफ्फरपुर बिहार से। रमेश चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान जोधपुर से आपकी फरमाइश हमें मिली है और कस्बा बराड़ा अम्बाला से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और उनके कुछ और साथी, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, देरन गायकवाड़, साथ में ओंकार गायकवाड़ और ये फरमाइश मेल अकोला महाराष्ट्र से मिला एस रमेश कामले देवानी और गणेश कामले का। और ये थी तमिल शाद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTV डिश पर हमारे नशा जारी है।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा को भारत की विदेश नीति और यूरोप के साथ बढ़ते संबंधों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रोफेसर मिश्रा, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो ये जो राजनयिक संबंध है उत्तर मैसेडोनिया और भारत के बीच, ये काफी वर्ष पहले ही स्थापित हो गया था और उसके बाद ये भारत के किसी राष्ट्रपति की नॉर्थ मैसेडोनिया की पहली ऐतिहासिक राज यात्रा है। ऐसे में वहाँ की संसद में दिया गया जो राष्ट्रपति का संबोधन है या फिर हम बोले कि ये जो दोहरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय कूटनीति को एक नई ऊंचाई देने में कितना मील का पत्थर साबित हो सकता है?
3: देखिए, उत्तरी मैसेडोनिया एक लोकतांत्रिक देश है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाना एक तरह से मुझे लगता है कि नेचुरल है। ये एक नैसर्गिक और तार्किक परिणति है कि दोनों लोकतांत्रिक देश मिलकर साथ काम करें। भारत का जो आईटेक प्रोग्राम है जिसमें हम दूसरे अपने तमाम मित्र देशों के सिविल सर्वेंट्स की, वहां के ऑफिशियल्स की जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उसके तहत भी हमने उत्तरी मैसेडोनिया के पार्लियामेंट एम्प्लॉयज को लोकसभा में ट्रेनिंग दी थी। तो दोनों देशों के बीच में लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ करें और लोकतांत्रिक जो मूल्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हम कैसे सुदृढ़ करें, इस लिहाज से मुझे लगता है न सिर्फ राष्ट्रपति मुर्मू का वहां पर संबोधन बल्कि दोनों देशों के बीच में लोकतंत्र को लेकर के बात करना और आपस में इसको लेकर एक सॉलिडारिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सॉलिडारिटी है जो भारत को ग्लोबल साउथ का एक मुखिया बनाती है। भारत ने ग्लोबल साउथ के एक नेता के तौर पर भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह परिलक्षित किया है कि ग्लोबल साउथ का मतलब हमारे लिए सिर्फ यही नहीं है कि एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश हमारे साथ है, बल्कि यूरोप के भी जो छोटे देश हैं, जो बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति नहीं है, उनको भी हम साथ लाएं। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक वैल्यू और ग्लोबल साउथ की वैल्यूज दोनों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है।
2: हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी उत्तर मैसेडोनिया यात्रा में है, तो ये भारत की जो विदेश नीति है और यूरोप के साथ जो भारत के बढ़ते संबंध है, उनको आप कैसे देखते हैं और ये जो यात्रा है हमारे राष्ट्रपति की वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है?
3: देखिए, इसमें तीन पहलू हैं। एक तो सबसे बड़ा पहलू ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा मैसेडोनिया, मोल्डोवा, जो बाल्कन के जो देश हैं, उनकी यात्रा के साथ साथ हमें ये देखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री भी अभी विदेशी दौरों पर हैं और मोटे तौर पर भारतीय विदेश नीति में इस बात पर बहुत अच्छी तरह जोर दिया जा रहा है कि आज यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाना है और उनको एक नया आयाम देना है। इसमें भारत ने न सिर्फ यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है बल्कि बाल्कन और पूर्वी यूरोप के जो छोटे देश हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश है। तो एक बहुत ही इंक्लूसिव यूरोप पॉलिसी हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय विदेश नीति में और भारत के जो नीति निर्धारक

0: उनको यह बात भी बहुत स्पष्ट है कि जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति और उसकी जो डिप्लोमेटिक प्रोवेस है वो बढ़ रही है, हमें दुनिया के तमाम देशों के साथ न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर बल्कि उनके साथ आर्थिक और तकनीक के स्तर पर सहयोग को आगे बढ़ाना होगा। इस लिहाज से मुझे लगता है उत्तरी मैसेडोनिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरी मैसेडोनिया एक छोटा सा देश नहीं है। उत्तरी मैसेडोनिया वो देश है जो युगोस्लाविया से अलग हुआ था, और जब एक स्वतंत्र देश बना तो भारत ने 39 और देशों के साथ मिलकर उत्तरी मैसेडोनिया को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित करने के लिए और उसे एक संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के तौर पर जगह देने के लिए पुरजोर उसकी वकालत की थी और उत्तरी मैसेडोनिया एक देश बना। भारत के साथ उत्तरी मैसेडोनिया के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जो क्रिश्चियन है एक बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। भारत जैसे मल्टीकल्चरल देश के लिए ये तथ्य कि मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था, ये अपने आप में दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट में बहुत बड़ी भूमिका ये अदा करता है। और दोनों देशों के बीच में संबंध इसी तौर पर जब अतीत में जब युगोस्लाविया एक देश था तब भी और जब उत्तरी मैसेडोनिया एक देश बना तब भी इन दोनों देशों के बीच में संपर्क तो था, लेकिन उसे कूटनीतिक तौर पर उसे राजनयिक तौर पर एक सही दिशा देना बहुत जरूरी हो गया था। और ये मुझे लगता है राष्ट्रपति मुर्मू की जो यात्रा है ये उसी दिशा में उठाया हुआ कदम है कि दोनों देशों को अब पिछली जो हमारी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाते हुए आपसी व्यापार और सहयोग को राजनीतिक कूटनीतिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, उस दिशा में हम कैसे काम करें, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा की जा रही है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो रिश्ते हैं ये और मजबूत होंगे और काफी क्षेत्र है जिसमें भारत और उत्तर मैसेडोनिया का सहयोग बहुत जरूरी है, तो आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई मॉडल को साझा करने की एक बहुत बड़ी जरूरत है। इससे उत्तर मैसेडोनिया और भारत दोनों को किस प्रकार के व्यवहारिक लाभ मिल सकते हैं?
0: देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तरी मैसेडोनिया को जोड़ने का मतलब, और हम जानते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के देश पहले से ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई से एक दूसरे को जोड़ना है। उत्तरी मैसेडोनिया का एक खास इसकी एक भूमिका है। तमिल जो हमारा सिनेमा है उसमें मरसूल नाम की एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने भारतीयों को ये दिखाया कि उत्तरी मैसेडोनिया कितना खूबसूरत देश है, स्कोपे जो उनकी राजधानी है वो कितनी खूबसूरत है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में पहले तो जो सैलानी उत्तरी मैसेडोनिया जाना चाहते हैं या भारत आना चाहते हैं उनके लिए जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई जैसी सुविधाएं होंगी तो उनके लिए एक दूसरे के देश में आना जाना सरल होगा। दूसरी बात यह है कि ये भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच में व्यापार को लेकर जो दोनों देशों में समझौता हुआ है कि आज जो हम 37 मिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर खड़े हैं इसे कैसे दुगना किया जाए, और उसके लिए जरूरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, और उस क्षेत्र में मुझे लगता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई की बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ ये जो हम भारत और उसके जो विदेश नीति के निर्धारक हैं वो ये जो बात सोचते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ जब हम अपने संबंधों को और अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को जब हम एक तरह से अलाइन कर रहे हैं तो यूरोप के बाकी देश उसमें छूटे नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब यूरोप के तमाम जितने भी देश हैं उन सभी की हमें अपने आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक और व्यापारिक सहयोग में उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई मुझे लगता है कि समय से आगे की सोच है। उत्तरी मैसेडोनिया के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए भी इसकी बहुत जरूरत है।
1: इस वार्ता के दौरान हमने ये भी सुना कि कृषि हो या फिर खाद प्रसंस्करण हो या कपड़ा उद्योग और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेखांकित किया। कृषि तकनीक और खाद सुरक्षा के क्षेत्र में यह तकनीकी साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कितना संबल प्रदान कर सकती है?
0: जी, आपने दो बातें कही। पहली तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है या नई जो तकनीक के क्षेत्र है, इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच में मोटे तौर पर यह समझौता हो गया है कि उत्तरी मैसेडोनिया भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी सदस्यता लेगा और जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस CDRI है उसमें भी उत्तरी मैसेडोनिया एक सदस्य बनेगा। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण अड्डे हैं जिनमें भारत ने न सिर्फ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक पहल की है जिसमें दुनिया के तमाम देश शामिल हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का। भारत एक कृषि प्रधान देश अभी भी है और क्योंकि भारत की अधिकांश जनता अभी भी कृषि क्षेत्र में है, तो हमारे लिए कृषि क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग करना और उसमें नई तकनीक को साझा करना, नई तकनीक दूसरे देशों से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। फूड प्रोसेसिंग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के छोटे और मझोले किसान जो फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में, उनके लिए फूड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और इनका तमाम जो निर्यात है उसके क्षेत्र में शायद मुझे लगता है नॉर्थ मैसेडोनिया से भारतीय किसान कुछ सीख सकते हैं।
1: भारत सरकार ने नॉर्थ मैसेडोनिया के नागरिकों के लिए आईटेक यानी कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण स्लॉट्स की संख्या को दोगुना कर दिया। क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित यह फैसला आपके हिसाब से प्रोफेसर मिश्रा दोनों देशों के बीच सॉफ्ट पावर और पीपल टू पीपल टाइज को कितना बढ़ावा दे पाएगा?
0: देखिए शोभा जी, आईटेक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत भारत दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं उनके लिए खासतौर पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, उनका क्षमता निर्माण करता है और उनको ये जो अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं प्रशासन में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को डील करने में और जो मोटे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी कैसे अपने हमारे मित्र देशों के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वहां के ऑफिसर्स हैं, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और कटिंग एज इंफॉर्मेशन पा सकें। तो इस क्षेत्र में उत्तरी मैसेडोनिया के पास हमारे हर आईटेक प्रोग्राम में 2 सीटें हुआ करती थी जिसे बढ़ाकर अब 4 किया जाएगा और इसमें खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्लॉट भी उत्तरी मैसेडोनिया को दिए जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे दोनों देशों के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वहां के जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी एक दूसरे को जान सकेंगे। उन उत्तरी मैसेडोनिया के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, उनके लिए भी भारत को समझना मुझे लगता है ज्यादा आसान होगा। एक दोनों देशों के बीच में ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो परस्पर जो दिलचस्पी बढ़ेगी, मुझे लगता है कि उससे भी पीपल टू पीपल कनेक्ट आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है ये एक इनेबलर का काम करता है और उत्तरी मैसेडोनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक इनेबलर का काम करेगा।
1: जी, तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि जो राष्ट्रपति की यात्रा मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 स्तरीय राजकीय यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूर्वी यूरोप के इन प्रमुख राष्ट्रों के साथ भारत का जो यह सक्रिय जुड़ाव है, तो ये भारतीय यूरोपीय संघ के समग्र संबंधों को किस प्रकार से एक सकारात्मक और नई दिशा दे रहा है?
0: देखिए, उत्तरी मैसेडोनिया ये चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ले और राष्ट्रपति की जो ये 3 देशों की यात्रा है, बाल्कन देशों की और जिसे हम बड़े तौर पर आज उत्तरी यूरोप भी कहते हैं, उत्तरी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को एक नया आयाम, एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए मुझे लगता है राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जैसा कि हम जानते हैं आर्थिक तौर पर, सामाजिक, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कूटनीतिक, रक्षा, तमाम क्षेत्रों में संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, लेकिन भारत की ये सोच है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के या यूरोपियन संघ के देशों के साथ ही भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध भारत और यूरोप के संबंधों का एक सिर्फ हिस्सा है। अगर हम यूरोप के तमाम देशों को जो यूरोपियन संघ के सदस्य नहीं है उनको भी अगर हम अपनी यूरोपियन जो हमारी नीति है उसमें जोड़ेंगे तो न सिर्फ भारत के लिए व्यापार के तौर पर, व्यापार को बढ़ाने के लिए या राजनीतिक संबंधों के लिए या कूटनीतिक संबंधों के लिए, बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होगी। तो मुझे लगता है भारत की जो यूरोप के संदर्भ में जो नीति है वो यही है कि हम यूरोपियन यूनियन पर अपनी यूरोप नीति को समाप्त नहीं करेंगे, हम पूरी यूरोप के देशों में भी जाएंगे, हम दक्षिणी यूरोप के तमाम देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम स्कैंडिनेविया के देशों के साथ भी, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार जब यात्रा की थी 5 देशों की, तो हमने ये देखा था कि वहां भी ये स्पष्ट था कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध सिर्फ हमारी यूरोप नीति का सिर्फ एक हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन भारत की यूरोप नीति को परिभाषित नहीं करता है। तो साफ तौर पर पूरी यूरोप की ये यात्रा यूरोप को एक इंक्लूसिव चेहरा देती है और एक हमारी जो इंक्लूसिव नीति है कि हम बड़े और छोटे देश के बीच में उसकी आर्थिक शक्ति को देखकर कोई उनके बीच में कोई भेद नहीं करते हैं, हम सभी देशों को, बड़े हों या छोटे हों, उनको उनको एक समान नजरिए से देखते हैं और सभी मित्र देशों को हम अपने साथ रखना चाहते हैं।
1: जी प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आज के सुर्खियों में कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े और हमें भारत और उत्तर मैसिडोनिया के बीच जो ये व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, उसके लिए आपका बहुत

0: बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फेडिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। पेश खिदमत चंद कवालियां फनकार हैं सादत हुसैन खान कवाल और हमलावा।

0: मुकाबले पेश कर रहे थे सादत हुसैन कव्वाल और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12 बजे चाहते हैं अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल हफीज से आलमी खबरें सुनिए। क्वाड के वज़राए खारजा ने आजाद, खुले और सबके लिए जामे हिंद बहरुल काहिल खित्ते के अपने अज़्म का एआदा किया। इस सिलसिले में फिलिपाइन के शहर मनीला में इजलास भी मुनक़िद हुआ। अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यमन के हौसी गिरोह की जानिब से बहर अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ बाहरी नाकाबंदी के पीछे ईरान का हाथ है। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने आज फिलिपाइन में आसियान इजलास के मौके पर अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलिपाइन के शहर मनीला में मुनक़दा क्वाड ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत की। इजलास के मुश्तरका ऐलानिये में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने आजाद, खुले और हिंद बहरुल काहिल खित्ते को मजीद मजबूत बनाने के अपने आजम का एआदा किया। ऐलानिये में आसियान की यकजहती और मरकजी किरदार की भरपूर हिमायत का भी इजहार किया गया। इजलास के दौरान खित्ते को दरपेश चैलेंजों और मौके पर गौर किया गया ताकि इंडो पैसिफिक के हवाले से आसियान के विजन की मुअस्सर हिमायत की जा सके। अहम मौजूदात में समुद्री और बैन अक्वामी सलामती, इक्तिसादी खुशहाली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और हंगामी हालात से निपटने के इकदाम शामिल थे। इजलास के मौके पर डॉ जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में भारत और अमरीका के जामे आलमी स्ट्रेटेजिक इश्तराक से मुतालिक तरजीही उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जिनमें तिजारत, महसूलात, तवानाई, दिफा, सलामती, अहम मदनियात और मसनूई जहानत शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई, आलमी और कसीरुल जहती उमूर पर भी मुख्तसर मगर मुफीद तबादले ख्याल किया। डॉ जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे ऑस्ट्रेलिया के नतायज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसके बाद उन्होंने कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के दरमियान तआवुन मुसलसल फरोग पा रहा है। उन्होंने बताया कि गुफ्तगू का महवर दोनों ममालिक के वज़राए आज़म की जानिब से तयकर्दा बाहमी ताल्लुकात के आदाब को अमली जमा पहनाना था। अमरीका ने यमन के हौसी बागियों के उस ऐलान की मजम्मत की है जिनमें हौसियों ने बाहर अमर में सऊदी अरब की बाहरी नाकाबंदी करने और तजारती बाहरी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हौसी बागी ग्रुप की इस धमकी के लिए ईरान को मुर्द इल्जाम ठहराया। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि कशीदगी कम की जा सकती है। फिलीपींस में इलाकाई समिट के तनाजुर में जनाब रूबियो ने कहा कि बाहर अमर में जहाजरानी में रुकावट डालने वाली हर वजह आबनाए हुरमुज में जहाजरानी में रुकावट डालने से मुमासलत रखती है। इससे पहले हौसियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बाहरी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए नया महाज खोल दिया है। हौसियों ने तेल की आलमी सप्लाई और तजारत को निशाना बनाने की धमकी दी है। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कल ऐलान किया है कि वह आज फिलीपीन में जारी आसियान इजलास के मौके पर अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। जनाब लारोफ ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ मनीला में एक इस्तकबालिया तकरीब के दौरान उनकी रूबियो से मुख्तसर मुलाकात हुई थी, जहां इस बात की तस्दीक की गई कि बाकायदा मुलाकात कल होगी। उन्होंने कहा कि रूस अब भी इस मफरूजे पर कायम है कि अमरीका ने गुज़श्ता साल अगस्त में एंकरेज में मुनाक़िदा रूस अमरीका सरबराही इजलास में पेश की गई तजावीज से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की है। इधर अमरीका के वजीर दिफा पेट हेक्सिथ ने सेनेटरों को बताया कि रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे थे, जबकि तेहरान ने तजारती जहाजरानी पर हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका ने अबनाए हुरमुज के अतराफ अपने फौजी ऑपरेशन में भी शिद्दत पैदा कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत की तामीर का ख्वाब जन आंदोलन बनना चाहिए और मुल्क के नौजवानों को इस नजरिए को बुनियाद फराहम करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में विकसित भारत अहदाफ के लिए मुतल्लिका शोबों और देही तरक्की, ज़राअत और समाजी बहबूद की पेशरफ्त के जायजे के सिलसिले में सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों के सेक्रेटरी साहिबान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के सीनियर अहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि आवाम की जरूरत के तहत तैयार करदा इस्लाहात के नफाज में तेजी आनी चाहिए और इनसे बामाना तब्दीली पैदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाहात का मकसद महज हुकूमत के कामकाज में बेहतरी लाना नहीं बल्कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की जानिब मुल्क के सफर को तेज करना है। भारतीय बाहरिया ने स्वदेशी तर्ज पर डिजाइन और तैयार करदा माहे सिलसिले की आबदोज शिकन शेलू वाटर क्राफ्ट INS माल वन को कल कर्नाटक के कारवार में बहरिया में शामिल किया। वजारत दिफा ने बताया कि यह जंगी बाहरी जहाज जेर आब निगरानी आबदोज मुखालिफ जंगी कार्रवाईयों और कम शिद्दत वाली बाहरी कार्रवाईयों के साथ जेर आब सुरंग जंगी सलाहियतों से लैस है। वजारत ने मजीद कहा कि यह जंगी बाहरी जहाज साहली दिफा, साहली पट्टियों की सलामती और बाहरी शोबों में आगाही को फरोग देगा। 80% से ज्यादा स्वदेशी कलपुर्जों के साथ ये जंगी बाहरी जहाज आत्मनिर्भर भारत के नजरियों को तकवीत देता है। बाहरिया में शामिल किए जाने की इस तकरीब की सदारत फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल APV सिंह ने की। तकरीब में वाइस एडमिरल संजय वत्सायन और दीगर सीनियर अहदेदारान मौजूद थे। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान नाजेबा मवाद नशर करने की बिना पर 50 OTT प्लेटफार्म्स को बंद कर दिया है। लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुर्गन ने बताया कि हुकूमत शिकायतों की बुनियाद पर इस तरह के OTT प्लेटफार्म पर बाकायदा से कार्रवाई करती है। जनाब मुर्गन ने कहा कि हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर हालात हाजरा और ऑनलाइन मवाद के नाशरीन के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म वजह करने की खातिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जवाबित 2021 को नोटिफाई कर दिया है। सिक्किम के नामची जिले में समरदंग में

क्लासिकी मौसीकी में अभी आप सुन रहे थे राजीव जनार्दन का सितार पर बजाय राग शुद्ध सारंग। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर। आखिर शब इस प्रोग्राम में सुनिए चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। आगाज श्री 420 फिल्म के इस नगमे से।

मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे हैं मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म का नगमा मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, मौसीकी खयाम की। और इससे पहले हमने आपकी नजर के चंद और नगमे फिल्में थी श्री 420, टावर हाउस, शारदा और ससुराल।

0: متوع مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس مسئلے پر متعلقہ ہائی کورٹ سے صلاح و مشورہ کریں. اگر متعلقہ ریاستیں اس سے اتفاق کرتی ہیں تو ایسی ریاستوں کے عدالتی افسران 61 سال کی عمر تک ملازمت میں رہیں گے. یہ 1 اپریل 2026 سے نافذ العمل ہوگا. ریلوے کے وزیر اشنوی اشنو نے بتایا کہ حکومت کے اقدامات کی بدولت سنگین نوعیت کے ریل حادثات کی تعداد سال 2014-15 کے 135 سے گھٹ کر اس سال 2026-27 کے جون تک صرف 2 رہ گئی ہے. لوک سبھا میں کل اپنے تحریری جواب میں جناب اشنو نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور بہتر رکھ رکھاؤ کے ذریعے ریل سیفٹی کو مستحکم کیا گیا. چائنا اوپن بیڈمنٹن میں 2 مرتبہ کی اولمپک تمغہ یافتہ پی وی سندھو اپنی ہم وطن انتی ہڈا کو ہرا کر خواتین کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. سندھو نے کل دوپہر پری کوارٹر فائنل میں ہڈا کو 21-14, 9-21 اور 21-10 سے شکست دی. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. کوارٹ کے وزرائے خارجہ نے آزاد، کھلے اور سب کے لیے جامع ہند بحر الکاہل خطے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. اس سلسلے میں فلپین کے شہر منیلا میں اجلاس بھی منعقد ہوا. امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ یمن کے حوثی گروہ کی جانب سے بحر احمر میں سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف آج فلپین میں آسیان اجلاس کے موقع پر امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے. اور چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو، آیوش شیٹھی اور لکش سین سنگل کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کے لوکرز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کا 1 بجا چاہتا ہے. ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے اپنی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया. इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया. पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है. मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है. माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए.
2: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली. उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि एक गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे इस चैंपियनशिप के मुख्य दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एपे खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government has prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
5: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
4: Defence Minister Rajnath Singh has flagged in Samudra Pradakshina, the first ever tri-service all-women circumnavigation sailing expedition through video conferencing. 9 women officers from the Army, Navy and Air Force returned to Mumbai aboard the Indian Army sailing vessel Triveni after completing a 314-day voyage covering more than 25,000 nautical miles across 4 oceans. Union Minister of State for Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, has said that the government has drawn up a roadmap to achieve 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047 under the Nuclear Energy Mission. In a written reply to the Lok Sabha, Dr. Singh said the country's installed nuclear

0: कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता।
1: जी मैं
2: पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो।
1: मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी।
2: जी
1: जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पे बहुत गुस्सा आया था
2: और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में।
1: अंदर आइए ना
2: जी, आपका गुस्सा उतर गया।
1: मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लाइए आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए
2: जी।
1: ठहरिए,

0: फिर के खिलाती हूँ।
1: अजी सुनिए
0: जी,
2: अगर मुझे निमोनिया हो गया तो?
0: इलाज हो जाएगा, डॉक्टर का घर है ना।
2: और आप?
0: मैं उनकी बेटी हूँ।
2: तो एक प्याला गर्म चाय भी हो जाए?
0: चाय जरूर।

तो अभी आपने ये गीत सुना लता माफ कीजिएगा किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म थी आराधना। और आइए अब बढ़ते हैं किशोर कुमार की ही आवाज में ये अगला गीत सुनते हैं, फिल्म लावारिस से।

तो साथियों, अभी आपने सुना फिल्म अमर अकबर एंथनी से ये गीत, जिसे गाया था गायक किशोर कुमार और मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म सरगम से ये अगला गीत। गायक हैं मोहम्मद रफी और गायिका लता मंगेशकर।

0: अभी आपने सुना फिल्म सरगम से ये गीत, और गायक थे मोहम्मद रफ़ी और गायिका लता मंगेशकर। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: बरसों बाद घूमने निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारे शौहर कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आइए अब सुनते हैं यह अगला गीत, फिल्म रोटी कपड़ा मकान और गायक लता मंगेशकर, मुकेश, चंचल और जानी बाबू की आवाज में।

0: हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएलू को सौंपी। इस सहायता में पीपी किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य

ये आकाशवाणी दिल्ली का EIL लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10 और 15 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कलाकार हैं जगजीत सिंह, बोल हैं राजेश रेड्डी के और संगीत भी दिया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

ये जो गजल अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे जगजीत सिंह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल, जो बोल हैं गुलकार हैं मिर्जा गालिब साहब, और संगीत दिया है निहारिका सिन्हा ने, और गायक कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा।

और एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत। और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं सोनू निगम, गुरुकार यानी कि जो रचना है वो है हर्ष ब्रह्म भट्ट की और संगीत दिया है अनूप जलोटा ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: और इसी के साथ आज का गजल गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना। स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। समय हुआ है 4:20:14। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं ताल वादक कचेरी। कलाकार हैं येल्ला वेंकटेश्वर राय। आइए सुनते हैं इनसे मृदंगम वादन।

0: कर्नाटक संगीत तालवाद्य कचेरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे येला वेंकटेश्वरा राय का मृदंगम वादन। इसी के साथ आज का नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत उस्ताद डॉक्टर मुज्तबा हुसैन का राग नटभैरव। चिंतन कार्यक्रम में 6:40 पर आज का विषय रहेगा महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।

सुबह 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे करिश्मा शर्मा के भजन, और 7:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आठ बजकर 45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे नीता माथुर का गायन। आज सुबह 9:15 पर कार्यक्रम उद्योग पत्रिका के अंतर्गत आज का विषय रहेगा व्यवसाय परिवर्तन और उत्कृष्टता के लिए वित्तीय रणनीति। आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट CFO, विनिर्माण वित्त विशेषज्ञ से कमल किशोर की बातचीत आप सुन सकेंगे। हमेशा की तरह सुबह 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का, और दिन में सुबह 10:10 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम।

स्वरांजलि कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन, जो कि महिला कार्यक्रम होता है, और दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। तो अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 5 बजने को हैं, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार।

0: कलजुग रथ गनका के रथवाहु महला पहला।
1: स्वाम कह सितंबर स्वामी सत में अच्छे साथ रहे सबको सच समावे। ऋग कह रहे राम नाम देवा मैं सो नय लय प्रच जाय नानक तो मुखंतर पाहे। जुज में जो चली चंद्रावल पान कृष्ण जादम पाया पार जात जो पिला आया वृंदावन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ ना पुराई आलो पाया नील बस्तर ले कपड़े पारे तुरुत खानी अमल किया। चारे वेद हो सचार पड़े गुरु तीन चार विचार पाओ प्रगत कर नीच सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ सगुर विटो मारिया। जित मिले कसम संभालिया जिखा जगत निहाया कसम

जिनका उपदेश ज्ञान जिंदिया नीनी नित्री जगत निहालिया खसम छोड़ तू दिल लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुर है कोई ता विरले किने विचारिया।

0: सिम रुख सरायरा निरभित मुच ओए आवे आस कर जाहि नास कित फल फिके फुल बक बके कम नाम है पत मिठत निवि नानका गुण सिंहय तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोई धर तराजू तुलिए निवे सुगवरा होए अपराधी दुआन वे जो हंता मिर्गा है शीश निवाया क्या थिए जर दे उस दे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बाद सिल पूज इस वक्त समाज में चूर को कुलसारन तरह पाल के हाल बिचारन गल माला तिलक लखन तोटी बसरक पाटन जे जान से ब्रह्मं कर्म सपो को ने चो कर्म कहो नानक ने चो प्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना।

बलदेवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पात साहि दसवी प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय पर जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईया जस डठा सब दुख जाए ते को बहादुर सिमरया कर नौ निधि आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवे पात साह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे सब थाई होए सहाय। दसा पात साहिया दी जोता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा प्यारिया सह साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड सगया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिट कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। प्रथम

0: तगना टूट सकूत महला पहला।
1: तगना इंद्री तगना नारे पलके सुपन दाड़ी तगना तगना तगना जेहवा तगना या